0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: गुरुवार 23 जुलाई की सुबह हो चुकी है और इस वक्त 5 बजे हैं।
5: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
0: Radio.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: आपके लिए दिल की गिरह तो हमेशा से खोल रखा है हमने, बस आपके इंतजार में। 5:05 हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें। इट्स योर राइज एंड शाइन ऑफ कोर्स अ थर्सडे मॉर्निंग, और ये गुरुवार आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, हम यही प्रार्थना करते हैं और कामना भी करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? और मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी तरह से हो रही है, रियली होप सो, और पूरी कोशिश तो हम भी करने वाले हैं, वो भी 7 बजे तक। बस आपके मैसेजेस का इंतजार, एज यूजुअल नंबर वो ही है, हाँ, 5499-1294 पर आपके नाम, अपनों के नाम कोई पैगाम, हाय, गुड मॉर्निंग, बोंजूर, जो भी आप विश करना चाहते हैं किसी को अपने

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: What a lovely gana, Lata ji aur Mahendra Kapoor ki awazon mein nayi roshni film se liya gaya. Waise nayi roshni to yahan par bhi hai aapke aane se. Ye mehfil jo hai roshan ho jati hai. Thank you so much. 5:16 आपके मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं. ऑन सैंक कात नफ नफ दूस नफ का ज्योति कैसी है माय डियर. नमस्कार शादो बिनागत से है. अगला गाना स्विजलाशनी रेखा सुरेखा माधव परिवार के लिए. यहाँ पर भी व्हाट्सएप पर आपके लिए है. थैंक यू सो मच मिस्टर जयशन. और सुबह सुबह आपके मैसेजेस चले आते हैं बस पूरे परिवार के नाम. ओम साई राम आपको भी भाई सूरज शर्मा सजादा एंड पूरे परिवार के लिए. शीला जी कैसे हैं आप प्लस पेगोंस त्रिबुशे से. गुड मॉर्निंग नमस्कार और शुभ दिन. और आपको भी प्रणाम. आप है कौन यहाँ पर माला सुमाहू जी और कातुबोन से हैं आपके पूरे परिवार के लिए. गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती. गुड मॉर्निंग आपको अदुल अब्दुल एंड सायरा बानू. हैव ए नाइस डे अहेड आपको भी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग यहाँ पर विश करेंगे. चलिए रात और दिन वाला गाना आपको अच्छा लगा. थैंक यू सो मच सरोज राजन मोनिका पूनम उमेश एंड गुरुदत्त पर फिल्माया गाना. अच्छा अभी तक तो हमने चलाया नहीं लेकिन अब कोशिश करते हैं आपके लिए. ठीक है. गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती कीप शाइनिंग. और आप इस वक्त गर्मा गर्म चाय के साथ अपने किचन में है पति लाल देव के नाम मामा शारदा बगन और सुया बिहारी जी आप है फ्रॉम कुंगुमा. तो बस ये दिन आपके लिए शुभ हो मंगलमय हो.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: बस जितना हो सके प्यार के इन चार दिनों में जितना हो सके प्यार कीजिए, प्यार बांटते चलिए. आजकल जैसे जिंदगी बन गई है ना, कल अगले पल में क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता. That's why हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी दिन हो. गाने में हमको मैसेज मिल ही जाते हैं. थैंक यू सो मच. 5:31 गोइंग टू वर्क, काम पर जा रहे हैं बोको आज. बच्चे लोग अभी आराम से यानी कि सो रहे हैं एंड बस उनकी छुट्टियां चल रही हैं तो उनको एंजॉय करने देते हैं, लेकिन आपको काम पर जाना है बोको आज. गुड मॉर्निंग आपको. आप है कमलदीप, आपके पूरे परिवार. गुड मॉर्निंग जी. आज मेरी लाडली बेटी निशा गुरुचरण अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. सो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ से मामा बेनीता, पापा आनंद, भाई अरुण, श्रिधि एंड सब परिवार डियर वंस की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं. कैसी है प्रेमिला जी प्रेंदे पापाए से, और गाना आपके लिए है आपके पति रंजीत एंड पूरे परिवार के नाम. नेक्स्ट गाना आपके लिए भी है, बस अभी तो फरमाइश प्रोग्राम है नहीं, लेकिन रियली होप की जो गाने हम चला रहे हैं वो आपको अच्छे लगे. गुड मॉर्निंग रेशमा प्लेंदे गौश से है, मामा सीता, पापा देवन, दीपा, रति, ओचस्वी, लवेश, किशन, साथ में बॉबी एंड सचिन के नाम. गुड मॉर्निंग प्रेमा जी, आप हो फ्रॉम पुत्र दो और आप बहुत खुश हैं, तो चलिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा. जय श्री कृष्ण प्रिया, आप हो फ्रॉम मुसलमान सैत औंद्रे. रोमांटिक गाना आप कहती हैं ऑफकोर्स अपने हबी के लिए, और काम पर चले गए हैं सो चले उनको कहेंगे हम बों कुहाश, और ऐसे ही उनका ये दिन जो है, उनकी जो सुबह है, एकदम कुशल मंगलमय हो.

0: That's for sure.
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
0: तो चलिए अपने साथ को बनाए रखते हैं और आपका दिन कैसा रहेगा सबसे पहले आपके साथ
2: एरीज मेष राशि
0: वेल शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड इत्यादि से लाभ होगा पर वाणी पर नियंत्रण रखें जल्दबाजी ना करें लेनदारी वसूल करने के प्रयास सफल रहेंगे व्यावसायिक यात्रा जो है मनुकूल रहेगी और भाग्य का साथ भी रहेगा
2: टॉरस वृषभ राशि
0: नई आर्थिक नीति बन सकती है कार्यस्थल में सुधार और परिवर्तन से भविष्य में लाभ होगा सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी पार्टनर्स को उनका सहयोग कार्य की गति प्रदान करेंगे जो पुराना रोग है वो उभर सकता है सो प्लीज शारीरिक कष्ट वो भी संभव है तो अपना ख्याल रखिएगा एंड हाँ पारिवारिक समस्या से चिंता बढ़ भी सकती है
2: जेमिनी मिथुन राशि
0: लाभ के अवसर हाथ आएंगे भाग्य का साथ मिलेगा व्यापार व्यवसाय लाभदायक रहेगा नौकरी में उन्नति होगी निवेश आदि या फिर करने का मन बनेगा तो विवेक से कार्य करें लाभ डेफिनेटली होगा परिवार की चिंता बनी रहेगी और धार्मिक कार्य में आपका मन लगेगा
2: कैंसर कर्क राशि
0: धनागम होगा यानी कि प्रतिद्वंदी जो है अपना रास्ता छोड़ देंगे और आप अपने सेहत पर ध्यान दीजिएगा बस वाहन और मशीनरी के प्रयोग में आपको सावधानी बरतनी होगी किसी भी प्रकार के झगड़ों में ना पड़ें कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें लेन देन में जल्दबाजी ना करें एंड हाँ जो भी आप बोलते हो तोल मोल कर ही नियंत्रण रखें
2: लियो सिंह राशि
0: रोजगार प्रति यानी कि आपके रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे सभी ओर से खुश खबरें आपको प्राप्त होंगी पारिवारिक चिंता रहेगी और अज्ञात भय सताएगा जोखिम व जमानत के कार्य ताले और बस संपत्ति की खरीद फरोख्त से आपको सफलता मिलेगी और स्थायी संपत्ति की दलाली बड़ा आपको लाभ दे सकती है
2: वर्गो कन्या राशि
0: ऐश्वर्य के साधनों पर आपके व्यय होगा आय के साधनों में वृद्धि होगी भाग्य में आपकी उन्नति होगी आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी वैसे व्यापार व्यवसाय लाभदायक रहेगा और नौकरी में उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे
2: लिब्रा तुला राशि
0: लाभ के अवसर हाथ आएंगे व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा निवेश

0: शुभ रहेगा। नौकरी में संतोष रहेगा और पार्टी या फिर पिकनिक का आनंद आपको मिलेगा। और यहाँ पर शारीरिक कष्ट संभव है, अभी तो मौसम का ही कुछ असर है, बस व्यावसायिक यात्रा भी आपकी सफल रहेगी।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: किसी अपरिचित व्यक्ति पर आत्मविश्वास या फिर अति विश्वास बिल्कुल ना करें। व्यवसाय ठीक चलेगा, आय भी बनी रहेगी, प्रेम रस

0: दोनों को काबू में रखें, विवाद से कलेश संभव है।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: व्यावसायिक यात्रा आपकी सफल रहेगी, प्रयास भी सफल रहेंगे, पराक्रम बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, बस आपको मेहनत करनी है। हाँ, और नौकरी में उच्च अधिकारी आपसे जो है प्रसन्न रहेंगे। वैसे कानूनी अड़चन सामने आ सकती है और अभय अज्ञात भय भी सता सकता है और सामाजिक प्रतिष्ठा में वाकई वृद्धि होगी, बस जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे आप।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: घर में अतिथियों यानी कि मेहमान आने जाने उनका रहेगा, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, नौकरी में अधिकार मिल सकते हैं, शेयर मार्केट से लाभ होगा, बाहर जाने का मन बनेगा, बड़ा काम करने की योजना बनेगी, वैसे लाभ तो होंगे ही, स्वास्थ्य का बस आपको ध्यान रखना है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, सत्य व लॉटरी से आप दूर रहें, मेहनत करते रहें ना, मेहनत का फल डेफिनेटली आपको मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, सुख के साधनों पर व्यय होगा, व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगा और यात्रा जो है सफल रहेगी, व्यापार व्यवसाय मनोकूल लाभ देगा और निवेश भी शुभ रहेगा, चोट व रोग से बचे प्लीज, यश बढ़ेगा, बेचैनी भी रहेगी और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: फाइनली व्यवसाय आपके ठीक ठाक चलेगा, आय बनी रहेगी, शारीरिक कष्ट से आपको बाधा संभव है, अप्रत्याशित खर्च जो है सामने आ सकते हैं, वाणी पर आपको नियंत्रण रखने होंगे, हल्की हंसी मजाक ना करें, किसी अपरिचित व्यक्ति पर भरोसा जल्दी से ना करें, चिंता तथा तनाव रहेंगे, लेन देन के मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बस जो भी काम करें सोच समझ कर करें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: दिल चाहे आसमां पे लिख दो नाम तेरा, आसमां से तो वो भी आ गए, वो भी अपनी हेलीकॉप्टर से. क्या बात है जी. 5499 1294 पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बस ऐसे ही साथ निभाते चलिएगा. रफी साहब की आवाज में 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. सूरज पूरन, हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम वाइफ रीमा. बेटी कियारा, मॉम है अमृता, भाई रोशन, साथ में है कौन, उमेश, भाभी नीलम, बेबी रियांश, सब परिवार. ओम साईराम सोनम भोला, आपकी एंजल है अभिषा अश्विनी, भाई माँ है सिस्टर्स राम गुलाम परिवार के लिए. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू दुधिका एंड रघुजाना परिवार की भी दिख रहे और से गुड मॉर्निंग मिस्टर टोनी एंड फैमिली. धनेश्वर जी हैं, प्यारी पत्नी सुनीता, संजीवनी, शारेखा, दवेदस परिवार,

बॉम्बुसी हैं एंड नमस्कार आपको भी यहाँ पर हेमलता भजन फ्रॉम पोएटो पीमा विशिंग ऑल अ ग्रेट डे एंड दीदी है स्वीटी एंड भारती भाई सूर्य प्रकाश आपकी बेटियाँ नेफ्यूज निसेस सब परिवार के नाम विशिंग यू ऑल अ लवली मॉर्निंग.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: गाड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 6 बजे हैं. सुंदर सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ आपसे सुमेरा नमस्कार आपको.
6: नमस्कार आदाब. फ्लाक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्वास्थ्य सेवा दी जाने लगेगी. कल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्घाटन किया गया जिसका मकसद इलाके के बाशिंदों के लिए सेहत की सेवाओं को ज़्यादा आसान बनाना है. अगले हफ्ते से ये केंद्र खोला जाएगा और सप्ताह में एक बार ये कार्यरत होगा. स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती से हफ्ते में 4-5 बार मुआयना यानी कंसल्टेशन भी किया जाएगा. सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट परियोजना विकसित हो रही है. मौजूदा प्रोटोकॉल संधि के संदर्भ में एक सलाहकार क्वालिटी इंश्योरेंस सेवाएं देंगे और तकनीकी सहायता भी देने वाले हैं ताकि इस नई प्रणाली को अमल में लाया जा सके. जैसे कि बजट 2026-2027 में घोषित किया गया था. सिटिया मिल ट्रियोले में खुफिया कार्रवाई के दौरान एक पुलिस को ड्रग तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया.

0: उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं और उनकी हिरासत में कोकीन की 350 ग्राम पाए गए। कुल कीमत 5 मिलियन रुपए से ज़्यादा की बताई जा रही है। विदेश में ईरान और इराक की सरहद पर अमेरिकी हमले में 2 लोग जान से गए हैं और 11 लोग घायल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जलमार्ग अबनाए हुर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला करेगा तो उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल, आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दोपहर बाद उत्तर में कुछ बादल घेराएंगे और रह रहकर हल्की बरसात होगी। दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। आज रात के दौरान मौसम साजगार रहेगा। हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण की तरफ से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण में 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:43 पर, सूर्यास्त 5:49 पर। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब, शुभ दिन आप सभी को।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

तो साथ साथ चलने में बिलीव करते हैं भाई. 6:08 हुए हैं. वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती एंड नीतू, आप सबका स्वागत वंस अगेन. सो 5499-1294 पर डू सेंड मी योर मैसेजेस और अपने दिन की शुरुआत कीजिए गुड मूड गुड वाइब्स अब बिग स्माइल के साथ. अक्सर होता है ना कि हम कहते हैं बस किसी अपने का चेहरा सामने आ जाए तो दिन की शुरुआत सुबह की शुरुआत अच्छे से हो जाती है. सो व्हाई नॉट इन गानों के जरिए भी आप भी अपने मूड को सेट कीजिएगा. 6:09 हुई है. बोकवास टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क हिटिंग द रोड, देन प्लीज ड्राइव केयरफुली, ड्राइव सेफली. रियली होप कि अभी मौसम बिल्कुल ठीक ठाक हो और आराम से अपनी मंजिल को एंजॉय करते हुए, या फिर किचन में होंगे, घर में होंगे, गर्मा गर्म चाय. डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट. हाँ

सरा प्यार। नेक्स्ट गाना गुजार टू हम, यहाँ पर रेखा बेटा है अंश पोम्पो जैसे हमारे लिए भी, थैंक यू माय डियर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नीतू, नमस्कार संगीता और पूरे परिवार मोताय ब्लॉश से, एंड प्यारी सी अमृता है पॉइंटो साबले से, नमस्कार आपको, कैसे हैं आप विमला जी, आप कहती हैं गुड मॉर्निंग, इट्स ओके टू क्राई इफ यू आर इन पेन, दर में तो आंसू बहते ही रहते हैं, निकल आते हैं, बस याद रखे कि ये जो आंसू होती हैं, आंसू होती है वो भी प्रेयर्स हैं, एंड बस ऊपर वाले के यहाँ पहुँच जाती हैं जब जुबान कह कुछ नहीं पाती हैं, कभी कभी आंखें बयां कर जाती हैं, बस दिल से करे जो भी करे, लोड्स ऑफ लव टू यू खेमिशा, हे आंटी थैंक यू सो मच माय डियर, कैसे हैं आप, किचन में हैं, जल्दी जल्दी उठ गए, अरे बाप रे बाप, सो मामा शीतल के नाम, पापा है राहुल एंड सभी नायको लक्ष्मण एंड काली चगन परिवार के नाम, गुड मॉर्निंग टू यू, हेमा जी है कहाँ से, वेल आपके घर से आपके पूरे परिवार के नाम एंड टू रेडियो मस्ती टीम, थैंक यू

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Problème l'équerre, les baguettes les ali. Les capaves moi, les capaves toi, les capaves nous tous. Protise tu l'équerre zodi, pour qu'il te dit mais, tu pas à risque un ban problème l'équerre. Allô, enjoy your life avec Anchor Life, parce qu'il ça bon dit Anchor Life là, et n'a stérol végétaux qui activement combat mauvais cholestérol. En plus de te ban activité physique et que mange équilibré, sans oublier te bon dit Anchor Life, mais là, tu peux prendre soin de l'équerre. Anchor Life, your heart, act now. Veuillez consulter votre professionnel de santé si besoin.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: #6:24 होने वाली है बस 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन. रेडियो मास्टी गाना प्लीज मेरे भाई विक्रम बहन हेमलता स्वीटी और आप हो भारती पोएतो पीमा से और आपने कहा बिल से श्रेष्ठता के लिए चलिए उनके नाम भी एंड गुड मॉर्निंग आपको ललित एंड जीतन फैमिली. 6:30 बजे के पूरे समाचार बुलेटिन के बाद वेदिता आपके साथ जुड़ जाएंगे इन मॉर्निंग बेट.

0: गया।
1: कभी सोचा है
0: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।
2: ठीक 6:30 हैं, आज की सुर्खियां पेश हैं। अफ्रीका की सेवा में एक इलाकाई वित्तीय केंद्र की हैसियत से मॉरिशस अपनी जगह और मजबूत करना चाहता है। इस गतिशीलता से ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने एबेन में एक समझौता तय किया। सर शिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर आते सितम्बर में एमिरेट्स लाउंज। जून महीने में मॉरिशस आए 89,000 पर्यटकों की संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है। जून 2025 में 97,000 से ज्यादा पर्यटकों ने मॉरिशस का दौरा किया था, यानी इस साल करीब 8% की गिरावट आई है। फ्लाक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्वास्थ्य सेवा दी जाने लगेगी। कल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्घाटन किया गया। और विदेश में ईरान और इराक की सरहद पर नए अमेरिकी हमले, दो लोग जान से गए हैं।

0: नमस्कार और आदाब, खुश आमदीद। इस बुलेटिन में अफ्रीका की सेवा में एक इलाकाई वित्तीय केंद्र की हैसियत से मॉरिशस अपनी जगह और मजबूत करना चाहता है। इस गतिशीलता से ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने एबन में एक समझौता तय किया। वित्तीय सेवाओं के सेक्टर में काबिलियतों की मजबूती और जानकारियों के आदान प्रदान पर आधारित रणनीतिक साझेदारी कायम की गई है। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर टीना बुटना का विवरण।
1: कमीजा के सदस्य देशों द्वारा स्थापित टीडीबी ग्रुप ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक एक अफ्रीकी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। आज ये वित्तीय संस्था अपनी विशेषज्ञता मॉरिशस के साथ साझा कर रही है। टीडीबी ग्रुप ने फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी FSI के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत टीडीबी ग्रुप FSI के साथ मिलकर वित्तीय सेक्टर से जुड़े पेशेवरों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। बैंक के अधिकारियों का कहना है कि मॉरिशस की कई मजबूत विशेषताएं हैं, जिनके बल पर वो अफ्रीका में वित्तीय सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अलावा ये समझौता FSI और TDB ग्रुप के बीच एक दीर्घकालिक पार्टनरशिप का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसका उद्देश्य विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत करना और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में वित्तीय सेवा सेक्टर के विकास में योगदान देना है।
0: मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद इमीरेट्स मॉरिशस में अपनी गतिविधियां जारी रख रही हैं और निवेश करती जा रही हैं। इस विमानन कंपनी के एक डेलीगेशन ने कल पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सर श्रेयस सागर रामगुलाम हवाई अड्डे पर एक इमीरेट्स लाउंज के खुलने के सिलसिले में बात की। आते सितंबर में उद्घाटन किया जाएगा। क्लोडिया जेफवागा दिवादू, विधि मासीबुरन।
2: पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और इमिरेट्स एयरलाइंस के कई अधिकारियों के बीच मैत्रीपूर्ण मुलाकात हुई। इस दौरान मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव से घिरे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में मॉरिशस और दुबई के बीच विमान सेवाओं पर चर्चा की गई। वेस्ट एशिया इंडियन ओशन एमिरेट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऐसा सुलेमान अहमद बताते हैं,
3: वी केम हियर जस्ट टू मीट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड जस्ट टू थैंक हिम फॉर ऑल द सपोर्ट इवन विद एवरीथिंग दैट वाज गोइंग अराउंड ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिकल इश्यूज। You know, we were always here at the forefront and we've had great support from the island. And we also made sure that, you know, even when the Honorable Prime Minister had called us and asked us to make sure that we do have flights that will come back to the island carrying Mauritian nationals from all across the world, we were there. We made sure that we are committed. We went immediately from the daily flight that we had. Now we have a double daily flight into Mauritius.
2: सर शिव सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए एमिरेट्स लाउंज के जल्द खुलने पर भी चर्चा हुई। ये लाउंज कंपनी की नई प्रीमियम अवधारणा का हिस्सा होगा।
3: One of the new investments will be a new dedicated lounge at the airport. That's going to be the first of its kind, specifically for Mauritius and even for us, for all the network and all the lounges that we own all across the world. This is going to be the new standard. So we're very excited about it. Hopefully September it should be ready.
2: ये निवेश मॉरिशस में अपनी उपस्थिति को स्थायी रूप से मजबूत करने की एमिरेट्स की इच्छा की पुष्टि करता है। इस एयरलाइन ने 2002 में हमारे यहाँ परिचालन शुरू किया था।
0: जून महीने में मॉरिशस आए 89,000 पर्यटकों की संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई। जून 2025 में 97,000 से ज्यादा पर्यटकों ने मॉरिशस का दौरा किया था, यानी इस साल करीब 8% की गिरावट आई। पर्यटन जूनियर मंत्री सिडनी पिया के मुताबिक अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये हालत उतनी ज्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि इस साल जनवरी से जून तक पर्यटकों के आगमन में 1.5% की बढ़ोतरी देखी गई। जूनियर मंत्री सिडनी पिया ने कहा कि दो वजहों से ये परफॉर्मेंस रहा है, पहला फुटबॉल विश्व कप और दूसरा मध्य पूर्व के तनाव। प्रणव बिहारी ने उनसे बात की, विधि मासीबुरन की जबानी उन्हें सुनते हैं।
4: Moi, basé l'expérience qui mouena dans un mois de juin pendant une Coupe du Monde, toujours nous galérer, tout le temps, depuis nous dans l'industrie du tourisme, lit aussi dans une période.
2: अपने अनुभव के अनुसार जून महीने में जो वर्ल्ड कप हुआ है और मध्य पूर्व में जो लड़ाई चल रही है, तो ये मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं कि पर्यटकों की संख्या में कमी आएगी।

0: इंग्लैंड से 25% कम पर्यटक आए हैं, दुबई से प्राप्त आंकड़े 60% से घटा है। जब इंग्लैंड ने ये अलर्ट जारी किया था कि कोई भी ग्राहक दुबई से नहीं गुजर सकता, तो पर्यटकों की संख्या में कमी आई।
1: Vous allez comprendre maintenant le temps que le client décide pour stay and then leave booking time. Il décide pour revoyager. Donc ça prend du temps. Maurice, le touriste, a dit, il est très mécanique par rapport à l'accès aérien. Il y a pourtant, nous connaît qui avion en mine.
2: फ्लैग इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्वास्थ्य सेवा दी जाने लगेगी। कल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्घाटन किया गया, जिसका मकसद इलाके के बाशिंदों के लिए सेहत की सेवाओं को ज्यादा आसान बनाना है। अगले हफ्ते से ये केंद्र खोला जाएगा और सप्ताह में एक बार कार्यरत होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती से हफ्ते में 4-5 बार मुआयना यानी कंसल्टेशन किया जाएगा। सिथिया मिल त्रियोली में एक खुफिया कार्रवाई के दौरान एक पुलिस को ड्रग तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। कांस्टेबल मोहम्मद अली मामूद विप्सू में काम करता था और उसकी उम्र 33 साल की है। उसके साथ ही 20 साल के शेख अजहर रसूदान को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं और उनकी हिरासत में कोकेन के 350 ग्राम पाए गए। कुल कीमत 5 मिलियन रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। इसके अलावा मोशन रुपए और विदेशी मुद्राएं भी जब्त की गई। गोजबेल की आजसू ने ये कार्रवाई चलाई है। 30 बिलियन रुपए की लागत पिट्रोली ठेके के सिलसिले में पुराने प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और मनीष गोबिन को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का फिर से सामना करना पड़ेगा। सन 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को दिए कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये एक बड़ा चरण होगा। पूर्व सरकारी नेता को जांचकर्ताओं को ठेका देने की सभी परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। अभी तक कोई तारीख तय नहीं है क्योंकि उनके वकील रऊफ गुलबुल व्यस्त हैं। पूर्व मंत्रियों से भी तहकीकात की जा रही है। कल पुराने वित्त मंत्री रंगानाथन परयाची से पूछताछ की गई। जून में पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन के अस्थायी इल्जाम के तहत पूर्व मंत्री सुदेश कालीचंद के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कल पुराने आईसीटी मंत्री दीपक बाल गोबिंद को सेंट्रल सीआईडी में जांचकर्ताओं के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अन्य खबरों में देश का सबसे बड़ा सड़क ढांचा M4 के निर्माण कार्य इस साल के आखिर से शुरू किए जाएंगे। 30 किलोमीटर लंबी ये सड़क उत्तर पूर्व और हवाई अड्डे को जोड़ेगी। भारत सरकार की मदद से 30 महीनों की अवधि में ये परियोजना पूरी होगी। अनाबेल वुल्बिया, करुणा लालू।
3: तकरीबन 30 किलोमीटर के नए रास्ते से देश के उत्तरी प्रांत को पूर्व से जोड़ना इस महत्वाकांक्षी परियोजना की बदौलत दोनों क्षेत्रों के बीच सफर का समय काफी हद तक घट जाएगा। आज इसे तय करने के लिए करीब 2 घंटे लगते हैं। नए रास्ते से आवाजाही सुगम होगी, कुछ स्थलों पर ट्रैफिक जाम कम होगी और उत्तर पूर्व तथा हवाई अड्डे के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस परियोजना के लिए भारतीय सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी और कार्य शुरू होने के 30 महीने बाद खत्म होंगे। पूर्वी प्रांत का ये पहला मोटरवे होगा। सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ने कहा, एक ऐसा मार्ग जिसका लाभ पूरा देश को होगा, पर्यटन के लिए भी फायदेमंद होगा। ग्रामीण इलाकों को उत्तर दक्षिण और पश्चिम को जोड़ना ये हमारी योजना है। कार्य इस साल के अंत में शुरू होंगे। इससे पहले परियोजना कई चरणों से गुजरेगी। तकनीकी मूल्यांकन भारत में किया जाएगा जबकि वित्तीय मूल्यांकन मॉरिशस में। एक बृहद परियोजना जिसके लिए मॉरिशन और भारतीय अधिकारियों का समन्वयन कोऑर्डिनेशन चाहिए। भारतीय उच्चायुक्त महामहिम अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, गत सितंबर महीने प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की भारत यात्रा के समय $680 मिलियन के खास वित्तीय सहायता प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। इस प्रोग्राम के 3 चरण हैं। एक हिस्सा दान के रूप में दान और लाइन ऑफ क्रेडिट का मिश्रण तथा प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता। कुल 8 परियोजनाएं साकार की जाएंगी। ये वाला सबसे अहम है, जिसकी अनुमानित लागत 10 बिलियन रुपए है, यानी कि

0: 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की कि इस परियोजना को साकार करने में पर्यावरण पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। अंतिम चरण में ओलिविया गांव को हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए एक मार्ग बनाया जाएगा। अंत में ये नया सड़क ढांचा देश के कई इलाकों और हवाई अड्डे के बीच बेहतर कनेक्टिविटी कायम करेगा। इससे गाड़ी चालकों को फायदा होगा और पूरे पूर्वी प्रांत में विकास में योगदान होगा।
1: इस शनिवार को हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर पीवी स्कीम की लॉन्चिंग की जाएगी। सीबी और डीबीएम सुबह 10 बजे से क्यूपिप के अपने पुराने कार्यालय में एक सत्र का आयोजन कर रहे हैं। इसके दौरान सप्लायरों और फोटोवोल्टाइक प्रणाली स्थापित करने वाले लोगों के साथ बातचीत की जाएगी। शैली नेबन की रिपोर्ट पर ये विवरण।
2: हालिया राष्ट्रीय बजट में इस योजना का ऐलान किया गया था। घर के लिए फोटोवोल्टाइक प्रणाली और बैटरी खरीदने पर 25% की सब्सिडी, जो हर घर के लिए 75,000 रुपए तक सीमित होगी। ये कदम रेजिडेंशियल सौर्य ऊर्जा को तेजी से अपनाने के लिए कई पहलों का हिस्सा है। इनमें शामिल हैं ग्रिड में भेजी गई बिजली के बायबैक टैरिफ में 15% की बढ़ोतरी और 1,000 लाभार्थी घरों की छतों पर लगाए गए सोलर किट्स की ओनरशिप। अब ये परिवार अपने सौर्य बिजली का 100% इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि पहले उन्हें सिर्फ 50% इस्तेमाल करने की इजाजत थी। सौर्य पैनल्स, बैटरीज और इन्वर्टर्स पर वैसे छूट दी जा रही है। शनिवार की बैठक से बहुत उम्मीद है, खासतौर पर इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण को लेकर। डीबीएम द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त फाइनेंसिंग की शर्तें, जिन्हें घर के मालिक अपने हिस्से का बचा हुआ खर्चा पूरा कर सकें। ये भी ध्यान दें कि पिछले जून में ऊर्जा और जन उपयोग मंत्री पैट्रिक कास्यावादन ने कहा था कि बची हुई राशि को डीबीएम या किसी दूसरे बैंक से कर्ज लेकर फाइनेंस किया जा सकता है। हालांकि उस वक्त इस उधार की शर्तों के बारे में कोई तफसील जानकारी नहीं दी गई थी। सबसे पहले क्षेत्र के पेशेवर यानी सीबी और डीबीएम के अफसर एक साथ इंस्टॉलेशन को अंतिम रूप देंगे, ताकि इस योजना को आम जनता के लिए लागू करने से पहले सब कुछ ठीक तरह से तैयार हो।
1: विदेश में ईरान और इराक की सरहद पर अमेरिकी हमले में 2 लोग जान से गए हैं और 11 लोग घायल हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जलमार्ग अबनाए हुरमूज में किसी भी जहाज पर हमला करेगा तो उससे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक नागरिक परमाणु प्रोग्राम को विकसित करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब ने एक संघ मिल की हैसियत रखने वाला समझौता तय किया। इस संधि को एक शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता करार दिया गया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को सऊदी के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। पेरू की राजधानी लीमा में एक घर में आग भर की एक ही परिवार के 10 सदस्यों की मौत हुई है, जिनमें 5 बच्चे शामिल थे। 2 लोग जख्मी हुए हैं। अभी वहां की स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की ताकि इस आग की वजह मालूम की जा सके। हालत हमारे इलाके में हल्की वा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम अच्छा रहेगा। दोपहर बाद उत्तर में बादल घिराएंगे और रह रहकर कुछ चींटे पड़ेंगी। दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। आज रात मौसम साजगार रहेगा, हवा दक्षिण की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा, 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण के लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह 6:43 पर सूरज उगा है और शाम को 5:49 पर सूरज ढल जाएगा।

आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। अफ्रीका की सेवा में एक इलाकाई वित्तीय केंद्र की हैसियत से मॉरिशस अपनी जगह और मजबूत करना चाहता है। इस गतिशीलता से ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने एबन में तय किया समझौता। सरशेव सागर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आते सितंबर में इमिरेट्स लाउंज का उद्घाटन। जून महीने में मॉरिशस आए 89,000 पर्यटकों की संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई। जून 2025 में 97,000 से ज्यादा पर्यटकों ने मॉरिशस

का दौरा किया था, यानी इस साल करीब 8% की गिरावट आई है। फ्लैक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए नई स्वास्थ्य सेवा दी जाने लगेगी। कल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्घाटन किया गया। और विदेश में ईरान और इराक की सरहद पर अमेरिकी हमले में 2 लोग जान से गए हैं।

आप तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी कादिया कुदादीन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभदिन आप सभी को। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुनिए। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड सेंट जुलियन विलेज में 84 साल के 84 years old जनाब अब्दुल फारूक मामदीन, जनाब अब्दुल फारूक मामदीन जो भाई फारूक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज ढाई बजे इनकी बेगम रोजीदा मामदीन के घर रॉयल रोड सेंट जुलियन विलेज से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए सेंट जुलियन विलेज की मस्जिद और फिर दफनाने के लिए बुबुआ का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। भारत रोड लालमाची में 54 साल के 54 years old श्री उत्तम कुमार हीरा जो उत्तम के नाम से ही ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज ढाई बजे इनकी पत्नी कौशल्या हीरा के घर भारत रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2:30 PM। नंबर 17 इपेंगल रोड मोहोश बुबासा में 66 साल की 66 years old श्रीमती देवी सियोराम पैराशी नाम नागामुतु जो देवी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज तीन बजे के घर नंबर 17 इपेंगल रोड मोहोश बुबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमा तय मोगोश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड वैली दी प्रेत्र में 76 साल की 76 years old श्रीमती गीजावंती नौंदा पैदाइशी नाम दिलजो जो मांती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके बेटे रमेश नौंदा के घर रॉयल रोड वाली दी प्रेत्र से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुइले वाली दी प्रेत्र की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। कॉन जानेट शुमे ग्रोनिये में 79 साल की 79 years old श्रीमती गोइंदामा रामास्वामी पैदाइशी नाम अनाकुची जो नायगी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे सिनिवासन रामास्वामी के घर कॉन जानेट शुमे ग्रोनिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिव्यादी काले की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 31 मौसलमा VOS ग्रोबी यूनिकोव में 68 साल के 68 years old श्री रघुनानन गोंदारी जो राजे के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दोपहर बाद एक बजे इनकी पत्नी देवपति गोंदारी के घर नंबर 31 मोसलमा VOS ग्रोबियो न्यूग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड पिटी राफ्रे में 76 साल के 76 years old श्री केश्वर प्रयाग जो रोहित के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दोपहर बाद एक बजे इनकी पत्नी देविका प्रयाग के घर रॉयल रोड पिटी राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागोची की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड बुबासा में 76 साल की 76 years old मोहतरमा हलीमा अब्दुल हमीद असेंजी जो लालगोरी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज डेढ़ बजे इनकी बेटी रुबीना वाइस के घर नंबर 108 रॉयल रोड बुबासा से उठाकर दफनाने के लिए रिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। शुमें बुलोंजे सियाकुंस्टों सेंट पियर में 77 साल की 77 years old श्रीमती प्रियम वदा नारायदू पैदाइशी नामा पाडू जो प्रियम के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज डेढ़ बजे इनके बेटे विराज नायागैदू के घर
शिमे

रोंगे सियाकोंस्टांस सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोंस्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डे एट 1:30 PM। टुस्का रोड प्रेवकर में 89 साल के 89 years old श्री रूप नारायण सिंभू। श्री रूप नारायण सिंभू जो सदैव के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है और थे आज सुबह नौ बजे इनके बेटे संजय सिंभू के घर तुस्का रोड क्रेवकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। लुई लाजेर रोड उकुले में 92 साल की 92 years old श्रीमती साबित्रा हीरालाल। श्रीमती साबित्रा हीरालाल जो चाची साबित के नाम से ज्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है और थी आज दो बजे इनके बेटे आनंद हीरालाल के घर लुई लाजेर रोड उकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीगागा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। EDC बैलेंस रोड प्लेन मान्यों में 45 साल के 45 years old श्री देवराज प्यती जो चिप के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थे आज 10 बजे इनके भाई देव प्यती के घर EDC बैलेंस रोड प्लेन मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मान्यों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। एम्पास नोत्रदाम में बग में 68 साल के 68 years old श्री ज्ञानदेव पिहारी जो बाबा के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थ ही आज 11 बजे इनकी पत्नी लक्ष्मी पिहारी के घर एम्पास नोत्रदाम में बग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुवालों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड रिविया जुपस्ट में 38 साल के 38 years old श्री नितिन चुटकुरी जो नीतीश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थे आज 10 बजे इनके पिता धर्मानंद चुटकुरी के घर रॉयल रोड रिविया जुपस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगाबो रिविया जुपस्ट की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 23 बाउंडेरी स्ट्रीट रिजिल में 93 साल की 93 years old श्रीमती लक्ष्मीन पराऊ पैदाइशी नामा कालू जो लक्ष्मीन लुलुन के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं अर्थ ही आज साढ़े दस बजे इनके घर नंबर 23 बाउंडेरी स्ट्रीट रिजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदो गौद की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रॉबिन्सन रोड क्यूपिप में 55 साल के 55 years old श्री रविंद्रनाथ बक्तोवा जो बेबे के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थ ही आज साढ़े दस बजे इनके घर रॉबिन्सन रोड क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 24 प्रिंस अल्फ्रेड स्ट्रीट ट्रंकबो में 60 साल के 60 years old श्री अमुगम गुइंदेन गुंदुन जो नंदा के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थ ही आज 10 बजे के भाई धर्माराजन गोइंदेन गुंदुन के घर नंबर 24 प्रिंस अल्फ्रेड स्ट्रीट ट्रंकबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबाओ की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

ऑलरेडी 657 बस आप ही इन गानों में खोए रहे, लेकिन हाँ बिल्कुल होश मत खोइएगा। हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, कैच यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:04 हुए हैं। कैसे हैं भाई? इस समय जो लोग अभी काम पर जा रहे हैं ना, उन लोगों के लिए तो अभी एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा, क्योंकि अभी सनराइज हो रहा है और वो खूबसूरत सा सनराइज देखने को पता नहीं कितने सारे लोगों को अभी मौका मिला है। सो उसके देख कर तो मन खुश हो गया होगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। वैसे आज मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं भी देख रही थी अपने रियर मिरर पे, देखो सनराइज हो रहा है। लेकिन जो बहुत अच्छी बात, पता है क्या हुआ, एक प्लेन जा रही थी और ये जो सनराइज होता है तो वो जो लालिमा होती है ना, वो जो कलर है उस प्लेन पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच। मैं सोच ही रही थी अभी प्लेन के अंदर बैठे इतने सारे लोग अपना कैमरा निकाल के सब वीडियो बना रहे होंगे। सो आप भी लकी हो सकते हैं, क्या पता किसी दिन आप भी प्लेन में बैठे हो और सनराइज हो रहा होगा। लेकिन प्लेन में बैठने के लिए सनराइज देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सनराइज आप समुंदर किनारे जाके भी देख सकते हैं। तो जितने भी लोग सी साइड पर, उनको बिग हेलो। विनीत आ गई है साथ देने के लिए On Thursday, 23rd of July, सुबह के 7:05। And thank you so much, नीतू शाह। विनीता की बारी है आपको एंटरटेन करने की, करेंगे ना 9 बजे तक।

0: brave toi. Li capable nous tout. Protège tu les cœurs aujourd'hui. Pour qu'il dîme, tu pas à risque un bon problème de cœur. Allô, enjoy your life avec Anchor Life. Parce qu'il s'abondit les Anchor Life là. Et n'a stérol végétaux qui activement combattent mauvais cholestérol. En plus de te man activité physique et que mange équilibré. Sans oublier te bondit les Anchor Life. Mais là, te pébron soin tous les cœurs. Anchor Life, your heart, act now. Veuillez consulter votre professionnel de santé si besoin.
1: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Tout vous attend chez Winners. Les 250 g de café granulé Winners à 139,95 € et les 3 kg de lessive en poudre machine ou main d'Ethos à 149,95 €. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
2: On est tous winners.
3: RM2
4: Radio Musty.
3: A good beat for your morning show.
4: Come on.
3: RM2
4: Radio Musty.
5: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. सुबह के 7:18 हुए हैं. यस गाइस, चलिए यहाँ पर अब आपको खुश करने का मौका, यानी कि आपके लिए लेकर आए हैं हम एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टू फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कंसर्ट, जो होने वाला है 25 जुलाई को शाम 7:30 SBICC पाई में. यस, वी गोना स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया ऑफ कोर्स, यहाँ पर उनकी जो आवाज़ है भाई, गोल्डन एरा इसी को कहते हैं जहाँ पर इतना रोमांस था. इतने सारे यहाँ पर रोमांटिक कपल्स आए थे, आई मीन एक्टर्स आए थे, जिन पे इनकी आवाज़ जो है ना, क्या मैच किया था भाई. कितने सारे बॉलीवुड एक्टर्स को उन्होंने अपनी आवाज़ दी है और वो इन्हीं की आवाज़ बन के रह गए. तो चलिए, ये जो टाइमलेस मेलोडीज़ हैं हम इन्जॉय करेंगे, ये जो लेजेंडरी हिट्स हैं इसको इन्जॉय करेंगे. पूरा एक समा बन जाएगा मैजिक का, क्योंकि ये पुराने गाने, आई मीन पुराने नहीं, 90s का जो इरा है इसको हम, हमारे लिए तो बस क्या कहें, ये जो गोल्डन इरा है इसको जीने के लिए कितने सारे लोग हैं, तरसते हैं इनके गाने. वाह, अभी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया ना, अब मैं क्वेश्चन पे आऊँ, वरना मुझे पता है कि आप अभी अंदर आपका मन छटपटा रहा होगा कि भाई विदिता जल्दी करना, टिकट दे देना, हमें जाना है. हाँ बिल्कुल दे रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा. मैं आपके लिए गाना चलाऊँगी, आपको मुझे बताना है कि ये गाना अभिजीता की आवाज़ में है, लेकिन किस फिल्म से लिया गया है. जी हाँ, आपको मुझे बताना है कि ये गाना किस फिल्म से लिया गया है. हो सकता है कि आपको मौका मिले इनाम जीतने का. ये एक टिकट फॉर दी गोल्डन 90s एरा टू फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य. मैं आपको बता दूं, टिकट्स आर अवेलेबल ऑन mochike.mun रिजू तायू. 850 रुपीज से शुरू होता है रिजर्वेशन, या हॉटलाइन कॉल करें रिजर्वेशन के लिए. इट्स 4669999 4669999. प्यार से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जल्दी से जवाब दीजिए ऑन 5491294. और हाँ प्लीज़, मिस्टर इंडिया बनने की ज़रूरत नहीं है, अपना पूरा नाम और पते के साथ जवाब भेजना.

0: बाप रे बाप, इतने सारे जवाब, इतने सारे जवाब, कितने सारों ने, कितने सारे लोगों ने यहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। हमारा जो क्वेश्चन था बहुत ही आसान था, हमने जो गाना चलाया आपको मुझे बताना था ये कौन सी मूवी है, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सही जवाब है आक्रोश, आक्रोश फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। एंड सवाल बहुत आसान था, जवाब बहुत आसान था। थैंक यू सो मच। लकी ड्रॉ में यहाँ पर बहुत बहुत सारे नाम आए हैं, और लकी ड्रॉ के बाद है जो जा रहा है इस एक टिकट के लिए फॉर द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट सैटरडे 25 जुलाई 7:30 पीएम एसवीआईसीसी पाई में। तो ये जवाब तो किसने दिया, सबने दिया भाई, अब लकी ड्रॉ कर लें। ओके, तो यहां पर जवाब आया है महावीर फ्रॉम कैटरबोन, थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है हमें। और आपको मैं बताऊं, आपको मिल रहा है ये एक टिकट टू दी गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। यहाँ पर टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स, प्योर म्यूजिकल मैजिक होने वाला है। टिकट्स स्टार्ट होता है 850 रुपीज से, अवेलेबल है एट mochuke.mu पर। तो इस अनफॉर्गेटेबल कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस जो है इसको मिस मत करना, रिजर्व करो अपना टिकट, कॉल करो इस हॉटलाइन पे, नंबर इज 4669999। गाइस आज थर्सडे हो गया, सैटरडे को कॉन्सर्ट होने वाला है, अगर आपने टिकट नहीं लिया तो जल्दी करो अपने टिकट ले लो एंड एंजॉय द 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। एंड हाँ, जो लोग किसी को बर्थडे के लिए सरप्राइज करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू सेंड मी द नेम एंड उनका नाम on 549 and 1294।
1: Radio Mastiff.

0: Show. James.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.
2: कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स

0: वाले आज
1: एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट।
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो, RM2
2: रेडियो।

0: हेलो मिस्टर निशाल, हेलो, यस मिस्टर निशाल, हेलो, यस मिस्टर निशाल, हेलो,
1: हेलो, मुझे एकुचू,
0: यस गुड मॉर्निंग मिस्टर निशाल,
1: यस,
0: हाउ आर यू डूइंग,
1: वर्किंग
0: ओके. आप शायद मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं लास्ट टाइम आपके यहाँ दाल पूरी खरीदने आई थी. ये देखो, मैं हमेशा मॉर्निंग में सरप्राइज करने आती हूँ और मुझे ही शौक दे देते हैं. चलो ठीक है, मुझे कंप्लेन आया है आपकी दाल पूरी के अंदर दाल नहीं दिख रहा. कहाँ गया दाल?
1: दाल?
0: हाँ, दाल पूरी के अंदर दाल नहीं है.
1: पेट में गया.
0: कैसे हो निशाल जी?
1: ठीक है.
0: अच्छा, आप रोज रेडियो मस्ती सुनते हो?
1: हाँ.
0: ऑलराइट, इसीलिए पहचान लिया. तो निशाल जी, अभी आप काम पे हैं कहाँ घर पे आज?
1: काम पे
0: है. काम पे है तो चलो भाई, आपके जितने आसपास में दोस्त हैं उनको भी बता दे कि रेडियो मस्ती ने आपको फोन किया था ये कहने के लिए.

0: रेडियो मस्ती।
1: रेडियो मस्ती की पूरी टीम की तरफ से निशाल जी आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और मैं आपको बताऊं, ये सरप्राइज जो है आपके लिए लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से हमने किया है, तो आपके लिए एक वाउचर है जो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा आकर MBC सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच, एंड अपने ID कार्ड के साथ आपको आना है। 2 दिन है, या तो फिर आज या तो फिर कल आपको आकर कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। और मैं आपको बताऊं कि आपकी वाइफ ने आपको सरप्राइज करना चाहा था, इसीलिए उन्होंने आपका फ़ोन नंबर हमें दिया था और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आप दालपूरी बेचते हो, तो आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको तरक्की मिले, आज का दिन आपके लिए बहुत खास बहुत स्पेशल हो, बर्थडे के दिन भी काम कर रहे हो, तो जितने भी लोग आएंगे उन सब की ओर से हैप्पी बर्थडे। एंड बस ऐसे ही सबका पेट भरते रहना और अपने दालपूरी का मैजिक दिखाते रहना, ठीक है जी निशाल जी?
2: थैंक्स,
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थोड़ा इमोशनल हो गया लगता है ना? क्या हो गया निशाल जी, खुश है? ओके चलो ठीक है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू, डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट योर वाउचर यहाँ पर आकर MBC अपने ID कार्ड के साथ। लूडो हाइपर मार्केट जो चाहते हैं कि हर कोई खुश रहे अपने बर्थडे पे और उनका बर्थडे स्पेशल हो उनके साथ।

0: Street Charts Ibiza. DJ Sakir for spin it up.
1: भाई हमारी 420 तो चलती नहीं है अभी. जैसे ही फोन करो सब पहचान जाते हैं. You're so lucky. Thank you so much, guys.
0: Say that to me.
1: आपने रेडियो मस्ती को अपना हमसफर बनाया हुआ है. गुड मॉर्निंग, सुबह के 7:35 हुए हैं. यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती पर मॉर्निंग बीट विजिता के साथ.

0: What?
1: RM2
2: Radio Musty.
3: Prendre soin de soi, ce n'est pas forcément se priver. C'est simplement choisir ce qu'il y a de plus bon pour notre corps. Parce que votre bien-être nous tient à cœur, Flora puise dans la nature toute la pureté de sa margarine savoureuse. Naturellement riche en oméga 3 et 6 et en vitamines, Flora veille chaque jour sur votre précieux cœur. C'est un petit geste simple, sain, pour vous sentir bien, tout simplement. Flora, quoi qu'il arrive, protégez votre cœur.
4: Moments that matter with Sicom.
5: आज हमर दू कोरी 11 बरिस होता, सैकों तीनो होता। ई ऊ उमिर है जब इंसान पाछे घूम के अपन जिंदगी के तनी आर जस्ती से देखे लगीला। ऊ जवान छोकरा छोकरी याद आवेला जे एगो जमाना में हमनी रनी जा पहिला कमाई के वेतन लिफाफा में बहुत जतन से रखल उ नोट अपन घर बनाई के सपना शादी लैका और उ त्याग जेकर बारे में कोई नहीं आज ले बोलीला। हमर उ बखत याद आवेला जब लाकुजिन के लताब पर घर के हिसाब किताब करथनी। उ महीना अभी भी याद बा जब ई निर्णय लेके पड़ल रहल कि घर

0: साइकिल या नवा गाड़ी किने के आर उ पल जब अपन सुतल लड़का के देख के मन में खाली एक के गो बात ठंड ले रनी, चाहे कुछ हो जाए इलोक के कोनो चीज के कमती नहीं हुई दी। फिर समय बितले गल, लड़का आज बड़ा हो गए लंजा, माँ बाप बूढ़ा होई लगलंजा, जिम्मेदारी भी अपन रूप बदल दिली बाटी। और एक दिन एहसास होएला कि जीवन भी शादी निखन है, जोन खाली निमन दिन के सहारे नहीं चलेला, ई में उतार चढ़ाव सब रहेला, ई चलेला एक दूसर के साथ निभाईला से, विश्वास से, और वो इंसान के संगे जे बिना कोनो शोर शराबा करत हर बरिस हर दुख सुख में तोहर संगे खड़ा रहेला। उ तोहर पत्नी या पति हो सकी या फिर कबो कबो तोहर जीवन साथी भी, जिकर बारे में आप हरोश के शायद नहीं सोचिला, काहे काहे कि वो बस हमेशा तोहर संगे बगल में खड़ा रहेला, जे तोहर बनावल हर एगो चीज के रक्षा करेला, तोहर सपना और जीवन के सब योजना में हाथ देवेला, आय होला काल के तैयारी में तोहर सहारा बनेला, और तब भी तोहर संगे खड़ा रहेला जब भविष्य निमन से नहीं रोकिला। एकदम एगो भरोसामंद बीमानी खन एगो ऐसन संगत या जिकर पर आंख मुन के विश्वास करी सकब। आजे तुहर पहिला सपना सब बड़ा फैसला सब चिंता प्लान और आई होला कई गो पीढ़ी ले हर कदम पर तुहर संगे रहेला। सिकम की कहानी भी ऐसी है, 51 बरिस के भरोसा की कहानी, परिवार माँ बाप लैका और आज लैका के साथ निभाते 51 बरिस होगल, सैकड़ों तीनों होगल, समय बीतल गल और सिकोम परिवार के एगो सदस्य जैसन बन गल। काहे की सच तो यही है, जिंदगी के सबसे खूबसूरत कहानी हमेशा विश्वास की कहानी रहेला।
1: It was moments that matter with Sikom.
2: Flash Sales pe débok kout metrik. Depi 17 jusqu'à 31 juillet, vin profite bal méga promo l'ON grand sélection produit pour ou la case. Jusqu'à 50% discount l'eau sanitaire, robinetterie, lavabo et collage. Prix là, flash net, promo là, extra. Metric, une enseigne du groupe KRMG.
3: Dis maman, pourquoi tu mets toujours du Blue Band partout, sur mes tartines et même dans mes pâtes?
4: Ah, c'est mon petit secret pour te voir grandir en pleine forme. Dans Blue Band, il y a des oméga 3 et 6, des vitamines A, D, B6 et B12. Ça puis, Blue Band apporte ce petit goût en plus qui fait toute la différence.
5: Blue Band fait toute la différence dans vos repas. Tartinés, cuire ou nappés, Blue Band apporte les nutriments essentiels pour la croissance de vos enfants.
6: Blue Band, a spoonful of nutrition.
7: La Global Healing Foundation vous invite pour son prochain événement Hanuman Katha, The Ultimate Devotion. Une session de Kundalini Awakening and Healing à Rivière des Anguilles, à côté du collège Rivière des Anguilles SSS, en face de la gare. Les prières se tiendront du samedi 25 juillet au jeudi 30 juillet par le Guru Sri Suraj Bihari. Vu la grande foule qui est attendue pour cette unique célébration, vous êtes priés de vous rendre sur les lieux à 19h15 précise pour vous assurer d'une place.
8: RM2 Radio Musti.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: And yes guys, समय हो गया है कि अब हम अरविंद से मिलें और चलिए जानते हैं कि अभी जो है स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है. काफ़ी सारी डिटेल्स के साथ आ गए हैं हमसे मिलने के लिए. और अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, तो चलिए अरविंद से मिलते हैं. गुड मॉर्निंग अरविंद.
2: वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. गुड मॉर्निंग RM2 listeners. The latest from the sports world. Glasgow 2026 Commonwealth Games आज से शुरू हो रही हैं. 74 देशों के टॉप एथलीट्स, जिनमें ओलंपिक और पैरालंपिक्स चैंपियन भी हैं, ग्लासगो में हैं. 11 दिनों का स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज से शुरू. पिछली बार बर्मिंगहम 2022 में ऑस्ट्रेलिया मेडल्स टेबल में टॉप आया था, 67 गोल्ड मेडल. इंग्लैंड दूसरे पोजीशन पे आया था. मॉरिशस 6 खेलों में है, 40 एथलीट्स ग्लासगो में है. पिछले खेलों में हमारे एथलीट 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए थे. इस बार मेडल चांसेस पैरा एथलेटिक्स, जूडो, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग में है. नोएमी अल्फोंस, विंसले गंगाया जूडो में, फैब्रिस वालेर बॉक्सिंग में, इन पर काफी उम्मीदें हैं. वैसे बॉक्सिंग के लिए ड्रॉ निकाले जा चुके हैं. आज से हमारे मुक्केबाज रिंग में उतरेंगे. आली मोरिस, इस बार ज्यादा से ज्यादा मेडल लाओ, देश का नाम रोशन करो. वाई नॉट गो बियॉन्ड द 5. ट्रांसन न्यूज, मॉर्गन रॉजर्स एस्टन विला में तो आ गया, एस्टन विला से चेल्सी में आ गया, बदले में गाउनाचो एस्टन विला में गया. लिवरपूल ने मोनाको के विंगर मैग्नस अक्लुइशे को लिए प्रस्ताव भेजा है, पर पेरिस सेंट जर्मेन भी उसे साइन करना चाहता है. पेरिस सेंट जर्मेन की ओर से कई ऑफर भेजे गए थे, पर मोनाको ने सब इनकार किया, अपने खिलाड़ी को बेचने से इनकार किया. लिवरपूल ने वर्ल्ड चैंपियन विक्टर मुनोज को साइन कर लिया है, पर नए बॉस एंटोनी इराओला ने कहा कि एक विंगर की जरूरत है जो सलाह के स्थान पर खेल पाए. टोटनहम हॉटस्पर का प्री सीजन शुरू हो गया और पहले मैच में ही नए खिलाड़ी से पैसा वसूल होने लगा है. माचुस फर्नांडेज, जिसे 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर खरीदा गया था वेस्ट हैम यूनाइटेड से, अपने पहले ही मैच में स्कोर किया एमके डॉन्स के खिलाफ. फर्नांडेज ने इसे अपने कारियर का बेस्ट गोल कहा. गोलकीपर मार्टिन जुब्राव का भी खेल पाया. 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग साइनिंग सांड्रो टोनाली को भी खेलने का मौका दिया गया. टोटनहम हॉटस्पर की टीम आज न्यूजीलैंड जा रही है प्री सीजन फ्रेंडली के लिए. यूईएफए चैंपियंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में कल ओमोजिया निकोजिया ने 1-0 से कायरात को हराया. लेव्स की सोफिया 1, यूनिवर्सिटादिया क्रालोवा 0, इग्नासिया 3, सेलिए 3. यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में डिनामो मिंस्क, बोहेमियंस, रीगा, स्पोर्टिंग ब्रागा जीत पाए, 2 मैच ड्रॉ. और आज यूरोपा लीग के सेकंड राउंड के क्वालिफाइंग मैच खेले जाएंगे. आर्सेनल का खिलाड़ी सलीबा बैक इंजरी के कारण काफी मैचों में नहीं खेल पाएगा. वर्ल्ड कप के दौरान उसे चोट लगी थी. क्रिकेट, हरारे जिम्बाब्वे में आज पहला टी20

0: टी मैच टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार T20 सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम नए कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ पहला T20 मैच जीतना चाहेगी। वैभव सूर्यवंशी पर फिर से फोकस है, यहीं पर उसने इंडिया अंडर 19 टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, पर इस बार सीनियर टीम में है। वापस कॉमनवेल्थ गेम्स पर आते हैं, टीम इंडिया के लिए इस बार काम आसान नहीं होगा, ऐसे कम डिसिप्लिन है जहां ये लोग मेडल जीतते हैं, जैसे इस बार रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश आदि नहीं है, ऐसे में कम मेडल्स की आशा है। पर जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, हाई जंप में सर्वेज कुशारे, वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चन्नू दो बार गोल्ड मेडल रह चुकी है, बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन जैस्मीन लंबोरिया, ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, प्रीति पावर जैसे एथलीट हैं टीम इंडिया के मेडल्स लाने के लिए। और मॉरिशस भी मेडल लाएगा। आली मोगिस, वी आर विद आवर टीम फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स। इस पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे, हमारा साथ देते रहिएगा। हैव अ वंडरफुल टाइम लिस्टिंग रेडियो मस्ती, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच भाई। गोल्ड तो लाना ही पड़ेगा, मेडल्स लाने पड़ेंगे। चलिए इसी के साथ अरविंद, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज गुडलैंड्स में एक फुटसाल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वहां के जो ऑर्गेनाइजर हैं जेसन, वो हमें कुछ मोर अपडेट्स देना चाहते हैं, तो चलिए उनसे भी मिल लेते हैं।
2: गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज जेसन बेसान, पी टीचर एट कॉलेज दियाल एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस यूथ फुटसाल टूर्नामेंट। इट इज विद ग्रेट प्लेजर दैट आई इनवाइट एवरीवन टू जॉइन अस टुडे for what promises to be an exciting day of football, sportsmanship and community spirit. Our tournament will bring together 24 talented teams from different regions, giving young players from 14 to 21 years old the opportunity to showcase their skills, passion and respect for the game. For me, organizing this tournament is much more than winning trophies. It is about creating opportunities for young people to stay active, build friendships, develop discipline, teamwork, and confidence while promoting healthy lifestyles through sports. See you today for an exciting futsal tournament.
1: थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्स। चलिए इसी के साथ समय हो गया है, हम इनको भी धन्यवाद देते हैं और अरविंद को भी।
3: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट।
4: Méga promo code quality déco. Tiles 30x30. Méga deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite quartz. Prix cassé, low lavoir. La lumière moderne, prix choc.

आवाजा भोजपुरी समाचार सुनना जा। अफ्रीका के सेवा में एगो इलाकाई वित्तीय केंद्र की हैसियत से मोरिस अपन जगह और ही मजबूत करे चाहेला एक गतिशीलता से ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट एबन में एगो समझौता तय करेलन जात पाते वित्तीय सेवा के क्षेत्र में काबिलियत के मजबूत और जानकारी के आदान प्रदान पर आधारित एगो रणनीतिक साझेदारी कायम करल कर रहल बाते। मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद इमिरेट्स मोरिस में अपन गतिविधि जारी रखेला और निवेश करे जाबा। आज काल ई विमानन कंपनी के एगो डेलीगेशन पोर्टवी में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लंजा। दोनों पक्ष सर शिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर एगो इमिरेट्स लाउंज के खुलने के सिलसिले में बात कर लंजा। आवत सितम में उद्घाटन करल जाए। सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट पर योजना विकसित हुआ था। एगो मौजूदा प्रोटोकॉल संधि के संदर्भ में एगो सलाहकार क्वालिटी इंश्योरेंस सेवा देत बा और तकनीकी सहायता भी देलन बाते। जमे ई नावा प्रणाली के अमल में लाए बाते जैसन के बजट 2026-2027 में घोषित कर ले बा। अधिकारी सरहद खातिर एगो डिजिटल संचालन प्रणाली के विकसित करल जा बाते। विदेश में एगो नागरिक परमाणु प्रोग्राम के विकसित करे खातिर अमेरिका और सऊदी अरब एगो संगे मिल के हैसियत रखने वाला समझौता तय कर लन जात बाते। इस संधि को एगो शांति

वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:07 हुए हैं और हम साथ साथ हैं आपके आपके अपने मॉर्निंग बीट में ऑन रेडियो मस्ती। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा। इट्स द

0: Weather Broadcast with Winners.
1: On est tous winners.
2: आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दोपहर बाद उत्तर में कुछ बादल घिर आएंगे और रह रहकर हल्की बरसात होगी। दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। आज रात के दौरान मौसम साजगार रहेगा। हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण की तरफ से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण में 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:43 पर, सूर्यास्त 5:49 पर।
3: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.
5: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Tout vous attend chez Winners. Les 250 g de café granulé Winners à 139,95 € et les 3 kg de lessive en poudre machine ou main d'Ethos à 149,95 €. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
6: On est tous Winners.

0: FM2 Radio Musti.
1: Depuis premier zoo, nous fin toujours là. À zout l'écoute, à zout côté. À chaque moment important de zout la vie. Nous extra happy trouve zout tous les jours connectés, grandis, épanouis. Et ensemble, nous pouvons continuer. Continuer causer, rier, partager, se dépiler, danser, amuser, rêver, vibrer. Zodi, nous encore plus confiants pour dire. Côte chaque nouveau technologie qui nous peut amener. Pour faire chaque Mauricien vivre l'expérience en compli, mighty CIA. Et c'est qu'ici, nous pour la même, à ce côté. Zodi, dis-moi, vive-li avec Mighty.
0: RM2
2: Radio Musti.
3: चलिए दोस्तों, कभी कभी होता है लाइफ में कि कोई आपसे बात नहीं करता, कोई आप पे ध्यान नहीं देता, कोई आपको अवॉइड करता है या कोई आपसे नफरत करता है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, लेकिन हर मिसअंडरस्टैंडिंग की जड़ कम्युनिकेशन की कमी नहीं होती। कभी कभी असम्पशंस भी रिश्तों को खामोशी से तोड़ देते हैं। देखो भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग बात नहीं करते। कई बार हम बिना पूरी सच्चाई जाने दूसरों के इंटेंशंस अश्यूम कर लेते हैं। ये असम्पशंस ट्रस्ट को कमज़ोर कर देते हैं और छोटी सी कन्फ्यूजन को बड़े डिस्टेंस में बदल देते हैं। हर बात का कंक्लूजन खुद मत बना लो, पहले समझो फिर रिएक्ट करो। एक हॉनेस्ट कन्वर्सेशन कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म कर सकती है। लिसनिंग इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज स्पीकिंग। अश्यूम कम करो, समझने की कोशिश ज्यादा करो, क्योंकि हर कहानी के हमेशा दो पहलू होते हैं।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: A good beat for your morning show. From RM2
3: Radio.

जिसका मुझे, आपको भी था इंतजार। मेरा काम है आपको खुश करना, मेरा काम है आपके लिए गिफ्ट लेकर आना, और आपका काम होता है पार्टिसिपेट करना और इस इनाम को जीतना। तो चलिए, यहाँ पर आपको मिल सकता है एक चांस टू विन वन टिकट टू द गोल्डन 90s ईरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट, जो होने वाला है 25 जुलाई 7:30 PM SBICC पाई में। अभी हम जानते हैं कि अभी आपको वो कहते हैं ना, लहू मुलक गया, इतने सारे गाने चला रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके दिल के अंदर तो हो ही रहा होगा। आपने बहुत प्यार से अपने दिल को थाम के रखा होगा, लेकिन दिल कहता है बदतमीज दिल जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, तो मेरे साथ खेलना है, टिकट को जीतना है। और याद रखिए, अगर आप टिकट जीतना चाहते हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और टिकट्स आर एक्चुअली अवेलेबल एट mirchi.mu/nrezo. 850 rupees से शुरू होता है, जल्दी करो, कॉल करो, हॉटलाइन नंबर है 4669999, और अपना टिकट जो है उसको रिजर्व कर लो। और अभी के लिए मेरे सवालों का जवाब देंगे आप। आपको मुझे बताना है कि हमारे जो अभिजीत भट्टाचार्य जी हैं, जिसे हम अभिजीत दा बोलते हैं प्यार से, तो उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट किया था, यानी कि नॉन फिल्म गीतों का। और नॉन फिल्म म्यूजिक की जब हम बात करें तो उनके तो बहुत सारे एल्बम्स हैं। उन्होंने एक एल्बम निकाला था यादें सीरीज का, जी हाँ, यादें सीरीज का, जिसमें उन्होंने किशोर दा के बहुत सारे गाने गाए हैं। और उनके साथ दो और सिंगर्स हैं बॉलीवुड के, जो उनके साथ उन्होंने इस एल्बम के लिए गाने गाए हैं। चलो मैं आपको बता दूं, एक उनमें से है कुमार सानू, दूसरा कौन है आप मुझे बताइए। जी हाँ, उनका जो नॉन फिल्म एल्बम रिलीज हुआ था यादें, उसमें उन्होंने किशोर दा के कई सारे गाने गाए हैं। उसमें दो सिंगर हैं जिन्होंने उनके साथ गाया है, एक तो है कुमार सानू, दूसरे सिंगर का आप मुझे नाम बताइए। और चलिए यहाँ पर टन टना टन इनाम जीतने को रेडी हो जाइए। वैसे यहाँ 9 से 12 तो कोई और आएगा, मैं तो 9 बजे तक आपके साथ हूँ। जल्दी कीजिए, अपने जवाब भेजिए ऑन 5491294 पूरे नाम और पते के साथ।

0: Radio Musti.
1: Et n'en cause qui dit, malé à peine à l'odeur. Il l'est temps pour qu'il nous prend soin de la santé. Et c'est pour ça que SICOM vient développer un nouveau assurance qui appelle SICOM Wellness Plan. Ce plan-là inclut un test médical régulier et gratuit qui peut aider ou détecter un problème grave bien en avance. Et SICOM paye ou la somme assurée tout de suite en cas de diagnostic là, CAI. Ça peut permettre ou faire ou traitement avec un esprit positif. Et si vous ne faites aucune réclamation jusqu'à la fin du contrat, SICOM rembourse ou somme assurée totalement. Plus d'informations sur SICOM Wellness Plan, contactez-nous au 203-8401, visitez-nous au SICOM.me ou contactez un de nos représentants. Conditions applicables. SICOM opère sous licence de la FSC.
2: SICOM Group, a lifetime commitment.
0: RM2 Radio Musti.
3: A good beat for your morning show.
0: Come on.
3: RM2
0: Radio Musti.
4: सुबह के 8:32 मिनट हुए हैं और मैं भी चाहती हूँ कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उन सब की बर्थडे सी बाहर हो वो खुश हो क्योंकि आपको मौका मिले इनाम जीतने का. तो चलिए यहाँ पर हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती पर. हमारा सवाल था आपके लिए, हमने आपसे कहा था कि अगर आप सही जवाब दोगे तो आपको मिल सकता है एक टिकट टू द गोल्डन 19

हीरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य, उनका लाइव इन कंसर्ट होने वाला है 25 जुलाई 7:30 PM SBICCPI में। तो यहाँ पर सवाल था हमारा, हमने आपसे पूछा था कि उनका एक नॉन फिल्म एल्बम था यादें, उसमें उन्होंने किशोरदा के कई सारे गाने गाए हैं, उनमें दो और सिंगर्स हैं जिन्होंने उनके साथ गाने गाए हैं, एक तो कुमार सानू का नाम मैंने लिया था, दूसरे का मैंने आपसे सवाल किया था कि दूसरा कौन है, और दूसरा है विनोद राठौर। जी हाँ, विनोद राठौर जी उन्होंने उनके साथ गाने गाए हैं। और चलिए अभी देखते हैं कि विनर कौन है। तो यहाँ पर सही जवाब देकर विनर बनी है भारती जी, आपको कहेंगे कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। विजय पॉस से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एंड आपने कहा कि भैया सही जवाब है विनोद राठौर, सो थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, आपने सही जवाब देकर यहाँ पर एक टिकट जीता है फॉर दी गोल्डन 90s era 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइविंग कंसर्ट, जो कि होने वाला है इस सैटरडे को। और मैं आपको बता दूँ कि अभिजीत दा जो है वो कदम रख चुके हैं मॉरिशस में, और उनके जो गाने होंगे आपको मौका मिलेगा लाइव उनको सुनने का, सिर्फ अपने गाने नहीं क्योंकि फिल्मों के लिए तो उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन वो हमेशा अपने शोज में जितने भी जाने माने दिग्गज कलाकार हैं उनको भी ट्रिब्यूट देते हैं, तो ऐसे भी गाने आपको सुनने को मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू कॉल द हॉटलाइन 4669999 अगर आप अपना टिकट रिजर्व करना चाहते हैं। 850 rupees से टिकट स्टार्ट होते हैं एंड इट्स अवेलेबल एट mochike.mun रेजो उतायू।

0: अकेली नहीं जा रही हूँ, आपको भी साथ में लेके जाऊंगी।
1: स्पोर्ट्स न्यूज,
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: एंड यस दोस्तों, अगर आपने हमारा स्पोर्ट्स मिस कर दिया था एट 7:40, तो चलिए यहाँ पर अरविंद के साथ हम फिर से जानेंगे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मुगा गुडलैंड्स में हो रहा है सेकंड टर्म फुटसाल टूर्नामेंट। यहाँ पे 20 टीम जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। 9:15 से शाम के 4 बजे तक, यानी 5 मिनट में वही शुरू होने वाला है। ये हो रहा है मुगा गुडलैंड्स में। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो भूलिएगा नहीं सेकंड टर्म फुटसाल टूर्नामेंट मुगा गुडलैंड्स में, जहां 20 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि 5 मिनट में अभी शुरू होने वाला है। और इसी के साथ चलिए अरविंद का एक बार फिर से वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग अरविंद।
3: अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स आज से शुरू हो रहे हैं। 74 देशों के टॉप एथलीट्स, जिनमें ओलंपिक और पैरालंपिक्स चैंपियन भी हैं, ग्लासगो में हैं। 11 दिनों का स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज से शुरू। पिछली बार बर्मिंगहम 2022 में ऑस्ट्रेलिया मेडल्स टेबल में टॉप आया था, 67 गोल्ड मेडल। इंग्लैंड दूसरे पोजीशन पे आया था। मॉरिशस 6 खेलों में है, 40 एथलीट्स ग्लासगो में है। पिछले खेलों में हमारे एथलीट 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए थे। इस बार मेडल चांसेस पैरा एथलेटिक्स, जूडो, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग में है। नोएमी अल्फोंस, विंस्ले गंगाया जूडो में, फैब्रिस वालेर बॉक्सिंग में, इन पर काफ़ी उम्मीदें हैं। वैसे बॉक्सिंग के लिए ड्रॉ निकाले जा चुके हैं, आज से हमारे मुक्केबाज रिंग में उतरेंगे। आली मोरिस, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाओ, देश का नाम रोशन करो, वाई नॉट गो बियॉन्ड द 5। ट्रांसफर न्यूज़, मॉर्गन रॉजर्स अस्टन विला में तो आ गया, अस्टन विला से चेल्सी में आ गया, बदले में गाउनाचो अस्टन विला में गया। लिवरपूल ने मोनाको के विंगर मैग्नस अक्लुइशे को लिए प्रस्ताव भेजा है, पर पेरिस सेंट जर्मेन भी उसे साइन करना चाहता है। पेरिस सेंट जर्मेन की ओर से कई ऑफर भेजे गए थे, पर मोनाको ने सब इनकार किया, अपने खिलाड़ी को बेचने से इनकार किया। लिवरपूल ने वर्ल्ड चैंपियन विक्टर मुनोज को साइन कर लिया है, पर नए बॉस एंटोनी इराओला ने कहा कि एक विंगर की जरूरत है जो सलाह के स्थान पर खेल पाए। टोटनहम हॉटस्पर का प्री सीजन शुरू हो गया और पहले मैच में ही नए खिलाड़ी से पैसा वसूल होने लगा है। माचुस फर्नांडेज, जिसे 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर खरीदा गया था वेस्टहम यूनाइटेड से, अपने पहले ही मैच में

0: स्कोर किया एमके डॉन्स के खिलाफ। फर्नांडिस ने इसे अपने करियर का बेस्ट गोल कहा। गोलकीपर मार्टिन जुब्रव का भी खेल पाया। 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग साइनिंग सांड्रो टोनाली को भी खेलने का मौका दिया गया। टोटनहम हॉटस्पर की टीम आज न्यूजीलैंड जा रही है प्री सीजन फ्रेंडली के लिए। यूईएफए चैंपियंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में कल ओमोजिया निकोजिया ने 1-0 से कायरात को हराया। लेव्स की सोफिया 1, यूनिवर्सिटादिया क्रालोवा 0, इग्नासिया 3, सेलिए 3। यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में डिनामो मिंस्क, बोहेमियंस, रीगा स्पोर्टिंग ब्रागा जीत पाए 2 मैच ड्रॉ। और आज यूरोपा लीग के सेकंड राउंड के क्वालिफाइंग मैच खेले जाएंगे। आर्सेनल का खिलाड़ी सलीबा बक इंजरी के कारण काफी मैचों में नहीं खेल पाएगा। वर्ल्ड कप के दौरान उसे चोट लगी थी। क्रिकेट, हरारे जिम्बाब्वे में आज पहला T20 मैच टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार T20 सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम नए कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ पहला T20 मैच जीतना चाहेगी। वैभव सूर्यवंशी पर फिर से फोकस है। यहीं पर उसने इंडिया अंडर 19 टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, पर इस बार सीनियर टीम में है। वापस कॉमनवेल्थ गेम्स पर आते हैं। टीम इंडिया के लिए इस बार काम आसान नहीं होगा। ऐसे कम डिसिप्लिन्स हैं जहां ये लोग मेडल जीतते हैं, जैसे इस बार रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश आदि नहीं है। ऐसे में कम मेडल्स की आशा है। पर जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, हाई जंप में सर्वेश कुशारे, वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चन्नू 2 बार गोल्ड मेडल रह चुकी है। बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन जैस्मीन लंबोरिया, ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, प्रीति पावर जैसे एथलीट हैं टीम इंडिया के मेडल्स लाने के लिए। और मॉरिशस भी मेडल लाएगा। आली मोरिस, वी आर विद आवर टीम फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स। इस पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे, हमारा साथ देते रहिएगा। हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती। टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविंद।
2: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो। जेम्स
3: RM2 Radio Musty in the mix.

0: to Radio Musti.
1: तोहर भविष्य के बनाई में हर एगो महत्वपूर्ण निर्णय खातिर एगो भरोसामंद साथी के जरूरत रहेला। सिकुम तोहर जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर तोहर संगी खराबा, तोहर सब आवश्यकता के अनुसार वित्तीय समाधान देवेला जेकर पर सकबा विश्वास करे। हमनी तोहर सपना के पूरा आत्मविश्वास से और बिना तोहरा कोनो चिंता देवत तोहर सपना साकार करे में तोहर संगे है जा। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के कोनो भी अधिकारी से संपर्क करिया या sikkim.mu पर जाइया। इमे नियम आशर्त भी लागू बा, सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
3: रेडियो मस्ती।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: हेलो गाइस, मॉर्निंग बीट रेडियो मस्ती पर बेदिता के साथ अब जाने का टाइम हो गया है। जाने से पहले बता दूं मैं आपको कि मेरे बाद आ रही है हमारी प्यारी सी पू, यानी कि पूनम आपका साथ देने के लिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल उस पू वाले कैरेक्टर से एकदम अलग हैं। ये थोड़ी मेरी जैसी है, तो ये थोड़ी जल्दी थोड़ी पगली, तो साथ देने आ रही है। हमारी आपकी मुलाकात होगी अब कब, फ्राइडे नाइट में, भूलिएगा नहीं। हम लेकर आएंगे आपके लिए लेट नाइट ग्रूव, और अभी के लिए इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय टू यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।
3: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चल करो, दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्ती।

0: रखिएगा, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सुमैरा से समाचार सुनिए। नमस्कार सुमैरा।
1: नमस्कार। नमस्कार आदाब सभी को। अफ्रीका की सेवा में एक इलाकाई वित्तीय केंद्र की हैसियत से मॉरिशस अपनी जगह और मजबूत करना चाहता है। इस गतिशीलता से ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने एबेन में एक समझौता तय किया। वित्तीय सेवाओं के सेक्टर में काबिलियतों की मजबूती और जानकारियों के आदान प्रदान पर आधारित एक रणनीतिक साझेदारी कायम की गई है। मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद एमिरेट्स मॉरिशस में अपनी गतिविधियां जारी रख रही है और निवेश जारी रख रही है। इस विमानन कंपनी के एक डेलीगेशन ने कल पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से एक रस्मी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सर श्रेयस सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर एक एमिरेट्स लाउंज के खुलने के सिलसिले में बात की। आपको बता दें कि आते सितंबर महीने में उद्घाटन किया जाएगा। जून महीने में मॉरिशस आए 89,000 पर्यटकों की संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई। जून 2025 में 97,000 से ज्यादा पर्यटकों ने मॉरिशस का दौरा किया था, यानी इस साल करीब 8% की गिरावट आई है। जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया के मुताबिक अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये हालत उतनी ज्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि इस साल जनवरी से जून तक पर्यटकों के आगमन में 1.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। फ्लाक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्वास्थ्य सेवा दी जाने लगेगी। कल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्घाटन किया गया, जिसका मकसद इलाके के बाशिंदों के लिए सेहत की सेवाओं को ज्यादा आसान बनाना होगा। अगले हफ्ते से ये केंद्र खोला जाएगा। देश का सबसे बड़ा सड़क मुर्ढांचा M4 के निर्माण कार्य इस साल के आखिर से शुरू किए जाएंगे। 30 किलोमीटर लंबी ये सड़क उत्तर पूर्व और हवाई अड्डे को जोड़ेगी। भारत सरकार की मदद से 30 महीनों की अवधि में ये परियोजना पूरी हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और इराक की सरहद पर अमेरिकी हमले में 2 लोग जान से गए हैं और 11 लोग जख्मी बताए जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जलमार्ग अरबनाए होर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला करेगा तो उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
2: Stay tuned, stay musty. Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग नमस्ते. 9:07 हो चुके हैं और मुझे पता है काम शुरू हो चुका है. ऑफिस वाले अपने डेस्क के पास पहुंच चुके हैं. शॉप्स खुल रही हैं. रोड्स पर रौनक बढ़ती जा रही है. वही सब लेके जा रहे हैं गाड़ियां और अब आपकी मॉर्निंग और भी मज़ेदार बनाने आ गई हूँ मैं, यानी कि पूनम. सुबह तो आपका जो साथ दिया, पहले तो नीतू शाह ने दिया, फिर उसके बाद हमारी प्यारी सी वेदिता आ गई और उसने मेरा इंट्रोडक्शन इतना बढ़िया दिया ना, मेरा दिल खुश हो गया. उसने जो बोला ना वो बाद में मैं उसको देखूंगी, पर अभी मैं आपकी मस्ती बनाऊंगी. जो कहते हैं ना मॉर्निंग जो मस्त मस्त होती है तब अच्छा लगता है, जब हमारे पास गाने बहुत अच्छे होते हैं. तो आज हम लेकर आए आपके लिए सुपर हिट गाने. एंजॉय कीजिए अपने गाने और

0: आपके मैसेजेस आपको भेजने, अपने दिल की बात कहनी है 5499124 पर। इंजॉय कीजिए अपना ये प्यारा सा गाना।
1: You're listening to Masti Mornings.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned, stay musty. Radio

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:17 हो चुके हैं दोस्तों, और अब बात करते हैं हमारे उन दोस्तों की जो ऑफिस में हैं। और अगर अभी थोड़ी देर में आपकी कोई मीटिंग है और दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ हो रही है या कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम लग रहा है, तो एक काम कीजिए, बाहर जाकर एक ग्लास पानी पीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपनी टाई और शर्ट को ठीक कीजिए, कंधे सीधे कीजिए, सिर ऊपर उठाइए और मुस्कुराते हुए अरे चले जाओ मीटिंग रूम में। यकीन मानिए, कई बार कॉन्फिडेंस ना जो हमारे अंदर ही होता है पहले से ही होता है, और बस हम उसे जगाने की देर होती है। तो जैसे हम अपनी शर्ट ठीक करते हैं, बस ऐसे लगता है कि सब कुछ वापस आ गया। तो चलिए भाई एंजॉय करते हैं गाने, और साथ में बोलते हैं कि जो लोग घर में हैं वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल स्पाइन को

0: जीदा करें, कॉन्फिडेंस से चलें, मुस्कुराते हुए चलें।
1: You're listening to Masti Mornings.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned, stay musty. Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:27 हो चुके हैं और मुझे भी नशा चढ़ गया है भाई जी। हाँ, यानी कि आने वाले हैं अभिजीत बॉलीवुड के ऐसे एक सिंगर हैं जिन्होंने भाई 90s के दिल की धड़कन बन गए थे और सभी के दिल में ऐसे टुक टुक टुक टुक कुछ हो रहा था क्योंकि भाई हर लड़के को वही उनकी आवाज़ चाहिए थी। और भाई क्या करें, वो टाइम ऐसा था जहाँ पे लोगों को एहसास होता था प्यार क्या है, तो भाई प्यार के लिए तो अभिजीत के पास जाना ही पड़ेगा। वार्डरोब में से चेक कर लो कि आपने क्या पहनना है उस दिन, और अभी तक टिकट्स नहीं लिए हैं तो जल्दी से टिकट्स ले लीजिए। SBICC में 25 जुलाई को आपको मिलेगा साथ अभिजीत का। अरे भाई क्या स्मार्ट पर्सनालिटी है, जिसने अभी तक नहीं लिया उसको जाना ही जाना है। मैं भी साथ आ रही हूँ। इंजॉय करते हैं ये वाला गाना अभिजीत का। क्या गाना है, सुपर्ब।

0: मस्ती। टाइम चेक सुबह के 10 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमायरा अकबर अली से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। आदाब। 30 बिलियन रुपए की लागत पिचोली ठेके के सिलसिले में पुराने प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और मनीष गोबीन को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का फिर से सामना करना पड़ेगा। सन 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को दिए कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये एक बड़ा चरण होगा। पूर्व सरकारी नेता को जांचकर्ताओं को ठेका देने की सभी परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। अभी तक कोई तारीख तय नहीं है क्योंकि उनके वकील रऊफ गुलबुल व्यस्त हैं। पूर्व मंत्रियों से भी तहकीकात की जा रही है। कल पुराने वित्त मंत्री रंगनाथन पर्याची से पूछताछ की गई। जून में पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन के अस्थाई इल्जाम के तहत पूर्व मंत्री सुदेश कालीचरण के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कल पुराने आईसीटी मंत्री दीपक बाल गोबिंद को सेंट्रल सीआईडी में जांचकर्ताओं के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इस शनिवार को हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर पीवी स्कीम की लॉन्चिंग की जाएगी। सीबी और डीबीएम सुबह 10 बजे से क्यूपिप के अपने पुराने कार्यालय में एक सत्र का आयोजन करेंगे। इसके दौरान सप्लायरों और फोटोवोल्टाइक प्रणाली स्थापित करने वाले लोगों के साथ बातचीत की जाएगी और विचार विमर्श भी किए जाएंगे। फ्लाक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्वास्थ्य सेवा दी जाने लगी है। कल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्घाटन किया गया जिसका मकसद इलाके के बाशिंदों के लिए सेहत की सेवाओं को ज्यादा आसान बनाना होगा। अगले हफ्ते से ये केंद्र खोला जाएगा। विदेश में पेरू की राजधानी लीमा में घर में आग भर की एक ही परिवार के 10 सदस्यों की मौत हुई जिनमें 5 बच्चे शामिल, 2 लोग घायल हुए हैं। अभी वहां की स्थानीय पुलिस जांच कर रही है ताकि इस आग की वजह मालूम की जा सके। और एक नागरिक परमाणु प्रोग्राम को विकसित करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब ने एक संगे मील की हैसियत रखने वाला समझौता तय किया। इस संधि को एक शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता करार दिया गया है जिससे अमेरिकी कंपनियों को सऊदी के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। शुभ समाचार सुनिए। लग्रीमान सैपिया में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड श्री स्वागत चतुरी जो मनोज के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज चार बजे इनके घर लग्रीमान सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकुंस्टांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में दुबे परिवार से हमें हमदर्दी है।
2: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: You're listening to Musty Mornings.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
3: Stay tuned, stay musty. Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:08 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। और मस्ती जो हो रही है हमारे यहाँ पर स्टूडियो के इनसाइड भी और बाहर जहाँ भी आप बैठे होंगे वहाँ पे भी मस्ती ज़रूर कीजिएगा। जब मस्ती होती है ना तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, और जब टेंशन होती नहीं तो घर तो बहुत अच्छा खिलखिलाता रहता है। चलिए भाई, 2-3 प्यारे से मैसेजेस ले लेते हैं। इस समय संजना जी RM2 के साथ इंजॉय कर रही हैं और कह रही हैं आज मेरा हॉलीडे है और इसमें RM2 मस्ती जो है ना बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार देने के लिए। अनीता जी फ्लिक ऑफ फ्लाक से जुड़ी हुई हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। आशा जानू जी, मामा कुमारी, नेफ्यूज शुभम, ऋषभ, आरती, जीजू, राज इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच आप सभी का। सूरज शर्मा, साजदा जी भी जुड़े हुए हैं और बेटे निशाल के साथ एक क्या कहते हैं स्विमिंग कर रहे हैं कहीं पर, और कह रहे हैं मैं एक कोने में बैठ के इसी साइड गए हैं और कोने में बैठ के मैं RM2 रेडियो मस्ती चला के सुन रहा हूँ। अरे चलाओ, बिल्कुल चलाओ, स्पीकर पे लगाओ, पर थोड़ा सा पानी में आप भी कूद लो, क्या फ़र्क पड़ता है, इंजॉय तो करना ही है ना। चलिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय और यालेश जी भी साथ जुड़ चुके हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और साथ में आज है वेडिंग एनिवर्सरी मनीषा एंड रोशान सेवपॉल जी की, और उनके लिए पूरा परिवार, उनके फ्रेंड्स सब उन्हें विश कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमेशा खुश रहो, ऐसे तुमको खुश देखते देखते हमारी जिंदगी भी निकल जाएगी। पर अगर जो हम लोग अनमैरिड है उनके लिए भी तो कोई लड़की देख लो, कोई बात नहीं, सबका नंबर आएगा। गाने सुनो, इंजॉय करो, और ये गाना आप सबके लिए जो भी इस समय कहते हैं ना मूड में है उनके लिए गाना चलाते हैं।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned. Stay musty. Radio

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:25 हो चुके हैं और अब बात है हल्कोरी फैशन की तरफ से आपको एक टिप देने की। तो चलिए भाई, कितनी लेडीज़ हैं जो जल्दी जल्दी में हल्का सा फाउंडेशन, कोई क्रीम लगाती है, फाउंडेशन लगाती है और पाउडर लगा के भाग जाती हैं काम पर। आपको ऐसा नहीं करना है। आप रेगुलर चीज़ें जो यूज़ करेंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, सुंदर बनेगी और आपकी स्किन मतलब हमेशा उस पर कोई लाइन नहीं आएगी। तो अगर आप रेगुलरली ये करते हैं तो कैसे आपको करना है, हम वो आपको ट्रिक और टिप बताते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्किन को बिल्कुल अच्छे से धोना है, जैसे भी जो भी आप फेस वॉश यूज करते हैं। उसके बाद उसको बोलते हैं CTM, यानी कि आपको क्लीन करना है, क्लींजिंग मिल्क से आपको क्लीन करना है। थोड़ा सा कॉटन लीजिए, उस पर क्लींजिंग मिल्क डाल दीजिए, अपना फेस साफ कीजिए। उसके बाद आपने टी मतलब टोनर, थोड़ा सा टोनर हल्का सा कॉटन में लेना है, अपने पूरे स्किन पे लगाना है, फेस पर यानी कि, बट आईज़ को अवॉइड करना है, आईज पर मत लगाइएगा। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइएगा, थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेनी होती है, आप हल्की से एक पंप लेंगे आपके लिए, फेस के लिए बहुत है। आप ये CTM ज़रूर कीजिए। उसके बाद आपने डायरेक्टली फाउंडेशन नहीं लगाना है, क्योंकि जो एक स्किन होती है उसके अंदर फेस पे हल्के हल्के होल्स होते हैं, थोड़े से कलर डिफरेंट हो जाता है। तो आपको प्राइमर लेना है, उसको भी छोटा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, उसको पूरी स्किन पे लगाइए, फिर थोड़ा सा फाउंडेशन लगाइए। उसको फाउंडेशन को मतलब ऐसे ही छोड़ के उसके ऊपर लिपस्टिक लगा के नहीं जाना है, आपको फाउंडेशन को लॉक करना है, यानी फाउंडेशन के ऊपर जो लॉक है वो लगता है सिंपल नॉर्मल आपके फेस कलर से मैच करता हुआ पाउडर। तो आपको पाउडर लगाना है फेस पर, हल्का हल्का डैप कीजिए, उसको रगड़ना नहीं है, मतलब आपको ऐसे नहीं करना है जैसे हम ब्रूम लगा रहे हैं, उसको डैप करना है बस। धीरे धीरे धीरे धीरे लगाइए हल्का सा। उसके बाद आप अपनी जो भी पसंद की लिपस्टिक है उसको लगाइए हल्का सा, अगर आपको बिंदी पसंद है आपको, और जो आपका मस्कारा हो अगर आप लगाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो बिल्कुल लाइट लगाइए। कई बार एक एज आती है उसमें मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मस्कारा हल्का सा लगाइए, ब्लश लगाइए, इंजॉय कीजिए। ये है आपका फैशन टिप हमारी तरफ से, यानी कि हल्कोरी फैशन की तरफ से।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:33 हो चुके हैं दोस्तों, ये सेकेंड आवर हमारा चल रहा है और हम आपके साथ 100% जुड़े हुए हैं और आपने भी दिखा दिया है कि आप भी हमारे साथ उसी मोहब्बत और प्यार के साथ जुड़े हैं, क्योंकि आपके मैसेजेस बताते हैं, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, हम सारे तो नहीं पढ़ पाते पर फिर भी हम एक आध तो ले ही लेते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, सबका दिल होता है अपने किसी ऐसे खास को विश करने का। तो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कौन जुड़ी हुई हैं? नीतू जी जुड़ी हुई हैं पालमा से, कथोबोन से। लास्ट वीक उनका बर्थडे था, बट राजीव जी उनको विश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कैसा रहा तुम्हारा बर्थडे, कुछ बताओ तो सही। तो नीतू जी, आपको राजीव जी को बताना पड़ेगा कि आपका बर्थडे कैसा गया और आप खुश तो हैं ना। बस ये देखिए, एक दूसरे की केयर ही तो होती है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए होता है इंसान को। साथ में हमारे साथ वीना गंगाधर जुड़ी हुई हैं साथ में, और इस समय गंगा तालाब से वापस आ रही हैं, और एक प्यारा सा गाना अमित कुमार जी के लिए, अमित कुमार की आवाज़ में अपने हबीब देव के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। और इतना प्यारा सा रेड दिल भेजा है ना उन्होंने कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा दिल करता है हमेशा उनके साथ रहने का। तो क्या बात है भाई, एंजॉय कीजिए अपने गानों को। और इसके साथ साथ हम जरूर कहेंगे, जो भी आप मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं थोड़ा सा अच्छा सा लीजिएगा, उसके बाद ये नहीं कि आप बैठ जाइएगा, थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ी सी नेचुरल हवा लीजिए, थोड़ी सी धूप में जाइए और थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, स्माइल कीजिए। आपके चेहरे की जो स्माइल है ना, अगर आपको लगता है कि आपने मेरे बात बोलने के बाद स्माइल किया, तो मुझे मैसेज कीजिए 549।

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Join the RM2 team this Saturday, 25th of July, for a blood donation event at SBM Flak, organized by SBM. RM2 will be live as from 10 a.m. to noon. Join us for a good cause.
0: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:40 हो चुके हैं दोस्तों, हम हमेशा हर वक्त आपके साथ होते हैं 24 आवर्स। हम बस चाहते हैं कि आप मुस्कुराते रहें, आपको छोटी छोटी सी टिप्स मिलती रहे। पता सबको सब कुछ होता है, बट वही है, बस थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा सा कभी ध्यान नहीं आता और कहते हैं अरे वो टाइम में ये बात मुझे याद आई थी, मेरे डॉक्टर ने बोली थी, मेरे बड़ों ने बोली थी, पर क्या करें याद भूल जाते हैं। तो हम याद दिलाने के लिए सिर्फ आते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। तो क्या होता है कि जब 40s में आ जाते हैं या 50s में आ जाते हैं तो हम अपना ख्याल ना थोड़ा सा कम कर देते हैं, बच्चों का और या उनके फ्रेंड सर्कल का, या बस ऐसे ही बस चलता रहता है, या नहीं समझ सकते हैं ना आप लोग, तो उनका ध्यान ज़्यादा होता है, अपना थोड़ा कम होता है। तो बस आपको क्या करना है, टेंशन थोड़ी सी कम लेनी है। हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा करना है कि एक दिन बस प्लेटर एक भर के फ्रूट्स के खाइए, और अगर आप हो सके तो ऑरेंज, कैरेट्स, बीटरूट, आंवला डाल के अच्छा सा एक जूस बनाइए और रेगुलर पीजिए, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ हैं, वैसे ही थोड़े से फ्रूट्स सस्ते भी हैं, मतलब इतने भी सस्ते नहीं हैं, पर जितने भी हैं एटलीस्ट मेडिसिन लेने से बेटर है ये चीज़ें खाना पीना। और उसको नेचुरल जूस बनाइए, मतलब आपको डिब्बे वाला जूस नहीं लेना है, मैं कह रही हूँ बिल्कुल नेचुरल, जो भी आपको फ्रूट्स दिखे डालो जूसर में, पी लो और इंजॉय करो, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं, ये जो फ्रूट्स होते हैं, जूसेस होते हैं, आपकी स्किन को आपको ग्लो देते हैं, और आप वो जो ढूंढते रहते हैं बाहर फेशियल्स कराने के लिए, या बोलते हैं कि चलो ये मेकअप लगा लें, नहीं, पहले आप इनसाइड से अपने आप नेचुरल, अगर आपके पास जूसेस होंगे या आपके फ्रूट्स होंगे तो आपकी स्किन अपने आप ग्लो करेगी। थोड़ा सा दही खाओ, धूप में खाना है, मतलब दोपहर के टाइम खाना है, ये नहीं कि रात को खाएं। तो ये हम बार बार बोलते हैं, ये दही जो है जिसे आप योप्ले कहते हैं, इसको दोपहर में लीजिए, एक बड़ा बोल भर के डालिए, उसके अंदर ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, सॉल्ट डाल सकते हैं, बस इंजॉय कीजिए, खाओ पियो। और ये गाने आप सबके लिए, इंजॉय करना मत भूलिएगा, ये प्यारा सा अभिजीत का गाना आप सबके लिए, और आने वाले टिकट ले लीजिए।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned. Stay musty. Radio.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: तोहर भविष्य के बनाई में हर एगो महत्वपूर्ण निर्णय खातिर एगो भरोसामंद साथी के जरूरत रहेला। सिकुम तोहर जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर तोहर संगी खराबा, तोहर सब आवश्यकता के अनुसार वित्तीय समाधान देवेला जेकर पर सकबा विश्वास करे। हमनी तोहर सपना के पूरा आत्मविश्वास से और बिना तोहरा कोनो चिंता देवत तोहर सपना साकार करे में तोहर संगे है जा। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के कोनो भी अधिकारी से संपर्क करिया या sikkim.mu पर जाइए। इमे नियम आशर्त भी लागू बा, सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
3: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, सुबह के 11 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार.
4: नमस्कार आदाब. सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट परियोजना विकास कर रही है. एक मौजूदा प्रोटोकॉल संधि के संदर्भ में एक सलाहकार क्वालिटी इंश्योरेंस सेवाएं देंगे और तकनीकी सहायता भी देंगे ताकि इस नई प्रणाली को अमल में लाया जा सके, जैसे कि बजट 2026-2027 में ऐलान किया गया था. अधिकारी सरहदों के लिए एक डिजिटल संचालन प्रणाली को विकसित करना चाहते हैं. मकसद सुरक्षा को मजबूत करना और हवाई अड्डे पर मुसाफिरों को सुविधा देना.

0: 30 बिलियन रुपए की लागत पेट्रोली ठेके के सिलसिले में पुराने प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और मनीष गोबिंग को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का फिर से सामना करना पड़ेगा। सन 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को दिए कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये एक बड़ा चरण होगा। पूर्व सरकारी नेता को जांचकर्ताओं को ठेका देने की सभी परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। अभी तक कोई तारीख तय नहीं है क्योंकि उनके वकील रऊफ गुलबुल व्यस्त हैं। सचिव अमित त्रियोले में एक खुफिया कार्रवाई के दौरान एक पुलिस को ड्रग तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। वो विप्सू में काम करता था और उसकी उम्र 33 साल की है। उसके साथ ही 20 वर्षीय व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं और उनकी हिरासत में कोकीन के 350 ग्राम पाए गए। कुल कीमत 5 मिलियन रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। इसके अलावा मर्शन रुपए और विदेशी मुद्राएं भी जब्त की गई। गोजबेल की आजसू ने ये कार्रवाई चलाई। विदेश में पेरू की राजधानी लीमा में घर में आग भर की एक ही परिवार के 10 सदस्यों की मौत हुई, जिनमें 5 बच्चे शामिल थे। 2 लोग घायल हुए। अभी वहां की स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की ताकि इस आग की वजह मालूम की जा सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay ou que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
3: Listening to Musty Mornings.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है.
3: Stay tuned, stay musty. Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:08 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। क्या बात है भाई, मैंने तो ऐसे प्यार से कह दिया था कि अगर आप मेरी बात करने के बाद मुस्कुराए तो आप एक मैसेज कर दीजिएगा, बट इतने सारे मैसेजेस, क्या बात है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़ी हुई है इस समय, कह रही है कि आपका प्रोग्राम सुनते सुनते मेरे को स्माइल आई, उससे पहले मैं हंसी नहीं थी। तो जिनके सिर्फ स्माइल बाद में आई है उन्हीं के हम नाम पढ़ रहे हैं। आशी ललित जी USA से, परमिला, सुनीता जी, एलिना, अमित, आशा, प्रिया, सीमा, दीप, रोशान, रोहन, विकास, विशाल, ललिता, कृपा, कृष्टि, काष्टी एंड निशाल, सत्या जी और सभी लिसनर्स, मैं तो यही कहूँगी भी थैंक यू। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, इन्जॉय करते रहे, क्योंकि मुस्कुराहट से थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है, दिल की धड़कन थोड़ी ठीक हो जाती है और आपके ग्लो जो फेस पे चाहिए होता है ना हमको, जिसके लिए आप पूरे दिन मेहनत करते हैं, वो नेचुरल आता है। तो आप हंसते हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी आशा है। और अभी जो गाने चल रहे हैं भाई बहुत बढ़िया चल रहे हैं, और इसके बाद अपने पास एक पेन और पेपर रख लीजिएगा, एक बहुत बढ़िया रेसिपी देने वाले हैं हम इस गाने के बाद, क्योंकि उसमें लिखा बताएंगे हम कि आपके स्किन कैसे ठीक हो सकती है, नेल्स कैसे ठीक हो सकते हैं, हड्डियां कैसे ठीक हो सकती हैं, बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं। तो चलिए भाई एंजॉय करते हैं ये गाना, उसके बाद आपके शुरू करेंगे रेसिपी।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.
3: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:17 हो चुके हैं दोस्तों, और हमने प्रॉमिस कल भी किया था, पर हमारा बस कुछ काम ऐसे ऐसे हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। पर आज तो हमने जो प्रॉमिस किया उसको पूरा करेंगे। आज आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाले हैं जिससे आपके हेयर अच्छे होंगे, स्किन अच्छी होगी, नेल्स अच्छे होंगे और स्पेशली बोन्स अच्छी होंगी। अगर आप ये बच्चों को बचपन से देते रहेंगे तो उनको तो कोई प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है, पर अगर आप थोड़ी टाइम के बाद यानी 40s या 60s में भी ले रहे हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका बिल्कुल बॉडी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलिए भाई, आपको क्या करना है, 500 ग्राम्स फ्लैक्स सीड्स लेने हैं, 250 ग्राम्स ब्लैक सिज़मी सीड्स लेने हैं, 250 ग्राम्स वाइट सिज़मी सीड्स लेने हैं, 150 ग्राम्स पम्पकिन सीड्स लेने हैं। सबसे पहले आपको एक नॉनस्टिक पैन लेना है, उसको गर्म कर लेना है, उसके अंदर फ्लैक्स सीड्स को 5 मिनट धीरे धीरे रोस्ट करना है। उसके अंदर जब वो रोस्ट हो जाए तो उसमें सेज़मी सीड्स डालने हैं, उसको भी 2-3 मिनट तक रोस्ट करना है। कोई देसी घी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, ऐसे ही नॉनस्टिक पैन में। उसके बाद आपको वाइट सीड्स जो सेज़मी सीड्स हैं वो भी डाल देने हैं उसके अंदर, उसको भी धीरे धीरे रोस्ट करना है। आखिर में आपको पम्पकिन सीड्स लेने हैं, उसको भी आराम से सब जब एक साथ मिलौजे हो जाए, सब मिल जाए, तो उसको पम्पकिन सीड्स को भी 2-3 मिनट तक रोस्ट करते रहना है, धीरे धीरे, एकदम से जलाना नहीं है। और उसको साइड में सब कुछ निकाल दीजिए। उसके बाद आपको 1 चम्मच देसी घी लेना है, प्योर देसी घी लेना है। उसके अंदर आपको गोंद, आप मार्केट में किसी भी शॉप से देखेंगे, पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, गोंद होती है उसको थोड़ा सा, जैसे आप उसे देसी घी अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, जैसे आप गोंद डालेंगे उसके अंदर वो एकदम से फूल जाएंगे और बबल्स बन जाएंगे। आपको उसको लेके उसको भी साइड में रख देना है, उसको हाथ से ही क्रश करेंगे तो वो क्रश हो जाएगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, सब कुछ जब ठंडा हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि खजूर लेने हैं, खजूर के अंदर से जो बीज हैं वो सब निकाल देने हैं, और निकालने के बाद सबको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर क्रश कर देना है और छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। और आपको क्या करना है कि ये तो सुपर फूड है ही है सर्दियों के लिए, ये सिर्फ आप विंटर्स में ले सकते हैं, आपको क्या कहते हैं समर्स में नहीं लेना है, सिर्फ विंटर्स में लेना है। 2-3 महीने पड़े हैं आपको, खाइए, इंजॉय कीजिए। और साथ में एक बॉल बनानी है, उसको मुंह में डालना है, मतलब बहुत सारी बॉल्स बना के एक जार में डाल के फ्रिज में रख दीजिएगा, एक बस निकालिए, उसके बाद एक गर्म दूध पीजिए और इंजॉय कीजिए। ये है आपका प्यारा सा रेसिपी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं 5499124 पर। इंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11 बजकर 29 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। और बस हम तो यही कहते हैं, हमारे साथ रहिए, एंजॉय कीजिए गानों को, पर अपने जो भी काम है उसको निपटाते रहिए, आराम से रिलैक्स करते रहिए। तो एक बात बताइए, कितनी बार आपने सोचा होगा कि चलो भाई मैं भी चेक करता हूँ कि मैं रेडियो पर बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, या हो सकता आपके बच्चे हों जिनको बहुत शौक हो एक्टिंग करने का, क्योंकि अरे मैं कभी, हम छोटे हुआ करते थे तो हम बोलते थे कि हाँ देखो आप यहाँ पर हैं वहाँ पर हैं। तो कई बच्चों का पैशन होता है बचपन से ही, तो अगर आपके भी बच्चों में किसी में भी पैशन है, और अगर आप बड़े हैं और आप में पैशन है, तो आप हमें अपना एक प्यारा सा वीडियो बनाएं। अगर आप एंटरटेन करना जानते हैं कि किसको कैसे एंटरटेन करते हैं, कैसे खुश करते हैं, तो आपको 60 सेकंड्स का एक वीडियो बनाना है। आपने व्हाट्सअप करना है हमें 5251-6363 पर, और आपको ये वीडियो जब आप हमें भेजेंगे तो फिर एमबीसी अपने आप चेक करेगा कि किस में टैलेंट है किस में नहीं है। बट एटलीस्ट ट्राई कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ट्राई कर लिया और आपने भेज दिया और आप सिलेक्ट हो गए, आपका फ्यूचर तो बनेगा ही बनेगा, पर आपको एक और खुद का एक जो पैशन है, जो एक साइड में होता है इंसान के दिल में होता है, कहीं ना कहीं घर करके बैठा होता है कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हमारे को बस मैसेज कीजिए आपके नंबर पर 5251-6363 पर। इंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned.

0: Stay Musty. Radio Musty.
1: कभी सोचा है
2: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
2: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
2: डोंट मिस इट।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:43 हुए हैं और आप जुड़े हैं अपने ही मॉर्निंग मस्ती के साथ. है मस्ती मॉर्निंग जो है ना, आपको मस्ती तो कराती है पर आपकी मैसेजेस भी पढ़ती है. पर सबसे पहले हम आज जो अभी ये गाना चलाने वाले हैं ना, एक स्पेशल उन बच्चों के लिए चलाने वाले हैं जो कि बच्चे हॉलीडेज पे हैं आजकल. और एक स्पेशल मैसेज आया है मैम टिंग की तरफ से और वो चाहती हैं उनकी बिटिया रानी दो हैं रियाना एंड श्री दोनों के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और कह रही हैं कि मैं उन सभी बच्चों के मामा के लिए भी स्पेशली कहना चाहूँगी जो बहुत मेहनत कर रही होंगी, बहुत ख्याल रख रही हूँ बच्चों का, बार बार खाना पीना ये सब वो सब कर रही होंगी और ऑफिस भी देख रही होंगी. तो उनको कह रही होंगी कि भाई तुम्हारे में जितना करेज है और जितना प्यार तुम में है बस बांटते रहो, इंजॉय करते रहो. तो ये गाना उन दो प्यारी सी लिटिल गर्ल्स के लिए, रियाना एंड श्री के लिए. पर हम भी कहेंगे कि भाई अपने घर पर हो, इंजॉय कर रहे हो पर पढ़ाई बिल्कुल छोड़ना नहीं, बस करते रहना. पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. आपका फ्यूचर इसके साथ जुड़ा होता है तो बस इंजॉय करते रहिए गानों को. पर ये गाना अगर किसी का दिल कर रहा होगा ना डांस करने का तो डांस करना, मजे आएंगे. ये गाना आप सबके लिए.
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है.
1: Stay tuned, stay musty. Radio

चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडि गिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चक

0: s'amuser, nous vini.
1: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: RM2
3: Radio Musty.
4: चलिए दोस्तों, मैं चलती हूँ, आप अपना शानदार दिन बनाइएगा और याद रखिएगा, मुस्कान बिल्कुल फ्री है, इसे खुलकर बांटिए। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे। मेरे बाद आपको साथ मिलने वाला है नीलमणि का रेट्रो रिदम। एंजॉय कीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good afternoon. Din ke 12 baje hai. Chali sunte hain sanchipt samachar. Aapse Sumera namaskar.
6: नमस्कार आदाब. जून महीने में मॉरिशस आए 89,000 पर्यटकों की तादाद पिछले साल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है. जून 2025 में 97,000 से ज़्यादा पर्यटकों ने मॉरिशस का दौरा किया, यानी इस साल करीब 8% की गिरावट आई है. जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया के मुताबिक अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये हालत उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि इस साल जनवरी से जून तक पर्यटकों के आगमन में 1.5% की बढ़ोतरी नोट की गई. सिडनी पिया ने कहा कि दो वजहों से ये परफॉर्मेंस रहा है, पहला फुटबॉल विश्व कप और दूसरा मध्य पूर्व के तनाव है. सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट परियोजना विकसित की जा रही है. एक मौजूदा प्रोटोकॉल संधि के संदर्भ में एक सलाहकार क्वालिटी इंश्योरेंस सेवाएं दे रहे हैं और तकनीकी सहायता भी दे रहे हैं ताकि इस नई प्रणाली को अमल में लाया जा सके. जैसे कि बजट 2026-2027 में ऐलान किया गया था, अधिकारी सरहदों के लिए एक डिजिटल संचालन प्रणाली को विकसित कर रहे हैं. मकसद सुरक्षा को मजबूत

0: मजबूत करना और हवाई अड्डे पर मुसाफिरों को सुविधा देना। इस शनिवार को हाउस होल्ड रूफ टॉप सोलर पीवी स्कीम की लॉन्चिंग की जाएगी। सीबी और डीबीएम सुबह 10 बजे से क्यूबिप के अपने पुराने कार्यालय में एक सत्र का आयोजन कर रहे हैं। इसके दौरान सप्लायरों और फोटोवोल्टाइक प्रणाली स्थापित करने वाले लोगों के साथ बातचीत की जाएगी। विदेश में एक नागरिक परमाणु प्रोग्राम को विकसित करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब ने एक संगी मेल की हैसियत रखने वाला समझौता तय किया। इस संधि को एक शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता करार दिया गया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। और ईरान तथा इराक की सरहद पर अमेरिकी हमले में 2 लोग जान से गए हैं और 11 लोग जख्मी हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान आबनाए हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला करेगा तो उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। शुभ समाचार सुनिए। उबिलक स्ट्रीट ब्रांच रोड नुवेल फ्रांस में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड श्री राजेंद्र प्रसाद चेतन जो राजेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल साढ़े नौ बजे इनके बेटे विशाल चेतन के घर उबिलक स्ट्रीट ब्रांच रोड नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजीन नुवेल फ्रांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम। गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेट्रो रिदम में, जहां पर गाना सिर्फ एक मेलोडी नहीं बल्कि यादों का खजाना है। एंड आज फिर से खोलने वाले हैं वो म्यूजिकल डायरी जिसके हर पन्ने पर लिखी है 70s, 80s और 90s की खूबसूरत कहानियां। तो चाय की एक प्याली हो या फिर ऑफिस का सफर हो, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए और चलिए वक्त के इस हसीन जैने पर RM2 रेडियो मस्ती पर।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: ये है, लेकिन उस दौर पुराने जमाने में रेडियो पर जो गाना मिल जाए वही फेवरेट बन जाता था। शायद इसलिए उन गानों की वैल्यू कुछ और ही थी, लेकिन आज भी देखा जाए तो उनकी अहमियत उतनी ही है जितना कि सोना का। गोल्डन रेट्रो हिट्स ऑन गोइंग है नीलमणि के साथ आरएमचू वीडियो मस्ती पर ही। आप बस ट्यून इन रहिएगा 5499124 पर, आपके मैसेजेस और डेडिकेशंस का इंतजार है।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti

0: रेट्रो रिदम।
1: Yes, retro rhythm show on hand. लिखे जो मैसेजेस आपने वो दिल को सीधा छू जाती है। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। आप है विश्वानी धूमन जी वाकवा से। अभी आप शॉपिंग कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया गाने सुन रहे हैं और आप एक गीत जुर्म मूवी से डेडिकेट करना चाहते हैं अपने बहन इंदिरा शारदा और सहेली नीला प्रतिभा शोभा के लिए। एंड साथ में कनेक्टेड है हमारे लिटिल ब्रो यालेश जो नेक्स्ट गाना मांग रहे हैं मंजिल मूवी से और साथ में आपको विश कर रहे हैं बू कुराज। एंड आज है रोशन और मानिशा सिगोपुल जी का वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू गाइज। आपके लिए अच्छा सा रोमांटिक गाना ढूंढ कर चिल्लाएंगे जरूर। एंड पचित खुदखैद से आज आपकी बेटी का बर्थडे है वो 38 ईयर्स की हो गई है और एक गीत आप डेडिकेट करना चाहते हैं उनके नाम। फिया जी भी साथ दे रही है और आप हैं प्रकाशवती एंड स्थिति अपने लिए एक प्यार सा गाना मांग रहे हैं जरूर जी चिल्लाएंगे आपके लिए प्यार सा गाना। आप बस कनेक्टेड रहना आरएमजी वीडियो मस्ती के साथ।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएमजी रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम। वैसे सिलसिला ख्वाब का जारी है 2 बजे तक आपके रेट्रो रिदम पर। किशोर दा और लता जी की आवाज में रोमांटिक गाना था खास मनीषा जी और रोशन जी के लिए, जो आज अपना सालगिरह मना रहे हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी वंस अगेन आरएम टू टीम की तरफ से।
1: रेट्रो रिदम
2: आरएम टू रेडियो मस्ती।

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आशिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रसिद्ध भारतीय गायक अभिजीत भट्टाचार्य शनिवार को

0: स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में अपना कंसर्ट देने वाली हैं। वे आज सुबह अपने संगीतकारों की टोली के साथ मॉरीशस पहुंची। उनका गर्मजोशी ऐसे स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मॉरीशस लौटकर खुशी व्यक्त की। बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय आवाज़ों में शुमार अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने लंबे करियर सफर में हजारों गीत गाए हैं। उन्होंने विशेष रूप से अभिनेता शाहरुख खान के लिए अनेक सुपरहिट गीतों को अपनी आवाज़ दी है, जिससे दोनों की जोड़ी 1990 और 2000 के दशक की सबसे चर्चित अभिनेता गायक जोड़ियों में शामिल हो गई। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, तौबा तुम्हारी ये इशारे, ओले ओले जैसे उनके लोकप्रिय गीत आज भी श्रोताओं के बीच बेहद पसंद किए जाते हैं। शनिवार के इस कंसर्ट में दर्शकों को यादगार गीतों और भावनाओं से भरपूर एक शानदार संगीतमय शाम का अनुभव मिलने की उम्मीद है। सचिवालय में सार्वजनिक परिवहन की समस्या को लेकर स्थानीय निवासी कई वर्षों से अपनी चिंता जता रहे हैं। इसी मुद्दे पर पिछले शुक्रवार संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। सोमवार से इस मार्ग पर एक अतिरिक्त बस सेवा शुरू की गई है। हालांकि NLTA की निगरानी और जांच के बावजूद यात्रियों का कहना है कि बसों की आवाजाही अब भी पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि बसों की कमी के कारण उन्हें रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रही हैं। सचिवालय के अलावा शोनू और बुविलाश जैसे आसपास के गांवों के निवासी भी इस समस्या से प्रभावित हैं। अनुमान है कि इस परिवहन संकट का असर लगभग 3000 लोगों पर पड़ रहा है। बंदरगाह में तेल रिसाव को नियंत्रित करने के लिए चलाया गया सफाई अभियान कल पूरा हो गया। समुद्र में तेल के फैलाव को रोकने के लिए लगभग 300 मीटर लंबे एब्सॉर्बेंट बूम्स समुद्र में तैनात किए गए थे। बंदरगाह प्राधिकरण और पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार समुद्र की सतह पर तैर रहे पूरे ईंधन तेल को सफलतापूर्वक एकत्र कर लिया गया है और स्थिति अब नियंत्रण में है। मॉरीशस के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक नसीम अकबर अली का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कुछ वर्ष पहले रिटायर हुए नसीम अकबर अली ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वीकेंड स्कोप के एडिटोरियल विभाग से की थी। उनके लिए पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक समर्पित सेवा थी, जिन्हें उन्होंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाया। वीकेंड स्कोप में उन्होंने सांस्कृतिक विषयों और भारतीय सिनेमा से जुड़ी खबरों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई। बाद में उन्होंने ले मॉरिशियन समाचार में कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की गंभीरता और पेशेवर अंदाज में रिपोर्टिंग की। नसीम अकबर अली अपने परिवार के प्रति भी बेहद समर्पित थे। परंदे पपाई के निवासी असीम अकबर अली अपने मिलनसार स्वभाव और सादगी के कारण सभी के बीच सम्मानित हैं। MBC ने उनके परिवार, परिजनों और शोक संतप्त सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका साझा समाधान तलाशने के प्रयास जारी रखेगा और इसके लिए नए प्रस्तावों की आवश्यकता होगी। मनीला में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मुलाकात और एशियन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पत्रकारों के बीच में से बातचीत में रूबियो ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर दोनों नेताओं के बीच स्पष्ट और सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने इस संघर्ष को अत्यंत रक्तरंजित युद्ध बताया और कहा कि अब रूस के भीतर भी गहरे इलाकों तक हमले हो रहे हैं जो पिछले वर्ष के अंत तक देखने को नहीं मिल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि सर्दियों के मौसम में यूक्रेन के सामने नई चुनौतियां होंगी और उसे अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा लगातार मजबूत रखनी होगी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। लाग्रीमोन सैपियर में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री स्वागत चतुरी जिन्हें मनोज के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनके घर लाग्रीमोन सैपियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोसांस की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: रेट्रो रिदम के दूसरे और आखिरी आओ में हमने ले लिया है एंट्री येसुदास दा की आवाज के साथ मैजिकल मोमेंट्स फिर से क्रिएट करने के लिए। मैंने मनी यहीं पर हूँ 2 बजे तक एंड आपके जो मैसेजेस डेडिकेशंस हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। जल्दी आप बस जुड़े रहिएगा एंड ड्रीमलैंड की ओर ले जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए आरएमजी रेडियो मस्ती पर ही।
1: रेट्रो रिदम
2: आरएमजी रेडियो मस्ती।

0: राहों पे रहने वाला ये मुसाफिर गेरूलाल सफर करते करते एक बार दूर दराज के पहाड़ों में जाकर रुक गया।
1: रेट्रो रिदम।
2: वैसे क्या बात कही है किशोरदा ने, खुश रहो यही तो है जिंदगी का मकसद। लेकिन हम इंसान ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं लाइफ को, इसलिए कहते हैं कि सबका बैलेंस होना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। अभी मैसेजेस की ओर चेक करते हैं। आप है विराज ननकू जी लेसे से, और आज आपका है 26th वेडिंग एनिवर्सरी और आप विश कर रहे हैं अपनी प्यारी वाइफ को वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। दीप्ति मयूर की तरफ से भी लॉट्स ऑफ लव आपको।

0: Retro Rhythm.
1: Yes, 1:30 होने को है और आज है स्प्रिंकल डे। नाम सुनते ही याद आ जाता है कि वो ही है वो रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स जो एक सिंपल डोनट या फिर कपकेक को भी स्पेशल बना देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी के छोटे छोटे खुशियों के पल जो हर दिन को खूबसूरत बना देते हैं। एंड आज का रेट्रो रिदम चैलेंज आपके लिए ये है कि अपनी जिंदगी पर भी थोड़ी सी हैप्पीनेस के स्प्रिंकल्स छिड़क दीजिए, किसी अपने को फोन कीजिए, पुरानी तस्वीरें देखिए या फिर बस अपना फेवरेट रेट्रो गाना गुनगुना लीजिए, क्योंकि असली स्वीटनेस तो यादों में ही बसी होती है। एंड इसी अच्छे मूड के साथ चलिए सुनते हैं और एक एवरग्रीन गाना, मेरे सपनों की रानी।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti।

0: रेट्रो रिदम।
1: सफर सुहाना है रेट्रो रिदम पर और आपके मैसेजेस भी अटैक कर रहे हैं व्हाट्सएप को। रोशनी जी साथ दे रही है एंड आज है मिस्टर श्याम गंगा दिन का जन्मदिन और विशेस अपनी पत्नी की तरफ से दो डॉटर्स एंड पर्चो फैमिली लावांचे से। एंड ऑल्सो बिग हेलो टू अब्दुल जी सारा बानो जी कनेक्टेड रहने के लिए। एंड आप है इंदिरा रामचंद जी, आप मांग रहे हैं गाना पल पल दिल के पास, गाना अपने हबी की मेमोरी में सुनना चाहते हैं, ज़रूर चलाएंगे। बाबू से देव अपनी प्यारी पत्नी रेखा के लिए गाना मांग रहे हैं और देवदोस फैमिली के साथ भी माला रानी है। ज्योति जी शातु बनागस से नेक्स्ट गाना आशनी रेखा सुरेखा माधव फैमिली एंड मेरे लिए भी चलाना चाहते हैं और दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। एंड आपने नाम लिखा लेकिन आपने लिखा है कि फैंटास्टिक सिलेक्शन गोइंग ऑन, आप खुश हो गए। एंड आप एज यूजुअल सुनना चाहते हैं मोनिका ओ माई डार्लिंग का गाना। एंड आप हैं चंदनी जी, प्रीति जी सभी चुलन परिवार के लिए गाना मांग रही हैं। एंड आप हैं माधवी जी और आप अपना बर्थडे मना रहे हैं। एंड ललिता जितन जी भी एंजॉय कर रही है प्रोग्राम को, वो समुद्र तट पर है और फुल वॉल्यूम पर सुन रहे हैं। रमेश सिंह भी कनेक्टेड है पंजाब से। तन्वी रायशा तेजल रैना रायन करुणा कामिनी जी तरसचन एंड कामला गंगा विसुन जी अनिश्ता कैथोबोन से गाना मांग रहे हैं। एंड आप है कुमार दाविचंद जी और गाना सुन रहे हैं अपनी गर्म गर्म चाय के साथ। अरे इतने सारे मैसेजेस, वैसे ढेर सारे मैसेजेस और प्यार के लिए थैंक यू। तो अगला गाना डेडिकेट करते हैं आप सभी सुनने वालों के नाम।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: RM2 Radio Musti.

और इसी ब्यूटीफुल गाने के साथ आज के रेट्रो रिदम के सफर से इजाजत लेती हूँ। उम्मीद है कि आज के गाने आपको उन हसीन गलियों में ले गए होंगे जहाँ ट्रांजिस्टर बजता था, कैसेट घुमा करती थी और हर मेलोडी के साथ एक याद जुड़ जाती थी। मैं अनिल मणिकर फिर मिलूंगी आपसे कुछ और सुनहरे गीतों और उनके पीछे छुपी दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए आरएमजी रेडियो मस्ती के साथ में ही।

0: listening to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 2 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। अत्सू मेट्रो नॉर्थ ने 22 जुलाई की सुबह प्लनवेत में एक घर की तलाशी के दौरान 27 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी पेशे से बैंकिंग टेलर बताया गया है। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने मेथाडोन से भरी 4 प्लास्टिक की बोतलें, 7 मिलीग्राम की 42 लाइब्रिक का कैप्सूल, 75 मिलीग्राम की 30 गैबलाइन कैप्सूल और 100 मिलीग्राम की 11 ट्रम कैप्सूल्स और इसके साथ 10 मिलीग्राम की 8 वैलियम कैप्सूल तथा ₹125 नकद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार ये राशि मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त आय होने का संदेह है। गिरफ्तार व्यक्ति को पोर्ट लुइस नॉर्थ जिला अदालत में पेश किया गया, जहाँ उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। क्वीन विक्टोरिया में बुधवार 22 जुलाई को एक नए स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की गई। इस सुविधा का उद्देश्य स्थानीय निवासियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और उनके घर के निकट आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके शुरू होने से अब लोगों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। सरकार का कहना है कि इस स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं अधिक आसानी और सुविधा के साथ उपलब्ध होंगी, जिससे ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और बेहतर होगी। क्यूपिप के टाउन हॉल में बुधवार 22 जुलाई को मैंगो सागा के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मॉरिशस में पाकिस्तान के उच्चायोग की पहल पर किया गया। इस अवसर पर पाकिस्तान की विभिन्न प्रसिद्ध आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम

0: में कुछ लोगों के लिए ये पुराने स्वादों की यादें ताज़ा करने का अवसर रहा, जबकि अन्य लोगों ने पहली बार इन विशेष किस्मों के आमों का परिचय प्राप्त किया। इस आयोजन के माध्यम से मॉरिशस और पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी रेखांकित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जारी भीषण जंगल की आग के कारण करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब बोर्डो हवाई अड्डे के पास दो दमकल कर्मियों की मौत के कुछ दिनों बाद भी आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। ज्योंद क्षेत्र के प्रशासन के अनुसार अब तक 2,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि आग की चपेट में आ चुकी है। जंगल वाले इलाकों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। गुरुवार तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। सन कंटाल्डो इसके अलावा वहीं इटली में सिसिली के सन कंटाल्डो इलाके में जंगल की आग बुझाने के दौरान जान गंवाने वाले दमकल कर्मी अलेक्सांड्रो मार्ची को श्रद्धांजलि दी गई। इटली के गृह मंत्री मातेओ पियांदेदोसी ने उन्हें समुदाय की सेवा में शहीद हुआ कर्मी बताते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: More music in the mix.
2: आज आजादी है।
3: Bombay Talkies Radio Musti.
4: Radio Musti.
5: North, south, east or west, tune into the very best. Radio Musti.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: बिल्कुल जी, सबसे कमाल जो है वो है हमारे डियर लिसनर्स, वार्म वेलकम आप सभी का। 2:08 हो चुके हैं और थर्सडे आफ्टरनून में आपका हम स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, जब वक्त की हम बात करते हैं पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ चले जाता है। अभी तो मंडे था जब हम आपका वेलकम कर रहे थे, कह रहे थे कि वीकेंड के बाद इट्स मंडे, और देखिए देखते ही देखते इट्स ऑलरेडी थर्सडे एंड एक बार फिर आ गए हैं आपके दिल को लुभाने हमारा ये प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज। और मेरी बातों से आप जान ही गए होंगे कि मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM। 2 घंटों का ये सफर जिसे हम सजाने वाले हैं फुल ऑन बॉलीवुड हिट्स के साथ, और साथ ही साथ आपके फेवरेट सेलेब्स और उनसे जुड़ी हुई कुछ खबरों के साथ। सो अभी के लिए एक फिल्म जिसके बारे में हम काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं और वो है आवारापन 2। यस, वंस अगेन हम देख पाएंगे इमरान हाशमी को और उनके फैंस सुपर एक्साइटेड उन्हें देखने के लिए। तो चलिए उसी फिल्म का ये गाना फ्रॉम द फिल्म आवारापन 2 लेकर आए हैं आप सभी के लिए, फॉर ऑल द लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं। Have a wonderful time on the waves of RM2 Radio Mastee.

सो वेल फ्रेंड्स, सुनते रहे हैं आप और सुनते रहेंगे हमेशा। अभी के लिए तो वही गाने जो एक बार फिर लौट कर आ रहे हैं, लेकिन एक नए अंदाज के साथ। सो फ्रॉम द फिल्म भाई तेरा स्टार है, वी हैव दिस वन। एक गाना ऐसा जाने कितने टाइम से ये हमारे दिल में बसा हुआ है, एंड एक बार फिर ये गाना लौट कर आया है एक नए अंदाज के साथ। सो इसे हम चला रहे हैं आप सभी के नाम जो हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, आफ्टरनून टाइम है एंड ऐसे ही कुछ प्यारे गाने, दैट्स देव नेगी एंड पलक मुचल की आवाज़ें। एंजॉय दिस वन।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: धूम धूम वेल दोस्तों सेलिब्रेशन के लिए तो हमें बस मौका चाहिए और जैसे हम कहते हैं कि जिंदगी तो मिलती है एक बार और हर एक दिन को खास

बनाना ये आप ही के हाथ में है लेकिन जो लोग आज के दिन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आपका दिन तो ऑलरेडी खास है तो चलिए जन्मदिन की स्पेशल विशेज टू एवरीवन जो आज ऑन 23rd ऑफ जुलाई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर वी हैव अ स्पेशल स्पेशल विश हैप्पी वाला बर्थडे टू यू सरिता और सरिता आज अपना बर्थडे मना रही हैं आपके लिए स्पेशल विशेज बहुत सारा प्यार ये है पूरे कैंटीन स्टाफ की ओर से एंड स्पेशल विशेज लेकर आए हैं विशाल भैया रीना भाभी साथ में है रीटा प्रिया बबिता स्वस्ति मामी है दो चाचियां हैं जो अपना प्यार लेकर आई हैं आपके पति राजेश और साथ में है बच्चे मधु शिवम करिश्मा और दामाद है दो योगेश एंड विमल और छोटी सी हेशवी भी आपको विश करना चाहती है वेरी हैप्पी बर्थडे सो ऑन योर स्पेशल डे वी हैव दिस स्पेशल विश चलिए जन्मदिन आपका है सरिता और इसे बनाएंगे खास स्पेशल विशेस कमिंग फ्रॉम ऑल योर लव्ड वंस साथ ही साथ जो भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं ऑन 23rd ऑफ जुलाई हैप्पी बर्थडे आप सभी को

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: And well friends, जो वादा किया वो निभाया, कहा था कि ये आवारापन गाना आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे. सो अरिजीत सिंह के फैंस ऑल हैप्पी. जैसे ये गाना रिलीज हुआ तो उनके फैंस सुपर डुपर हैप्पी हो गए, ये सोचकर कि अरिजीत सिंह ने जो कहा था कि वो संन्यास ले रहे हैं प्लेबैक सिंगिंग से, अब उनकी आवाज़ सुनने को मिली है तो शायद ऐसा नहीं हो रहा है. लेकिन यहाँ पर दिल को दुखाने वाली एक बात ये है कि उनके मैनेजर ने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट्स थे वो उन्होंने पहले से हाथ में ले रखे थे, और जब उन्होंने कहा कि वो अब से प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे, प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेंगे, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में है वो

कंप्लीट करने के बाद वो कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं ले रहे हैं. सो मे बी वन ऑफ द लास्ट सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत सिंह जो हम सुन रहे हैं, और बोलने में तो हमें काफ़ी दर्द हो रहा है लेकिन आई डू होप ऐसा ना हो और उनकी आवाज़ उनके गाने हम सुनते रहे. वैसे प्राइवेट एल्बम्स पर्सनल एल्बम्स तो वो ज़रूर निकालेंगे लेकिन बॉलीवुड के लिए गाने कम ही सुनने को मिलेंगे. लेकिन चलिए अभी के लिए ये आवारापन, यस इस गाने के साथ उनके फैंस हो गए हैं हैप्पी हैप्पी. एक बार फिर अरिजीत सिंह की आवाज़ सुनने को मिली है उनको, और जब भी अरिजीत सिंह की आवाज़ हम सुनते हैं वो सीधा दिल तक पहुँच ही जाती है. चलिए दोस्तों आप भी साथ दे रहे हैं और आपकी स्पेशल विशेष भी हम तक पहुंच रही है, यानी कि आपका प्यार जो आप हम तक पहुंचाते हैं ऑन 5499 1294. सो यहां पर जो अगला गाना है अब्दुल एंड सायरा बानो, हमेशा की तरह आप भी जुड़ गए हैं रेडियो मस्ती के साथ. गाना होगा आपके नाम, और यहां पर प्रतिशा बुंदू है और कहती है कि चाचा मुकेश और चाची साधना ऑफ लाल माटी उनके लिए हम भेज रहे हैं स्पेशल स्पेशल विशेष. सो चलिए यहां पर चाचा जी चाची जी आपके लिए भी गाना चलेगा. एंड एवरीवन हु इज कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ, कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स एंड बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए. सो दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज, मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM ऑन रेडियो मस्ती.

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: RM2
1: Radio Musti.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: सेट योर डे एवरी सिंगल डे बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक रेडियो मस्ती सुनते रहे।
3: RM2 Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: Radio Mystique.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
5: RM2 Radio Musty.
3: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
6: Time check 3 p.m.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में हम सभी लोगों का स्वागत है। सेंचुरी में सार्वजनिक परिवहन की समस्या को लेकर स्थानीय निवासी कई वर्षों से अपनी चिंता जता रहे हैं। इसी मुद्दे पर पिछले शुक्रवार संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था। सोमवार से इस मार्ग पर एक अतिरिक्त बस सेवा शुरू की गई है। हालांकि NLTA की निगरानी और जांच के बावजूद यात्रियों का कहना है कि बसों की आवाजाही अब भी पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि बसों की कमी के कारण उन्हें रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। सेंचुबे के अलावा शोनू और बुविलाश जैसे आसपास के गाँवों के निवासी भी इस समस्या से प्रभावित हैं। अनुमान है कि इस परिवहन संकट का असर लगभग 3,000 लोगों पर पड़ रहा है। प्रसिद्ध भारतीय गायक अभिजीत भट्टाचार्य शनिवार को स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में अपना कंसर्ट देने वाले हैं। वे आज सुबह अपने संगीतकारों की टोली के साथ मॉरिशस पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मॉरिशस लौटकर खुशी व्यक्त की। बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय आवाजों में शुमार अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने लंबे संगीत सफर में हजारों गीत गाए हैं। उन्होंने विशेष रूप से अभिनेता शाहरुख खान के लिए अनेक सुपरहिट गीतों को अपनी आवाज दी है, जिससे दोनों की जोड़ी 1990 और 2000 की दशक की सबसे चर्चित अभिनेता गायक जोड़ियों में शामिल हो गई। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, तौबा तुम्हारे ये इशारे और ओले ओले जैसे उनके लोकप्रिय गीत आज भी श्रोताओं के बीच बेहद पसंद किए जाते हैं। शनिवार के इस कंसर्ट में दर्शकों को यादगार गीतों और भावनाओं से भरपूर एक शानदार संगीतमय शाम का अनुभव मिलने की उम्मीद है। आजसु मेट्रो नॉर्थ ने 22 जुलाई की सुबह प्रनवेत में एक घर की तलाशी के दौरान 27 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी पेशे से बैंकिंग टेलर बताया गया है। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने मेथाडोन से भरी 4 प्लास्टिक की बोतलें, 7 मिलीग्राम की 42 लिरिका कैप्सूल, 75 मिलीग्राम की 30 गबलाइन कैप्सूल, 100 मिलीग्राम की 11 ट्रम कैप्सूल, 10 मिलीग्राम की 8 वैल्यूम कैप्सूल और 125 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार ये राशि मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त होने का संदेह है। गिरफ्तार व्यक्ति को पोर्टलिस नॉर्थ जिला अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। अन्य खबरों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन में जून महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने न केवल तापमान के नए रिकॉर्ड बनाए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डाला है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की

0: एक रिपोर्ट के अनुसार भीषण गर्मी के कारण लगभग 2.4 करोड़ कामकाजी घंटे प्रभावित हुए, जिससे करीब 1.15 बिलियन पाउंड के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार 22 जून वाले सप्ताह में गर्मी के कारण सर्वे में शामिल 3.6% लोगों यानी लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों ने एक दिन काम नहीं किया। सबसे अधिक प्रभावित वे क्षेत्र रहे जहां काम बाहर खुले में करना पड़ता है, जिनमें निर्माण, परिवहन और कृषि क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

सो वेल फ्रेंड्स 3:07 हो गए हैं, साथ दे रहे हैं आप हमारा ऑन RM2 रेडियो मस्ती एंड वार्म वेलकम कर रहे हैं आप सभी का, जहां पर लेटेस्ट ट्रैक्स एंड बीट डाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं ऊपरी आपके साथ एंड चलिए यहां पर कॉकटेल 2 फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए। जैसे हमने कहा कि गाना तो हमेशा से रहा है पॉपुलर, लेकिन आजकल जो इजिएस्ट फंडा है वो है पॉपुलर सॉन्ग्स को थोड़ा

सुबह फ्रेंड्स अरिजीत सिंह की हम बात कर रहे थे और ये गाना भी हमने सुना इन द फिल्म कॉकटेल टू, और सारे गाने एक तरफ और अरिजीत सिंह का गाना एक तरफ। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल सुपर रोमांटिक गाना आप सभी के लिए जिस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। रोमांटिक गाने हो या फिर पेपी गाने, सब कुछ आपको मिलता है राइट हियर ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती। फॉर नाउ आपके इस आफ्टरनून में थोड़ा सा रोमांस का तड़का सुनिधि चौहान अरिजीत सिंह की आवाज़ें फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल टू। एंजॉय दिस वन।

RM2 Radio Musti. Feel the Musti.

0: एबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूँ जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।
0: गुरुवार 23 जुलाई को एमबीसी वन पर रात के 8:20 पर हिंदी फीचर फिल्म ये जवानी है दीवानी 2013 की ये मूवी रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण पर फिल्माई गई। ये जवानी है दीवानी।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी, इसे आप देख सकते हैं आज रात को MBC 1 पर। सो चलिए, इट्स 3:55 ऑलरेडी एंड इट्स टाइम कि मैं आपसे लूं अलविदा। इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय, लेकिन जाते जाते आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, वेल कहते हैं वंडरफुल आफ्टरनून। एंड एक खास डेडिकेशन ये होगा फॉर अवनी। ओके अवनी, आपके लिए इट्स योर बर्थडे आज, और आपके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज, आपके लिए बहुत सारा प्यार भेजा है आपके अपनों ने। साथ ही यहाँ पर कहते हैं लवली बहना एंजॉइंग द प्रोग्राम, गर्मा गर्म कॉफी और साथ में है क्रेप बना एंड एंजॉय कर रहे हैं आप फुल वॉल्यूम पर ललिता जीत एंड लव ऑन जैसे। सो नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए। एंड यहाँ पर शाम दे बिचैन साथ दे रहे हैं आप और सभी दोस्त है साथ, राजू बाईवा, वी ऑल्सो हैव सरजू लाला नागा लालदेव एंड सभी दे बिचैन परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। एंड डेडिकेटिंग अगला गाना ये होगा फॉर नीतू ऑफ पाल्मा का ट्रिप बोन, उन्होंने 21st of July को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विशेज एंड उनके लिए बहुत सारा प्यार स्पेशल विशेज ये भेजा है राजीव सैंपिया से, और उनके लिए स्पेशल विशेज हमारी पूरी टीम की ओर से भी। तो चलिए अगले गाने के साथ, इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय, मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ। आ रही है गिनिशा लेकर योर अवतार वाइब्स, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।

0: ये सुनते हैं समाचार अशिता के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिरीशा, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। सरकार के विजन 2050 परियोजना ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण चरण पार कर लिया है। इस राष्ट्रीय पहल से जुड़े प्रमुख निष्कर्षों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये प्रक्रिया सरकारी भवन में आयोजित बैठक के दौरान पूरी हुई, जिसमें देश के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2050 तक मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को 50 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी 2000 बिलियन से अधिक मॉरिशन रुपए तक पहुंचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार करना है। सरकार के अनुसार इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। क्वीन विक्टोरिया में बुधवार 22 जुलाई को एक नए स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की गई। इस सुविधा का उद्देश्य स्थानीय निवासियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर के निकट आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके शुरू होने से अब लोगों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी। सरकार का कहना है कि इस स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं अधिक आसानी और सुविधा के साथ उपलब्ध होंगी, जिससे ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और बेहतर होगी। क्यूपिप के टाउन हॉल में बुधवार 22 जुलाई को मैंगो सागा के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मॉरिशस में पाकिस्तान के उच्चायोग की पहल पर किया गया। इस अवसर पर पाकिस्तान की विभिन्न प्रसिद्ध आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में कुछ लोगों के लिए एक पुराने स्वादों की यादें ताज़ा करने का अवसर रहा, जबकि अन्य लोगों ने पहली बार इन विशेष किस्मों के आमों का परिचय प्राप्त किया। इस आयोजन के माध्यम से मॉरिशस और पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी रेखांकित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन में जून महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने न केवल तापमान के नए रिकॉर्ड बनाए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डाला है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भीषण गर्मी के कारण लगभग 2.4 करोड़ कामकाजी घंटे प्रभावित हुए, जिससे करीब 1.15 बिलियन पाउंड के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार 22 जून वाले सप्ताह में गर्मी के कारण सर्वे में शामिल 3.6% लोगों यानी लगभग 12.5 लाख कर्मचारी ने एक दिन काम नहीं किया। सबसे अधिक प्रभावित वे क्षेत्र रहे जहां काम बाहर खुले में करना पड़ता है, जिनमें निर्माण, परिवहन

0: कृषि क्षेत्र शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक गर्मी के कारण स्कूलों, अस्पतालों और रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा। इस वर्ष इंग्लैंड में जून का महीना अब तक का सबसे गर्म जून दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक मौसम संबंधी घटनाएं अधिक आम होती जा रही हैं और भविष्य में ऐसी भीषण गर्मी ब्रिटेन की आर्थिक वृद्धि के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे, बढ़ते हैं शोक समाचार की ओर। गजादर स्ट्रीट स्थानीय रोजिल में 91 साल के 91 ईयर्स ओल्ड के श्री मुत्यु कपेन, जिन्हें कादरेस के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले लाशोमिया के कारखाने में काम करती थी, उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके घर स्थानीय रोजे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौत मोहश की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स, RM2.

0: बिल्कुल जी, हमारा नंबर वन रेडियो स्टेशन, इसमें तो कोई शक नहीं है. सो माय डियर लवली लिसनर्स, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. एंड गुड आफ्टरनून आशिता.
1: गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड स्पेशली गिनी. इट सीम्स टू बी कि ये जो दोपहर है, द आफ्टरनून सीम्स टू बी रियली म्यूजिकल एंड वेरी नाइस.
0: एंड वी आर हैविंग सो मच फन इन द स्टूडियो. अभी तो हम भी उल्लाला उल्लाला
1: डांस स्टेप आप लोगों को देखना चाहिए.
0: और बीच में जब हमने ये किया, आउच,
1: That was something. यहाँ पर जो देख पा रहे थे वो देख के बोले भाई गिनी को पता नहीं क्या हो गया. लेकिन it's all about the Raftaar vibes.
0: Exactly, that's your filmy rides. Some idea and lovely people out there. आपका भी स्वागत है ऐसे खूबसूरत से शो में जहाँ पे हम सिर्फ गुड वाइब्स ही लेकर आते हैं आप लोगों के लिए.
1: Exactly. So whether you're in the office या फिर आप ऑफिस से आप निकल रही हैं, so you know where you have to tune in. That's right on
0: रेडियो मस्ती. और जैसे कि आपको पता है कि वैसे उसको तो मैंने हाईजैक कर ही लिया है आज तक. मैंने कहा तू नाच बहन तू नाच.
1: मैं यहाँ से निकल रही थी लेकिन वापस मेरे को यहाँ पर नचाना पड़ा.
0: सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, जस्ट गेट इनटू योर कार या बस में हो, मोबाइल में, कहीं से भी अगर आपको हमारा साथ देना है, अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, हाई कर लीजिए. एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड वाइब्स. वेलकम ऑन योर रफ्तार वाइब्स.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: शकिया टाइम जी 4:20 हो चुके हैं. हेलो जी, कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स. आई रियली होप एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम बाय लिसनिंग टू दिस ब्यूटीफुल एंड लवली शो जिसका नाम है योर रफ्तार वाइब्स. एंड ऑफ कोर्स गिनी कराते हैं योर बॉलीवुड राइड्स. सो माय डियर एंड लवली लवली स्वीट हार्ट्स जो साथ दे रहे हैं, आपको तो पता है कि जब भी हम आते हैं रफ्तार वाइब्स में तो खाली हाथ नहीं आते. ऑफ कोर्स आई हैव गॉट यू द गेम जहां पे आपको पार्टिसिपेट करना है. यू जस्ट हैव टू पार्टिसिपेट, गिव मी द राइट आंसर फुल नेम और फुल एड्रेस के साथ ऑन 5499 1294 पर पार्टिसिपेट, ट्राई टू बी द लकी विनर. और अगर लक ने साथ दे दिया आज तो आपको मिल सकता है 1 ticket yes टू वॉच द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन मॉरिशस ऑन 25th of July एट 7:30 PM एट SVICCR पर. सो माय डियर लवली लिसनर्स, फिलहाल के लिए यू जस्ट हैव टू प्ले विद MBC विद रेडियो मस्ती एंड स्टैंड अ चांस टू विन दिस टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग ऑफ कोर्स द लेजेंडरी ग्रेट सिंगर of Bollywood Abhijit ji. So he's going to be live in concert specially for you, and it's going to be an evening of timeless melodies, legendary hits and pure musical magic, my dear. Aur tickets bik rahe hain at moticket.mu and Réseau Otayu, and reservations ke liye aap phone kar sakte hain unke hotline par 4669999 par 4669999 par. Aur sawal bahut hi aasan hai, it's regarding the concert itself. Hum bas aapse puchna chahte hain ki जैसे कि हमने कहा है कि टिकट्स ऑन सेल एट moticket.mun रिजोर्ट आयो. उनकी जो सबसे सस्ती टिकट है, स्टार्टिंग प्राइस ऑफ देयर टिकट दैट दे आर सेलिंग फॉर दिस कॉन्सर्ट कितने की है? इज इट 650, 850 या 750 rupees? सो जो उनकी टिकट्स रेंज है, जो उनकी प्राइस है, स्टार्टिंग जो रेंज है वो कितने की है? 650, 750 or 850 rupees. 5 4 9 9 12 94. Send me the right answer, full name, full address ke saath. Best of luck to you.
3: This is the future, man.
2: Exactly, man.

0: अगर पप्पू डांस नहीं कर सकते हैं तो की फर्क पैदा है जी, हम तो डांस कर रहे हैं यहाँ पे इन द स्टूडियो आप लोगों का साथ देने के लिए। और कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, अगर आपका भी मन कर रहे हैं कि आपको नाचना है झूमना है हमारे साथ है, सो डू इट राइट नाउ राइट अवे। अरे बस में बैठे हो, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, अरे की फर्क पैदा है, हम तो बोलते ही रहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको डांस करना है, बैठे बैठे हाथ पैर तो हिला ही सकते हैं। तो चलिए जी, जस्ट गेट इन टू द मूड और बस हमारे साथ नाचने के लिए तैयार हो जाइए। इन दिस लवली शो दैट्स योर रफ्तार वाइब्स हैपनिंग राइट नाउ ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती विद मी गिनीश ऑन द माइक।
1: You're listening to

such a beautiful track, especially if you have logon ke liye on our own radio, missing the lovely voices of Akon and Hamsika Iyer. I wanna be my chamak chalo. Yes, of course, I don't have a mind to be your chamak chalo right now. So, my dear lovely listeners, hum to yahan pe aate hain just to spread happiness, and I really hope that I am bringing a beautiful smile on your face in the khoobsurat gaano ke zariye. 4:30 हो चुके हैं, the game is still on our MT Radio Masjid. जी हाँ दोस्तों, आज हमारे पास बहुत सारे vouchers हैं आपको देने के लिए, यानी कि ये tickets हैं आपको देने के लिए to watch the concert live of Abhijit Bhattacharya in Mauritius on Saturday 25th of July. जी हाँ, 25th of July शाम के 7:30 at SVICC. सवाल पूछा गया था कि उनकी tickets जो हैं already on sale at motika.mu and Réseau Tayo, and सबसे जो उनकी starting range of ticket है, the जो उनकी सबसे सस्ती टिकट है वो कितने की है, और हमने पूछा है ये सवाल, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, विच इज 850 रुपीज. यस, एग्जैक्टली, दिस इज द राइट आंसर. बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी. लेकिन एज पर द रूल ऑफकोर्स, जैसे कि आपको पता है, ओनली वन लकी विनर, और आज लकी ड्रॉ में किसका नाम निकल आया है, इट्स अक्षय गोपाल फ्रॉम ला लुइज कैथोबोन. So congratulations to you, my beautiful lady, Akshi Gopal from La Louise Quatrebonne. Aapne jeeta hai one ticket to watch the concert of Abhijit Bhattacharya live in Mauritius. So thank you so much for participating. Aap yahan pe aa sakte hain at the MBC, bring your ID, and of course you can grab your tickets before Saturday. So congratulations to you. Aur baaki log kyun ro rahe hain, shakal aise kyun banayi hai aapne, are meri jaan, koi gal nahi, abhi to bas aap intezar mein baithe, kyunki we'll be having some more tickets, not one, not two, not three, I'll be having 4 tickets to give away to you for the concert of Abhijit today in your Raftar Vibes. RM2 Radio.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट। रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स
0: RM2।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
3: स्पोर्ट्स न्यूज
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
5: तो चलिए जी, डिस्को विस्को तो बहुत हो गया, लेकिन फिलहाल के लिए लेट्स गेट इनटू द लेन. यस, स्ट्रेट अवे हियर टू आवर स्पोर्ट्स न्यूज, यानी कि हमारे गुरु जो है आ गए हैं. अरविंद जी, अवर गुड आफ्टरनून टू यू.
6: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. सो वी आर ऑल सेट फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स ओपनिंग सेरेमनी ऑन, और हमारे एथलीट भी तैयार हो रहे हैं. इनमें से सबसे पहले जो हमारे बॉक्सर जो हैं रिंग पे उतरेंगे आज रात. वी एक्सपेक्टिंग सम गुड रिजल्ट इनकी ओर से. सो वील से अले मोरिस, लेट्स होप कि पिछली बार वी हैव गॉट 5 मेडल्स, 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज. इस साल वी एक्सपेक्ट टू गेट बेटर. वेट लिफ्टिंग है, पैरालंपिक्स हैं, जूडो हैं, वी कैन गेट सम रिजल्ट. बॉक्सिंग में भी कुछ अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं. इस पर समय समय पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे जैसे जैसे हमें रिजल्ट मिलेंगे. फुटबॉल भी शुरू हो गया है. आज सुबह आपको बता रहे थे चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन इज ऑन, जबकि UEFA क्वालिफिकेशंस भी ऑन है. तो आज के कुछ फिक्स्चर्स इस प्रकार हैं. UEFA यूरोपा लीग सेकंड क्वालिफाइंग राउंड, काराबाग का मुकाबला CSK, दिनामो कीव PAOK सालोनिका, हमाबी अंडेलेक, शेरिफ मकाबी तेल अवीव, ट्रोम्सो राडेक, बेसिक्टास मिडजीलैंड, सिडगालेन बेनफिका, ट्वेंटे फेरेनबारोस हाजडुक पाफोस. सो इनमें से कुछ काफी नामी टीमें हैं जो UEFA यूरोपा लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में हैं. अगर आपने इंग्लैंड का नाम नहीं सुना तो इंग्लैंड के क्लब अभी कुछ आगे चलकर इनको ज्वाइन करेंगे. UEFA कॉन्फ्रेंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड भी है. सो मेनी मैचेस अराउंड. इनमें जो टीमें हैं अगर शुरू करें तो कल हो जाएगा. सो लाइक लगभग 30 मैच आयक्स खेलेगा वोजवोदीना टीम के खिलाफ. इनमें कोपेनहागन विल बी एवे पोलिसिया के खिलाफ, पनाथिनाइकोस पाक्स टीम, दिनामो एवे होगा अलुमनिडिज के खिलाफ, गेंट अगेंस्ट LNZ चरकासी, लुडोगोरेट्स हापोएल तेल अवीव के खिलाफ. देन वी हैव गॉट मदरवेल अगेंस्ट HB. कुछ इंपॉर्टेंट मैच ये आपको हम दे रहे हैं. इसके फिक्स्चर्स कल भी जारी रखे जाएंगे और कल कुछ फ्रेंडलीज भी खेले जाएंगे, जिसे कल मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला रोजनबर्ग से होगा ये 8 बजे. उसी दिन गलातासराय का मुकाबला मोन्जा से. और क्लब फ्रेंडलीज जारी रखे जाएंगे द नेक्स्ट डे सैटरडे को भी. काफ़ी मैच हैं, स्कॉटिश लीग कप के भी मैच खेले जाएंगे और फ्रेंडलीज में UEFA वीमेंस चैंपियंस लीग भी होंगे. और फ्रेंडलीज में संडे को मैच लिवरपूल अपना मैच खेलेगा सन्डरलैंड के खिलाफ, ये सुबह होने वाला है. तो फ्रेंडलीज शुरू होते हैं तो खिलाड़ियों की तैयारी भी. इधर लीड्स यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी के गोलकीपर ट्राफोर्ड को साइन करना चाहता है. जेम्स ट्राफोर्ड इंग्लैंड का इंटरनेशनल, वो इतिहाद छोड़ सकता है, एक साल यहां पर आया था. न्यूकासल यूनाइटेड एस्टन विला भी उस पर इंटरेस्टेड थे, लेकिन विला चाहता है कि एमी मार्टिनेज क्लब में रहे. लीड्स एक नए गोलकीपर की तलाश में है. कॉल डॉलू और इलान मेलिए एलान रोड छोड़कर चले गए हैं. दैट्स व्हाई दे वांट अ न्यू गोलकीपर. ऐसे ही न्यूकासल यूनाइटेड 34 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर मोनाको के खिलाड़ी अलाजी बाम्बा को साइन करना चाहता है. 20-year-old फ्रेंचमैन जो अपना फर्स्ट सीनियर गेम खेला था अगस्त 2025 में, वो इधर आएगा, मेडिकल पूरा करेगा और शायद एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा. न्यूकासल यूनाइटेड ने सांधो तोनाली को बेचा है टोटनहम हॉटस्पर से. काफ़ी पैसे मिले हैं उसको खिलाड़ियों पर खर्च करने के लिए, खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि बाकी टीमें दे आर वेटिंग फॉर द राइट डील टू हैपन. क्रिकेट, इसी समय मैच चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड जिम्बाब्वे. ये पहला वनडे बल्कि T20 मैच है. सो जिम्बाब्वे की टीम बैटिंग

0: और अभी कितने पर हैं? 115 तीन विकेट डाउन, लगभग एक ओवर बाकी है. ऑलराइट, तो अच्छी बॉलिंग है भारतीय टीम की ओर से, पर बैटिंग क्या होगी ये थोड़ी देर बाद रिमाइंड यू. वैभव सूर्यवंशी टीम में है, वो आज खेल पाएगा, लेकिन टोटल उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए संभल कर खेलना होगा. मॉरिशस में, जिसे आप सभी लोगों को पता है कि वो एथलीट्स आर देयर इन ग्लासगो, सो विल बी सपोर्टिंग देम. और अभी छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, आज सुबह हम लोगों ने कहा था गुडलैंड्स में, वहाँ पर वहाँ का जो मुगा है वहाँ पर एक क्या कहते हैं उसको, फुटसाल वो चल रहा है टूर्नामेंट. 20 टीम्स पार्टिसिपेटिंग, अभी फाइनल लगभग हो रहे होंगे, कल सुबह तक आपको रिजल्ट देंगे. सो छुट्टी है, बच्चों को ऐसा नहीं कि केवल ट्यूशन जाओ, घर आओ, मोबाइल के सामने बैठो, टीवी के सामने बैठो. सम स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे ही थर्ड टर्म आ जाएगा, इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट इन दिनों, खासतौर पर वी सो मेनी कॉम्पिटिशन्स अराउंड. सो अभी इस एक महीने की छुट्टी में बच्चों को स्पोर्ट्स की ओर ज़रूर ले जाएगा. हम तो हैं ही यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ देने के लिए, हम सिर्फ स्पोर्ट्स न्यूज़ देते हैं, आप स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है?
1: बिल्कुल जी, अगर आप सिखाएंगे तो हम जरूर करेंगे.
0: गुड, नहीं हम तो रिजल्ट देते हैं.
1: नहीं नहीं, आपको करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो हम कॉपी कर लेंगे.
0: I don't know if you know that, मैं बार बार ये कहता रहता हूँ, जब when I encourage people to do sports, हमारे listeners को भी, those who don't know, एक बार यहाँ MBC में मेडिकल टेस्ट हुआ था, मेडिकल टेस्ट तो सभी लोगों का, they were taking their weight and all these things, तो हम भी गए, हम भी गए, तो जब वेट लिया, हाइट देखा, तो डॉक्टर ने पूछा स्पोर्ट्स करते हो? मैंने कहा हाँ, सुबह शाम करता हूँ. देखकर मुझे नहीं लगता,
1: नहीं लगता
0: मैं, नहीं रेडियो में, रेडियो पर
1: मुंह चलता है ना आपका. थैंक यू सो मच अरविंद.
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट.

तो चलिए जी, 4:50 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन RM2 रेडियो मैसेज। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए एक और गेम लेकर आए हैं, एक और सवाल। यू जस्ट हैव टू टेल मी दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग जो अभी आप सुन रहे हो ऑन रेडियो मस्ती, कौन सी मूवी से लिया गया है। दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इज टेकन फ्रॉम विच मूवी, जस्ट गिव मी द राइट आंसर राइट नाउ ऑन 5499-1294 पर एंड विन अ टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन मॉरिशस ऑन दिस सैटरडे एट 7:30 PM at SVICC at Pai. Best of

0: You're listening to The Radio Masti.
1: बिल्कुल जी, ये मजा तो लेना चाहिए सैटरडे की रात को एट द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन मॉरिशस. सो दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम विच मूवी? सेंड मी द राइट आंसर राइट नाउ ऑन 54991294594. द नेम ऑफ द मूवी, योर फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ डू पार्टिसिपेट एंड यू कैन विन अ टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव.
0: To Radio Mustang.

0: ट्रैफिक अपडेट।
1: तो चलिए जी लेके जाएंगे स्ट्रेट वे फॉर योर ट्रैफिक न्यूज़। और वैसे ही टाइम हो गया है कि आज के ड्राइव का जो टाइम है ट्रैफिक अपडेट का हम आप तक पहुंचा दें। वैसे स्कूल हॉलीडेज चल रहा है तो नॉर्मली रोड्स थोड़ी लाइट रहती हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिस आवर्स रैप अप होते हैं ना, इवनिंग पीक शुरू हो जाती है और सब घर की तरफ रश करते हैं। सो अभी की ट्रैफिक सिचुएशन कुछ इस तरह है माय डियर एंड लवली लिसनर्स। अगर आप पोर्टवी से नॉर्थ की तरफ ट्रैफिक की तरफ हम देख रहे हैं तो ट्रैफिक काफ़ी जाम है, लेकिन 4-5 राउंड अबाउट्स क्रॉस करने के बाद ट्रैफिक स्लो मूविंग हो जाता है और ग्रेजुअली फ्लो इम्प्रूव होता है। और साउथ बाउंड के लिए यानी कि पोर्टवी से साउथ की तरफ भी जो ट्रैफिक है स्लो मूविंग है, स्पेशली रेजवी से फिनिक्स और उसके बाद साउथ की डायरेक्शन में व्हीकल्स जो है मूव कर रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जैसे जैसे इवनिंग बढ़ेगी कंजेशन और इंक्रीज होगा। और लेट मी हैव अ लुक एट वेदर रोड, वहाँ पर भी हर आफ्टरनून की तरह स्लो मूविंग ट्रैफिक है। पेशेंस रखें और सेफ डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रखें व्हाइल ड्राइविंग। लेकिन गुड न्यूज़ तो ये है कि अभी तक किसी मेजर रोड एक्सीडेंट नहीं है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप आराम से गाड़ी चलाना, रोड क्लोजर की रिपोर्ट नहीं मिली है अभी तक, दैट्स वेरी गुड। सो और फाइनली एक छोटी सी रिमाइंडर सभी ड्राइवर्स के नाम ऑन रेडियो मस्ती, ड्राइव सेफ और अननेसेसरी जो लेन होते हैं उसको चेंज करना अवॉइड कर लीजिए, इंडिकेटर्स का यूज़ ज़रूर कीजिए एंड अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकल जाइए। कोर्टेसी ऑन द रोड गोज अ लॉन्ग वे। जी हाँ, मैं एक्चुअली मेन था आपके साथ लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट के साथ। सो हमेशा सेफ ड्राइव, स्टे पेशेंट और जो है घर आप सेफली पहुंचाइए और बस यूं ही साथ देते रहिए ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती।
0: वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ BM and CM, Bade Mia, The Khiladi and CM, The Bug.
2: You're listening to Radio Musti.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

बिल्कुल जी, हमेशा सुनते रहना RM2 रेडियो मसीह। अभी फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 5:12 हो चुके हैं। सो वेलकम बैक इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो, दैट्स योर रफ्तार वाइब्स, जहां पे निशा लेकर आई है योर फिल्मी राइड्स। सो माय डियर लवली लिसनर्स, हमने पूछा एक सवाल, जी हां, जहां पे बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, टू गिव मी द राइट आंसर। सवाल वैसे क्या था? बिल्कुल जी, हमने पूछा था ये खूबसूरत सा जो गाना आप सुन रहे हो अपने रेडियो पर, कौन सी मूवी से लिया गया है? ये खूबसूरत सा गाना जो है कौन सी मूवी से लिया गया है? एंड बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भेजा है सही जवाब, विच इज स्ट्रीट 2। स्ट्रीट 2 जो है, इट्स टेकन फ्रॉम दिस मूवी। दिस इज द राइट आंसर। लेकिन आज पर द रूल, ओनली वन लकी विनर वी कैन हैव। एंड आज का लकी विनर है, लकी ड्रॉ करने के बाद वी डू हैव हमारे के साथ, जी हाँ, वो है विश्वामित्र दुर्गा और रहते हैं वो खिफ के। बिल्कुल जी, यू आर आज का लकी विनर, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू विश्वामित्र जी, एंड यू आर फ्रॉम खैरकेयर। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड आप खाली हाथ नहीं जा रहे हो, आपने जीता है अ टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव इन मॉरिशस ऑफ अभिजीत भाटियाचार्य, हैपनिंग दिस सैटरडे ऑन 25th ऑफ

जुलाई एंड इट्स गोइंग टू हैपन एट SBICCRPIR फ्रॉम 7:30 PM. तो चलिए जी, बाकी जो हमारे लिसनर्स हैं आप भी फिर से मुंह लटका के बैठे हैं कि हम फिर से नहीं जीते. अरे दिल छोटा नहीं करते हैं, अभी फिर से हमारे पास दो टिकट्स और हैं आपको देने के लिए. इट्स गोना हैपन जस्ट आफ्टर द 6 PM के समाचारों के बाद. सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड हमारे साथ ऑन RMTV रेडियो मस्ट. एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू माय डियर, जस्ट टेक ब्रिंग योर आईडी एंड ग्रैब योर टिकट्स एंड गो एंड एंजॉय द लवली कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत इन मॉरिशस.

हाय नमस्कार, दिस इज अभिजीत भट्टाचार्य। आप सुन रहे हैं मुझे इन एट ऑन रेडियो मस्ती, मस्ती भरी मस्ती।

0: नमस्कार दिस इज अभिजीत भट्टाचार्य आप सुन रहे हैं मुझे इन एक्ट ऑन रेडियो मस्ती मस्ती भरी मस्ती
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: आरएम2

0: to
1: Radio Musty.
0: Kamla, elle a senti bon que toi là. Qui? Te baigne de parfum? Te l'auto aussi baigne de parfum? Te sale débain si baigne de parfum toi? Te comique toi deux? Check ça? Sandal à le kick? Et toi l'im sandal 24-7 toi?
2: Sen là, te pas trouver ça. Fic tes bords qui sen là.
0: Allo kick gel air fresh no pocket sized? Astier, me comprends. Te mets air fresh no dans ton postement sportout.
2: Vrai même, te bien comique toi, hein? Allez, essaye tout. Allo kick, peine à ce deuxième sans bosser.
3: Allo kick, freshness anytime, anywhere.
4: तो हर भविष्य के बनाई में हर एगो महत्वपूर्ण निर्णय खातिर एगो भरोसामंद साथी के जरूरत रहेला। सिकुम तोहर जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर तोहर संगे खड़ाबा, तोहर सब आवश्यकता के अनुसार वित्तीय समाधान देवेला, जेकर पर सकबा विश्वास करे। हमनी तोहर सपना के पूरा आत्मविश्वास से और बिना तोहरा कोनो चिंता देवत तोहर सपना साकार करे में तोहर संगे हई जा। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के कोनो भी अधिकारी से संपर्क करिय या sikkim.mu पर जाइय। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा, सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
5: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन आवर एम2 रेडियो मस्ती। फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर योर फैशन टिप्स।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: ऑन एम2 फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
0: थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस। एंड ऑफकोर्स जैसे कि आपको बताया, हम हर आफ्टरनून आ जाते हैं विद सम लेटेस्ट फैशन टिप्स आप लोगों के लिए। और अगर आप जैकेट पहनने के शौकीन हो, सो स्टाइलिश बनो, स्मार्ट लगो हमेशा बाय वेयरिंग योर जैकेट। सो जैकेट पहन रही हो तो याद रखो, फिट इज एवरीथिंग। जैकेट ना बहुत टाइट होना चाहिए ना बहुत लूज, परफेक्ट फिटिंग आपके ओवरऑल लुक को इंस्टेंटली क्लासी बना देते हैं। और अगर आप कैजुअल लुक चाहते हो तो जैकेट को सिंपल टी शर्ट और जीन्स के साथ पेयर करो। और अगर थोड़ा स्मार्ट और स्टिकेटेड लुक चाहिए तो शर्ट के ऊपर ब्लेजर या स्ट्रक्चर्ड जो जैकेट है ट्राई करो। वैसे कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो लेकिन बैलेंस मेंटेन रखो। हमेशा एक बोल्ड जैकेट है तो बाकी ये जो आउटफिट है हमेशा सिंपल रखो। और एक्सेसरीज में एक स्टाइलिश वॉच या सबटल जो है चेन आपके लुक को और एलिवेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैकेट कोई भी हो कॉन्फिडेंस फुल ऑन होना चाहिए क्योंकि असली फैशन वही है जो आप कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा कैरी करते हो।
2: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज।

0: आपका स्टाइल
1: और आपका चांस,
0: डोंट मिस इट।
2: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: RM2।

0: Well, that was such a beautiful track, especially to all those who are still hitting the road. Drive carefully. और हाँ जी, to all those जो अभी काम पे ही हैं, so courage to you. Don't worry ना, मैं भी तो हूँ काम पे आपका साथ देने के लिए. तो चलिए जी, फिलहाल के लिए let's check it out. Your dedications जो आपने ये बड़े प्यार से भेजे हैं on 5491294 पर. और well, हमारे ये प्यारी सी ललिता जीतन जी, वो बोलते हैं सारे गाने रॉकिंग है. अगला गाना आपके कोलीग टीचर्स के लिए टानिया, सीमा, प्रीति, सोनिया, डीना, पूनाशी एंड वी डू हैव रियानी, सुषमा एंड ललिता जीतन ऑफ लव ऑन. द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू वीना जॉकी साहब फ्रॉम बेल्वी मोरेल. एक गाना आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, दोस्तों के लिए और रेडियो मस्ती लिसनर्स के लिए. रेशमा, हेलो, कैसे हो रेशमा जी फ्रॉम प्लान दे रोश. नेक्स्ट वन फॉर मामा, पापा, दीपा, रति एंड ओजस्वी, लविश, सचिन एंड किशन, बॉबी के लिए. हे मिस करिश्मा, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू. एंड चलिए जी, टू ऑल दोस्त जो अभी बस में बैठे हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, द नेक्स्ट वन गोज आउट स्पेशली हमारी तरफ से आपके नाम. फिलहाल के लिए 5:53 हो चुके हैं. थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे समाचार 6 बजे के समाचार, और उसके बाद द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
1: You're listening to Radio Masti.

0: रात। सच ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग गाने आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो पर मस्ती पर ही मिलेंगे सुनने के लिए। सो फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 6 पीएम।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: The time is brought to you by
3: McDonald's Fat App.

0: 23 जुलाई गुरुवार का दिन इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सरकार की विजन 2050 परियोजना ने आज एक और महत्वपूर्ण चरण पार किया। देश के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस योजना के मुख्य निष्कर्षों को मंजूरी दी गई। उद्देश्य 2050 तक 2000 बिलियन मॉरिशन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना है। एमओयू के कस्टम्स विभाग के कार्यों का जायजा लेने, सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उसे और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आईएमएफ की एक टीम इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर है। प्रतिनिधियों ने आज प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। सुरों का जादू, मधुर आवाज और यादगार गीतों से सजी एक खास शाम का इंतजार अब बस कुछ ही दिन दूर है। शनिवार को भारत के मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य अपने सदाबहार गीतों से श्रोताओं का दिल जीतने आए हैं। कलाकार आज सुबह मॉरिशस पहुंचे। अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सऊदी अरेबिया अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेगा। इस समझौते से अमेरिकी कंपनियों को भी सऊदी के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 16 जिलों में 8 लाख से अधिक लोग इस आपदा से प्रभावित हुए। इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सरकार की विजन 2050 परियोजना ने आज एक और महत्वपूर्ण चरण पार किया। गवर्नमेंट हाउस में देश के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस योजना के मुख्य निष्कर्षों को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य 2050 तक मॉरिशस को 50 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी 2000 मॉरिशन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले दिन जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। और मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के कस्टम्स विभाग के कार्यों का जायजा लेने, सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उसे और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आईएमएफ की एक टीम इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर है। इस टीम ने आज ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। इस मुलाकात में एमओए के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। सिंचा मुत्तू, अदिति अवतार।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक प्रतिनिधि मंडल मॉरिशस आया हुआ है। मकसद है देश में टैक्स प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकों के मुकाबले इसकी परिपक्वता की स्तर का आकलन करना। ओगुस्तो अजाएल पेरेज आस्कागा, स्टेफेन मेंडेस, आल्दो सिल्वानो और ऑस्कर अल्बर्टो नियेतो मोरा मॉरिशस के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने आज मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित रामनवास की उपस्थिति में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम के साथ भेंट की। एमओरए के महानिदेशक ने कहा, ट्रेड फैसिलिटेशन से जुड़े खतरे पाटने के लिए और दूसरी तरफ देश में अवैध सामानों का प्रवेश रोकने के लिए वे हमारे टैक्स क्षेत्र को ज्यादा मजबूत बनाने में हमारी सहायता करेंगे। साथ ही कस्टम्स की कारगरता बेहतर करने में मदद मिलेगी। जब आयातक या निर्यातक कंटेनर मंगवाते हैं तो वे जल्द से जल्द उसे प्राप्त करना चाहते हैं। हम ऑपरेशन खर्च भी कम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष की क्षमताएं बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा। टैक्स अधिकारियों द्वारा इस मूल्यांकन के बाद एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके साथ मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी की कार्य क्षमता बेहतर करने के लिए सहायक उपाय भी शामिल होंगे।
0: जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि सरकार की विजन 2050

0: परियोजना ने आज एक और महत्वपूर्ण चरण पार किया। गवर्नमेंट हाउस में देश के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस योजना के मुख्य निष्कर्षों को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य 2050 तक मॉरिशस को 50 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी 2000 मॉरिशन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना है। अब्दुल बोला की याचना मिश्रा।
1: विजन 2050 पर 6 महीनों के अंतर्राष्ट्रीय परामर्श के बाद अब आने वाले दशकों के विकास को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख रणनीतियों को अंतिम रूप देने का समय आ गया है।
2: Between now and 2050, we will be losing 180,000 Mauritians to aging, which we will not.
1: 23 जुलाई को सहरीलाल वागजी हॉल में आयोजित बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों, आर्थिक क्षेत्र के संचालकों, शिक्षाविदों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को मुख्य निष्कर्षों पर जानकारियां दी गईं। प्राथमिकताओं में नशा और अपराध मुक्त समाज का निर्माण, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना, आधुनिक ढांचों का निर्माण, अच्छी नौकरी पैदा करना, रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सुदृढ़ बनाना तथा अधिक लचीली नवाचार आधारित और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था का निर्माण शामिल है।
2: $50 by $50
1: एक ऐसी अर्थनीति जो 2050 तक 50 बिलियन डॉलर की होगी। इसके लिए काम करना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा और आश्वस्त करना होगा कि सभी इसमें भाग लें। वक्ताओं ने मॉरिशस के लिए ऐसी दीर्घकालिक और साझा राष्ट्रीय विजन के महत्व पर बात की जिससे रणनीतिक बदलावों से परे जाकर आने वाली पीढ़ियों की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।
3: Is that vision clear enough for country?
4: C'est un visioning exercise, qui peut montrer Maurice.
1: हमें 2050 का मॉरिशस दिख रहा है, ये मार्ग प्रशस्त करता है। आशा है कि इसके लिए सरकार माध्यम और निवेश देगी। ये कार्रवाई पहले ही कर देनी चाहिए थी।
4: Mais c'est un très bon exercice qui bien fait ça avant.
5: Pour qu'avoir tout ça, nous avons besoin d'un very strong human capital.
1: इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ठोस वित्तीय स्थिति की जरूरत है। शिक्षा को भी पर्याप्त होना होगा ताकि चुनौतियों का सामना किया जा सके।
3: La sécurité alimentaire évidemment est un sujet très important.
1: खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है और देखना होगा कि भूमि का प्रयोग कैसे किया जाए।
3: De l'utilisation des terres à Maurice
6: est très important qui tout à chacun dans nos populations de sentise belong to that vision.
1: सभी को इस विजन को अपनाना चाहिए, इसे अमल में भी लाया जाना चाहिए। वैलिडेशन चरण के बाद दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जाएगा जिसके बाद चरणों में इसे लागू किया जाएगा।
5: L'avenir se prépare si nous pas faire ça.
1: भविष्य की तैयारी चल रही है। आज जल, बिजली, बुजुर्गों की बढ़ती संख्या, पेंशन, सब प्रकार की चुनौतियां हैं क्योंकि इसकी तैयारी या पूर्व योजना नहीं की गई थी। हम अपने बच्चों को ऐसा देश नहीं सौंप सकते हैं। इसी वास्ते विजन 2050 भले ही दूर दिखता हो लेकिन तैयारी आज से ही शुरू है। विजन 2050 की तैयारी के तहत मॉरिशस और रोड्रिग्स में 13 परामर्श बैठकें लगाई गईं। इनमें अलग अलग क्षेत्रों से 1,500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आर्थिक क्षेत्र की प्रतिनिधियों, श्रमिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, युवाओं, शिक्षाविदों तथा अन्य साझेदारों के साथ भी विचार विमर्श हुए। अधिकारियों के अनुसार ये प्रक्रिया आने वाले 25 सालों में मॉरिशस के सतत विकास और विजन 2050 का मजबूत आधार बनेगा।
0: लातुकिनिक के निवासी हवा की स्वच्छता को लेकर चिंतित हैं। हालांकि नेशनल एनवायरमेंटल लेबोरेटरी का कहना है कि जांच में हवा की किस्म सामान्य पाई गई है। 9 जुलाई को इलाके में फैली तेज गंदबास की एक फैक्ट्री में हैवी ऑयल के रिसाव के कारण थी। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार फैक्ट्री ने अब इस समस्या को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा लिए हैं। सेंचुबेया में सार्वजनिक परिवहन की समस्या को लेकर स्थानीय लोग कई सालों से आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले गुरुवार इस

0: इस मुद्दे पर राष्ट्रसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था। इसके बाद सोमवार से इस रूट पर एक अतिरिक्त बस लगाई गई। एनएलटीए ने भी इस मार्ग पर जांच की, लेकिन बस का इंतजार कर रहे यात्रियों का कहना है कि बस अब भी कम चल रही है। उनका कहना है कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। और बात करें हम अन्य खबरों में, पाकिस्तान के मशहूर आमों की मिठास और खुशबू का रंग आज क्यूबिक में देखने को मिला। पाकिस्तान हाई कमीशन की पहल पर सिटी हॉल में मैंगो सागा के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को पाकिस्तान की कई मशहूर किस्मों के आमों का स्वाद चखने का अवसर मिला। साथ ही मॉरीशस और पाकिस्तान के बीच दोस्ती और सांस्कृतिक संबंधों को भी उजागर किया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट, सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: मीठे और रसीले कई तरह से परोसे गए पाकिस्तानी आमों ने मेहमानों का दिल जीत लिया। जो लोग पहले पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं, उनके लिए इनका स्वाद पुरानी सुखद यादें ताज़ा कर गया। नसरीन मियाजान कहती हैं, मैंने पाकिस्तान में 5 सालों तक पढ़ाई की थी। हम गर्मियों के दौरान वहाँ के आमों का आनंद लेते थे। इस गतिविधि से आज आम से जुड़ी मेरी यादें ताज़ा हो गई। मॉरीशस में ऐसे आम नहीं मिलते। इब्राहिम अलादीन कहते हैं, आम मेरा मनपसंद फल है। जब मुझे पता चला कि मैंगो फेस्टिवल लग रहा है तो मुझे यहाँ आना ही था। आम से लस्सी, आइसक्रीम आदि कई तरह की चीजें बनती हैं और पाकिस्तान अपने आमों के लिए मशहूर है। पाकिस्तानी रिवाजों और संस्कृति में आम का बहुत बड़ा महत्व है। मुख्य रूप से सिंध और पंजाब क्षेत्रों में उगाए जाने वाले आमों की कई किस्में होती हैं।
2: हमारा जो मेन मकसद है वो ये कि पाकिस्तान और मॉरीशस की जो तिजारत है, जो ट्रेड है, उसको इंक्रीज़ किया जा सके। और देर आर और भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं, लेकिन मैंगो जो है एक ऐसा आइटम है जिसपे हम समझते हैं कि एक नई चीज़ हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं मैंगोज़ की पाकिस्तान में। उनमें से इस टाइम जो हम देख कर आए हैं वो मैंगो चौंसा है, और ये वाइट चौंसा कहलाता है। लेकिन ये कि जो मैंगो का सीज़न है वो 31 मई से 31 अगस्त तक है, तो उसमें बहुत सारी किस्में वैरायटीज़ आती रहती हैं। और अगले महीने में कुछ और वैरायटीज़ भी आएंगी, वी विल ब्रिंग देम एज वेल। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटलेट्स हैं यहाँ पे उनमें रखें। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मॉरीशस दोस्त हैं वो इसको इंजॉय करेंगे।
3: जब हम अपने पाकिस्तानियों से मिलते हैं और हमारे एम्बेसडर अहमद रज़ा जब यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं सारे फेस्टिवल पाकिस्तानी, तो सेम लगता है जैसे एक छोटे से पाकिस्तान में आ गए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मॉरिशियन लोगों से भी, हमारे पाकिस्तानी सब जब कम्युनिटी मिलती है तो कोई उसमें मतलब ऐसा मिस नहीं होता है। सेम लगता है जैसे पाकिस्तान में हम इंजॉय करते थे हर इवेंट, सेम अब यहाँ पे भी ऐसा।
1: इस फल की खेती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम सेक्टर है। देश में हर साल 1.8 मिलियन टन से ज्यादा आम का उत्पादन होता है, जिससे ये दुनिया के प्रमुख उत्पादक देशों में शामिल हैं। पुरानी यादें, नई खोज और सहयोग का मेल, मैंगो सागा के इस दूसरे संस्करण का मकसद है मॉरीशस और पाकिस्तान के बीच सहयोग का एक पुल कायम करना।
0: प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने प्रेमचंद दिवस मनाया। इस अवसर पर वाकवा के सियाश कोंसौते थिएटर में मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना बूढ़ी काकी का मंचन किया गया। कार्यक्रम में प्रेमचंद के प्रशंसक, हिंदी प्रेमी तथा अनेक आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे। मॉरीशस की पत्रकारिता जगत के लिए एक दुखद समाचार। वरिष्ठ पत्रकार नसीम अकबर अली का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वीकेंड स्कूप से की थी, जहां वे सांस्कृतिक विषयों और भारतीय सिनेमा पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे। बाद में उन्होंने लुमोसिया में कृषि क्षेत्र से जुड़े विषयों को पेशेवर अंदाज में कवर किया। उनके निधन से मॉरीशस की पत्रकारिता ने एक समर्पित और सम्मानित पत्रकार को खो दिया है। एमबीसी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके परिवार तथा सभी परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। सुरों का जादू, मधुर आवाज और यादगार गीतों से सजी एक खास शाम का इंतजार अब बस कुछ ही दिन दूर है। इस शनिवार भारत के मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य एस वी आई

0: सीसी के मंच पर अपने सदाबहार गीतों से श्रोताओं का दिल जीतने आ रहे हैं। कलाकार आज सुबह मॉरिशस पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर मॉरिशस लौटने की खुशी जाहिर की, और इस पर हम अपनी बुलेटिनों के अंतर्गत ज्यादा जानकारी के साथ आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। ये दिन देश में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। पिछले लगभग एक शताब्दी में प्रसारण ने लोगों तक समाचार, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। आज डिजिटल युग में भी इसकी प्रासंगिकता बरकरार है।
1: हर साल 23 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे, जिसे आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, से देश की पहली संगठित रेडियो प्रसारण सेवा शुरू की थी। हालांकि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कुछ वर्षों बाद बंद हो गई, लेकिन इसी पहल ने भारत में आधुनिक प्रसारण व्यवस्था की नींव रखी। वर्ष 1936 में इसकी जगह ओल्ड इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1957 में इसे हिंदी में आकाशवाणी नाम दिया गया। इसके बाद आकाशवाणी ने देश के शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक अपनी मजबूत पहचान बनाई। समय के साथ रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा। समाचार, मौसम की जानकारी, खेल, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से इसने करोड़ों लोगों तक उपयोगी जानकारियां पहुंचाई। प्राकृतिक आपदाओं और राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान भी प्रसारण लोगों तक समय पर सूचना पहुँचाने का भरोसेमंद माध्यम बना। प्रसारण ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न भाषाओं, लोक संगीत, साहित्य और नाटकों को देशभर के श्रोताओं तक पहुंचाकर इसने सांस्कृतिक विविधता को मजबूत किया। आज प्रसारण का स्वरूप काफी बदल चुका है। पारंपरिक रेडियो के साथ साथ एफएम रेडियो, सैटेलाइट टेलीविजन, पॉडकास्ट, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और मोबाइल एप्स के माध्यम से लोग दुनिया के किसी भी कोने में अपनी पसंद के कार्यक्रम सुन और देख सकते हैं। आज भी आकाशवाणी देश के करोड़ों श्रोताओं तक समाचार, शिक्षा और जनहित से जुड़े कार्यक्रम पहुँचाती है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम मन की बात भी आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित होता है और भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में सुना जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस उन सभी प्रसारकों, पत्रकारों, निर्माताओं, टेक्नीशियनों और पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मान देने का अवसर है, जो हर दिन लोगों तक विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम करती है।
0: और यूरोप के कई देशों में जंगलों की आग लगातार फैल रही है। सबसे गंभीर स्थिति फ्रांस में है, जहां हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्पेन और इटली भी आग की चपेट में हैं। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन ऐसी घटनाओं को और गंभीर बना रही है। आस्था गोविंद धवन।
1: फ्रांस में जंगलों की आग तेजी से फैलने के कारण कई इलाकों से लगभग 12,000 लोगों को सावधानी के तौर पर निकाला गया है। अब तक करीब 2,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है। बोर्डो हवाई अड्डे के पास लगी आग पर काबू पाने के दौरान 2 दमकल कर्मियों की भी जान चली गई। उधर स्पेन में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मैड्रिड के दक्षिण में टोलेडो के आसपास कई इलाकों को खाली कराया गया है। 3 से अधिक गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वहीं इटली के सिसिली द्वीप पर आग बुझाने के लिए लगभग 6,000 दमकल कर्मी, वन अधिकारी और नागरिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद दर्जनों स्थानों पर आग अब भी धधक रही है। कैलाब्रिया क्षेत्र में भी 160 से अधिक आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कई आग जानबूझकर लगाई गई हो सकती है और इसकी जांच जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने यूरोप के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक यूरोप में पिछले 2 दशकों के औसत की तुलना में कहीं अधिक वन क्षेत्र आग की चपेट में आ चुके हैं, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स का 23वां संस्करण आज स्कॉटलैंड में ग्लासगो में शुरू हो रहा है। हर 4 साल में आयोजित होने वाले इस बड़े खेल आयोजन में इस वर्ष 74 देश हिस्सा ले रहे हैं। मॉरिशस भी इन खेलों में भाग ले रहा है। टीम मॉरिशस में लगभग 50 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 40 खिलाड़ी देश का चौरंगा झंडा लेकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे।

0: जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि सुरों का जादू, मधुर आवाज और यादगार गीतों से सजी एक खास शाम का इंतजार अब कुछ ही दिन दूर है। और इस सिलसिले में भारत के मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के मंच पर अपने सदाबहार गीतों से श्रोताओं का दिल बहलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। वे आज मॉरिशस पहुंचे। कैंडी मांगा यशना मिश्रा।
1: प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है।
2: अपने कैरियर के दौरान अभिजीत ने हजारों गीत गाए। बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को अपनी आवाज उन्होंने दी है, खासकर शाहरुख खान को।
3: I pray same time and I say I promise that it will be a rocking show, historical show होगा। प्यार वो लोग देते हैं मुझे, मुझे वापस करना उनका प्यार, इतना प्यार देते हैं। इट्स अ ब्लेसिंग कि हर आर्टिस्ट को नहीं मिलता है उतना, लेकिन आई एम लकी। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना आ रहा हूँ, आ गया हूँ।
2: अपनी मधुर और गर्म जोशी भरी आवाज तथा भावनाओं से भरी गायकी के लिए प्रसिद्ध अभिजीत भट्टाचार्य आज भी अपने हर गीत के माध्यम से मन मोह लेते हैं। अपने फैंस को वे उस जमाने में पहुंचा देते हैं जब वे ये गाने गुनगुनाया करते थे।
0: बढ़ते हम मौसम के हाल की ओर याचना मिश्रा के साथ।
2: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद भी धूप खिली रहेगी। हवा दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:43 पर, शाम को सूर्यास्त 5:49 पर होगा।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। और कंसल पर हमारे साथ लुडोविक है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Sunny, railroad balance Suriname, railroad balance Suriname, Unasi Saliki, 79 years old, Shimati Savitri Ramtohal. Shimati Savitri Ramtohal, Pedashram Siotanojine, Sabit Kinam Sibrogzata Jantitikim Rituhogi, Hunki Arti, Kal Garabaji, Unkigar, balance Surinam Sutakar and Tim Saskarki, Suyakisham Shanbumili Jajagi, cremation tomorrow at 11 a.m. Gajadhar Street, Stani Rosilme, Gajadhar Street, Stani Rosilme, Ikian Bisalik. 91 years old ki shri mutuka pen mutuka pen shri mutuka pen mutuka pen jine kadras ke naam se log zyada jante the aur jula shumiya ki karkhane mein kaam karti thi ki mrityu ho gayi hai unki arthi kal 2:30 baje unke ghar stani rosil se uthakar antim sanskar ke liye samate mogosh ke shmshan bhumi le jayegi cremation tomorrow at 2:30 p.m. Obilak Street Branch Road Nouvelle France mein Obilak Street Branch Road Nouvelle France mein 78 साल के 78 years old की श्री राजेंद्र प्रसाद चैतन श्री राजेंद्र प्रसाद चैतन जिन्हें राजेंद्र के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे विशाल चैतन के घर नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजीन नुवेल फ्रांस की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 a.m. शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: Star Vibes. Filmy Rides.
2: RM2.

Nasty. वेलकम चेक योर टाइम 6:00 जो है 28 मिनट हो चुके हैं. थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती. विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग. नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम. सो माय डियर लवली लिसनर्स, वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो जहां पे हम लेकर आए हैं कुछ बहुत ही प्यारे गिने चुने नगमे आप लोगों के लिए. एंड नाउ आई हैव टू लास्ट टिकट्स. दो आखिरी टिकट्स बचे हैं मेरे पास आपको देने के लिए फॉर दिस लवली गेम टू वॉच अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट. चलिए जी पूछेंगे फिर से एक सवाल अभी ही, फिर आपको सही जवाब देना है और यू कैन विन दिस टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव. सो प्ले एंड वीव प्ले विव एमबीसी एंड विन टिकट्स एंड द चांस टू विन द टिकट टू द गोल्डन 90s एरा जो टूर है फीचरिंग अभिजीत लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन मॉरिशस दिस सैटरडे 25th of July 2026 एट कहां पे होने वाला है ये कॉन्सर्ट. सेंड मी द राइट आंसर राइट नाउ ऑन 5499-1294 पर. एंड ऑफ कोर्स यू कैन विन

0: खूबसूरत गानों का ये सिलसिला हमेशा ही चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन रेंटियो रेडियो में से एंड आई होप दैट यू गाइस आर हैविंग अ गुड टाइम एंड टू ऑल दोस जो किचन में हैं कुकिंग कर रहे हैं सो कुरेज टू यू माय डियर एंड चलिए जी फिलहाल के लिए आई हैव अ गेम हैपनिंग राइट नाउ जहां पे हमने पूछा है एक बहुत ही आसान सा सवाल हमने आपको बताया कि सैटरडे को एक बहुत बड़ी कॉन्सर्ट होने वाली है मॉरिशस में ऑफ अभिजीत भाटियाचार्य जी जो ऑलरेडी आ चुके हैं मॉरिशस टुडे इन द मॉर्निंग अगर आप उनकी वेलकमिंग वीडियो देखना चाहोगे so why not you can just check it on our page TikTok our MT Radio Mercy and he is going to be live in concert on this Saturday 25th of July 2026 शाम के 7:30 बजे और हमने पूछा कि ये कॉन्सर्ट कहाँ पे होने वाले हैं और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सही जवाब दिए जी हाँ it's going to happen at SVICC at Pai और आज lucky draw में of course I've got my lucky winner who is Shama Luchan from Maudalbea So congratulations to you, Shama ji, and best wishes to you. You are winning a ticket to watch the concert live of Abhijit this Saturday on 25th of July at SVICC at Pai. Kai apna kal jo hai apna ID lekar aana and you can grab your ticket from the MBC and enjoy the concert. Thank you so much, my dear listeners. To chaliye ji, filhal ke liye, I've got one more question for you. जी हाँ दोस्तों अभी है तो 6:41 हो चुके हैं द लास्ट टिकट आई हैव टू गिव अवे जी हाँ दिस इज द लास्ट टिकट आई हैव टू गिव अवे टू यू ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती फॉर टुनाइट एंड जी हाँ हम फिर से पूछेंगे आपका से एक सवाल जहाँ पे आपको सही जवाब देना है सो माय डियर एंड लवली लिसनर्स आपको तो पता है दैट वी हैव अभिजीत भाटियाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट एट SVICC एट पाई जी हाँ दोस्तों और फिलहाल के लिए सबको है कि जो टिकट्स हैं वो 850 रुपीज स्टार्टिंग जो उनका प्राइस है ऑन सेल अवेलेबल एट रिजो उतायु एंड देयर इज वन मोर प्लेटफॉर्म दे आर सेलिंग द टिकट तो आप मुझे बताइएगा जरूर कि रिजो उतायु के अलावा देयर इज वन मोर प्लेटफॉर्म जहां पे अभिजीत के जो टिकट हैं दे आर सेलिंग इट तो कौन सा प्लेटफॉर्म है 5499-1294 पर सेंड मी द राइट आंसर विद फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ बेस्ट ऑफ लक टू यू
1: RM2 Radio Masti

0: बिल्कुल जी, ये है इश्क वाला लव हैपनिंग राइट नाउ ऑन RM2 रेडियो मस्ट 12. दोस्त हु आर ट्रूली मैडली डीपली इन लव, दैट वाज स्पेशली फॉर यू. तो टाइम बीता चला जा रहा है, 6:46 हो चुके हैं. यू आर लिसनिंग टू गिनीशा राइट नाउ ऑन RM2 रेडियो मस्ती. और जी हाँ दोस्तों, आई हैव द लास्ट टिकट टू गिव अवे. जी हाँ, बहुत ही मजा आया. इतने दिनों से हम रोज टिकट्स दे रहे हैं हमारे लिसनर्स को जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, एंड सो मेनी लकी विनर्स, और जिन्होंने खेत ट्राई किया और नहीं खेत जीते. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. इट्स ऑल अबाउट बींग अ पार्ट ऑफ द गेम. सो थैंक यू सो मच जी जिन्होंने आज फिलहाल फॉर द लास्ट क्वेश्चन पार्टिसिपेट किया. हमने पूछा एक सवाल, यस रिगार्डिंग द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य हैपनिंग दिस सैटरडे ऑन 25 जुलाई एट SBICCR पर शाम की 7:30 बजे, और टिकट्स आर अवेलेबल ऑन सेल एज फ्रॉम ₹850 एट रेजो ओटायो. और हमने पूछा कौन से दूसरे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको टिकट मिल सकते हैं, विच एक्चुअली इट इज ऑन सेल. तो द राइट आंसर इज moticket.mu. यस, moticket.mu इज द राइट आंसर. सो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड दे गेव मी द राइट आंसर. कुछ गलत आंसर्स भी हमें मिले, बट इट डजंट मैटर. अभी हमने लकी ड्रॉ किया है, और आज का लकी विनर, द लास्ट लकी विनर टू विन द टिकट to watch the concert live of Abhijit on RM2 Radio Masti ka lucky winner hai Mrs. Devi Ramsaran jo rehti hai Petit Bel Air me. Bilkul ji, congratulations to you, my dear Devi. You are winning a ticket to watch the concert of Abhijit for this Saturday here, 25th of July, as from 7:30 p.m. at SBICCR Pai. So congratulations to you. And thank you so much to everyone jinhone participate kiya hai. So lady, you just have to bring your ID tomorrow with you and get your ticket to go and enjoy this concert for Saturday evening.
1: You're listening to Radio Masti.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: वाह क्या खूबसूरत गाना था, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए और आशिकी के लिए बस एक खूबसूरत दिल चाहिए होता है और इस खूबसूरत से दिल में बहुत सारा प्यार ये भी ज़रूरी है और इस प्यार भरे से दिल में किसी को पनाह देना, किसी को जगह देना, इट्स अ रियली रियली स्पेशल फीलिंग एंड उतने ही प्यार से आपके दिलों में हम घर करने के लिए आ चुके हैं और आपके दिलों में छोटी सी जगह देने के लिए थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट कि आप लोग बस शो के शुरू होने से पहले ही इतने सारे मैसेजेस भेजने लग जाते हैं, इट मीन्स अ लॉट एंड दिल से आपको शुक्रिया। वेल 7:07 हो चुके हैं, इट्स अ वंडरफुल थर्सडे इवनिंग, 23 जुलाई, कैन यू बिलीव इट, ये वक्त कितनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है एंड आई जस्ट होप कि आप ये रियलाइज़ करें कि बस कुछ ही दिनों में ये महीना ख़त्म हो जाएगा और वी विल बी वेलकमिंग द ब्यूटिफुल मंथ दैट इज़ ऑगस्ट। चलिए आई जस्ट होप जो भी आपके एंडीवेज हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आपने कुछ सोच रखा था नेक्स्ट मंथ के लिए और ये महीने में जो भी आपने सोचा हुआ था वो पूरा हो जाए और आई जस्ट होप कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आप सोचे ना वैसा वैसा होता जाए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है, ये भी ज़िंदगी है और ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसके साथ साथ हमें फ्लो में बहते चले जाना चाहिए। एट टाइम्स वी डोंट नो एंड वी डोंट रियलाइज़ कि हमारे लिए क्या अच्छा होता है क्या नहीं होता है, बट देयर इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर एवरीथिंग। कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा, सो चलिए इतना क्यों सोचना भाई, बस हर एक मोमेंट को आप एंजॉय कीजिए, इसीलिए आपके प्रेजेंट मोमेंट को प्रेजेंट क्या कहा गया है, बिकॉज द सिनोनिम ऑफ प्रेजेंट इज़ गिफ्ट और ये प्रेजेंट मोमेंट ही आपके लिए आपका गिफ्ट है। तो चलिए आई जस्ट होप कि आप इसको बहुत ही प्यार से एंजॉय करेंगे एंड विद ओपन आर्म्स आपका हम वेलकम कर रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है योर इवनिंग लाउंज अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। सो वेलकमिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। जी हां, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का इंतजार 5499-1294।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: आप भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं और हमारी गीतों को सुनने के बाद आपके दिल से यही सदा रही है कि बस हमको आवाज़ दे तो कहाँ है सनम। और अगर आप भी अपने सनम को याद कर रहे हैं तो उनके लिए प्यारा सा पैगाम या फिर आप भेज सकते हैं या फिर उनको डायरेक्टली एक स्पेशल मैसेज भेज कर ये ज़रूर बताइएगा कि आप उनको कितना याद कर रहे हैं। वैसे इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग ना, और कितना ख़ास होता है वो मोमेंट जहाँ पर आप दिन भर इतने बिजी रहते हैं एंड वो शख्स आपका बहुत ही पेशेंटली से इंतज़ार करता है कि जब आपके फ्री टाइम में रहेंगे तब आपका मैसेज आएगा और मैसेज पढ़ के वो थोड़ा हंसेंगे और स्पेशल फील वो करेंगे। एंड बस यही मोमेंट को आपको सीज़ करना है और यही मोमेंट को आपको कभी कभी फेड नहीं होने देना है। जस्ट ट्राई टू लेट द लव बी एज फ्रेश एज इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। 7:21 हो चुके हैं। अगर आप इस वक्त अपना डिनर ले रहे हैं तो आपको विश करेंगे बन अपचे शुभ आहार एज यूजुअल, दिव्या का साथ है। तो चलिए वेलकमिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294 एंड डेफिनेटली ये अगला गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे फॉर बेटी अवनी और हस्बैंड रोशन फ्रॉम मनीषा। मनीषा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड साथ में नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर ट्विंस रिवांश एंड रियांश एज यूजुअल। वी हैव मम्मा वशिनी, पापा विजय एंड दादी वेदा ऑफ हाईलैंड्स। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। एंड टू ऑल दोज, शायद आप सात समुंदर पार हैं या फिर आप कुछ घर का काम करते करते या फिर आपका डिनर हो रहा है, मे बी आपका डिनर हो गया है और आप इस वक्त बंतर मान रहे हैं, तो बस ये सारा काम करते करते रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको बो खुआज एंड हमें भी याद करिएगा ऑन 5499-1294। डोंट फॉरगेट इट्स योर इवनिंग लाउंज जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यू आर इन लव तो डेफिनेटली प्यार के इस एक्सप्रेशन को आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि प्यार बस ऐसे ही नहीं होता है. कुछ ख़ास तो होता होगा ही उस शख्स में जिसके बारे में आपका दिल, आपके दिल ने कहा कि शायद आपको प्यार हो गया है. और कुछ ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में जो दिल के इतने करीब हो जाते हैं कि वो अपनों से ज़्यादा अपने हो जाते हैं, और ऐसे लोग तो आप हैं. तो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आपको इतने प्यार से हमारा साथ देने के लिए. चलिए यहाँ पर एक बार फिर से आपके कुछ मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे. हेलो दिव्या, थैंक यू फॉर ऑलवेज ब्रिंगिंग अ स्माइल इन आवर फेस एंड लव इन आवर हार्ट. डेडिकेशन टू माई मॉम मीला, पापा संगीत, सिस्टर्स हैं रीमा, उर्वशी, जीजू अजय, युधीश. Lots of love to our little angels Devansh, Dia and Urvi ke liye. Thank you so much Deepika for your love and support. And saath mein goes out specially for Manish. So Deepika and Manish ko bohut bohut sara pyar. And you're connected all the way from Goodlands. Thank you so much Deepika. Aapke hamesha itne positive messages ke liye. And kuch aise log hote hai na jinke messages aane se hi aapke chehre par ek smile a jata hai ya fir ek positivity sa chha jata hai. I think you're the kind of person. So thank you so much हमेशा अपना ये मैसेज ड्रॉप इन करने के लिए. हेलो जी, मैं रोटी पकाते पकाते आपको सुन रही हूँ. सुया बिहारी जी, आप है कुंगुमा से, क्या बात है. बस आपका खाना हो जाए तो आपको बस हम विश करेंगे बना पिची, और आराम से खाइएगा, और बहुत सारा प्यार आपको सुया जी. अब आप इमेजिन कीजिए कोई रोटी बना रहा है और वक्त निकाल कर उन्होंने रोटी बनाना छोड़कर हमें मैसेज भेजा है. दैट्स रियली सुपर स्वीट. सो सुया जी, आपको भी दिल से हम शुक्रिया कहेंगे. कनाडा से वी हैव नेलविना, डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना स्पेशली फॉर योर हस्बैंड क्रिश. ये जो आपने गाना हमें भेजा है ये हम ढूंढने की कोशिश करते हैं. वी डोंट प्रॉमिस बट विल ट्राई आवर बेस्ट. सो चलिए अभी के लिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ वी हैव विशाल मिश्रा जो अपनी आवाज़ के साथ आपको एकदम मेसमराइज करने वाले हैं. एंड इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी एक दीवाने की दीवानियत.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: RM2 Radio Musti.
1: दोस्तों, आज मैं पहली बार गजल गायकी की दुनिया में एक नई चीज पेश कर रहा हूं, तज़मीन। जी हाँ, वही घुंघरू टूट गए लिखने वाले शायर जनाब खतिल शिफाई साहब की गजल के शेरों पर तज़मीन करके उसको गीत का रूप दिया है जाने पहचाने शायर जनाब मुमताज़ राशिद ने।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: Well, we have this beautiful gana in the beautiful voice of Arjit Singh, Aashiqui Aa Gayi. वैसे आशिकी तो सबको आती हैं, but आशिकी को निभाना और प्यार के इस एहसास को उतने ही ताजगी से बरकरार रखना, ये बहुत लोगों को नहीं आता है. So it's very very important to know that love comes with a load of responsibility. ये तो हमेशा हम कहते हैं, और जिस दिन आप इसका एहसास करेंगे ना, तब आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप अपने प्यार को खोएं. And the day you will stop taking the person you love for granted, tab se hi aapke man mein wo dar laga rahega to lose that person, to lose that love. Isiliye us dar ki khatir, us pyar ki khatir, aap effort karte rahenge, time nikalte rahenge us pyar ke liye, which is very very important. To chaliye ummeed karte hain ki thoda bahut ye dar aapke man mein hai, kyunki jab tak aapke man mein wo dar hai to lose that person, इसका मतलब यही है कि प्यार अभी तक कायम है.

0: ऑलराइट 8:06 हो चुके हैं, फिर से हमारी और आपकी मुलाकात इन द सेकेंड आवर ऑफ योर इवनिंग लाउंज, जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM. सो ये अभी अभी जो आपने गाना सुना, दैट वाज इन द ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग वॉइस ऑफ सुनिधि चौहान, तेरी वास्ते मेरा इश्क सूफियाना. और बस इस इश्क को ऐसे ही रखिएगा, एकदम पाक, एकदम प्योर, एंड आपके इश्क को किसी की नज़र ना लगे और हमेशा आपका प्यार सलामत रहे. वेल, चलिए, आपके प्यार में आपने इतने सारे खूबसूरत मैसेजेस भेजे हैं, एंड यहाँ पर आपने हमें मैसेज भेजा है. हेलो जी, नमस्कार, वी आर बैक टू मिलानो, एंजॉयिंग रेडियो मस्ती, वांट टू रिक्वेस्ट अ ब्यूटीफुल गाना फॉर रीता. और वी हैव रीता, विकास, रेशमी एंड गजाधर फैमिली के लिए तेरा यार हूँ मैं, इफ़ पॉसिबल वी विल ट्राई टू प्ले इट फॉर योर फ्रेंड रेशमी, विकास एंड योर लव गजू. दैट्स अ वेरी स्वीट एंड अ क्यूट नेम. एंड चलिए, यहाँ पर किसी ने हमें एक खास मैसेज भेजा है. गुड इवनिंग रेडियो मस्ती टीम, आई हैव अ स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ मन मेरा सॉन्ग डेडिकेटेड टू माई मॉम. एक छोटी सी पहेली ये सब श्रोताओं के लिए. कुछ ऐसे भी पल हैं जिसकी तलाश मन को है, कुछ ऐसे भी पल हैं जिसकी तलाश मन को है, यह वर्ष रूपी मन भी बातों से पिघल सकता है. पहले तो मुझे ना पता था ये कश्मकश है क्या, कोई तो इसको सुलझाए. ये तो एकदम आपने पहेली को बयां ही कर दिया है. जिंदगी कैसी है पहेली, हाय, कभी है हंसाती कभी है रुलाती. गाना तो आपने शायद सुना ही होगा, और गाने में कभी कभी जिंदगी का जो रहस्य होता है वो छुपा होता है. सो चलिए, कुछ गीतों के अंदर हम सीख लेते हैं और कुछ गीतों के अंदर हमें लेसन मिलता है, और कुछ गीतों के जरिए हमें मेमोरीज को फिर से जगाने का मौका मिलता है. तो चलिए, कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे. Just hope that you are feeling special after listening to this wonderful music, and hamara saath dete rahiyega, aur aapke messages bhi rukne nahi chahiye. Keep on sending your messages on 5499 1294.
1: Evening lounge,
2: evening lounge,
3: RM2
1: Radio Masti.

0: जिंदगी में ऐसे सिचुएशंस बहुत ही बार आते हैं जहां पर आप कोई दुआ करते हैं और वो दुआ जाकर आसमान से टकरा कर वापस आ जाता है, और वो दुआ एक्चुअली हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। कभी कभी हम जीत और मेहनत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो चीज़ अगर हम पा ले तो हमारी ज़िंदगी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मे बी फॉर द बैड, मे बी फॉर द वर्स्ट। लेकिन हमेशा जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और वो आपको मिल नहीं रहा है, सो जस्ट ट्राई टू हैव सम फेथ इन द परफेक्ट टाइमिंग। बस आपको थोड़ा सा भरोसा खुद पर भी रखना है, क्या पता बाद में आपको ये चीज़ हासिल हो जाए। शायद हम मटेरियल तरीके से बात कर रहे हैं या फिर किसी के प्यार को पाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा इंतज़ार तो हमेशा करना ही होता है। सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, तो बस किसी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और आप पेशेंस रखिए, एंड आई जस्ट होप कि वो आपको ज़िंदगी में मिल ही जाए।
1: Evening Lounge,
2: RM2,
1: Radio Masti।

0: 8:45 हो चुके हैं, दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है और वो ये है कि हमारा प्यार बस ऐसे ही रहे और आपस का जो बॉन्ड है वो और भी स्ट्रॉन्ग होता रहे। वेल वेल, कुछ और आपके मैसेजेस आपकी तरफ से। एंड सुनीता जी, आप हैं पोविदों से, आज आपकी फ्रेंड सरिता बंसुदेव का बर्थडे है, वो रहती है लविनिया और उनको बहुत बहुत सारा प्यार, विशिंग हर वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की तरफ से भी। एंड यहाँ पर रोशनी जी आज यूजुअल कनेक्टेड है हमारे साथ, कहती हैं हाय दिव्या, थैंक्स फॉर दिस सिलेक्शन, ऑलमोस्ट ऑल माय फेवरेट्स, जानकर बहुत ही अच्छा लगा, आपको भी शुभरात्रि, शबा खैर। चलिए साथ में यहाँ पर टीना जी, आप हैं शामुनी से, कहती हैं प्लीज़ प्ले द सॉन्ग हम प्यार हैं तुम्हारे फ्रॉम द फिल्म मैं हाँ मैंने भी प्यार किया है, गुज आउट टू शिवम तेजस्वरी। अनलकीली मे भी यहाँ पर आपका मैसेज आधा अधूरा आया है, और चलिए व्हाट्सअप के जरिए अगर आप हमें याद करेंगे तो वहाँ पर आपका मैसेज पूरा आ सकता है। तो हम अभी के लिए तो ये गाना मे भी नहीं चला पाएंगे, बट फॉर श्योर जो बचे कुछ गाने हैं और जो बचा कुचा टाइम है हमारे और आपके दरमियाँ, उसको हम और भी एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कुछ और ब्यूटीफुल कूल सूदिंग म्यूजिक के साथ।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musti.
1: अनकान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: अभी के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना फैजल अली खान की आवाज़ में. चलिए इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात सेम टाइम कल 7 से लेकर 9 के बीच एक अलग ही मूड के साथ, क्योंकि कल फ्राइडे इवनिंग है. तो चलिए तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाज़त. ठीक है, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

Wishing you all a lovely evening, my dear listeners. नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें. It's your late night grooves रात्रि के 12 बजे तक. आइए whatever you might be, stay well tuned with some romantic songs आपके दिल के तारों को छेड़ते हुए.

कभी कभी जिंदगी एक गाने की तरह होती है, जिंदगी एक गीत है, धीरे धीरे शुरू होती है, फिर किसी खास के साथ एक खूबसूरत मेलोडी बन जाती है और वो ही मेलोडी बन जाती है हम सफर, माने कि हाँ आप ही के बारे में कह रहे हैं। थैंक यू सो मच।

आज की रात चांद भी कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि किसी के दिल में मोहब्बत का नया गीत बज रहा है।

जिंदगी के सफर में हर मोड़ पर एक नया सुर मिलता है, लेकिन जब साथ हो अपना हम सफर तो हर रास्ता एक रोमांटिक सॉन्ग बन जाता है। सो व्हाई नॉट डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना टू यू ऑल माय डियर लिसनर्स।

एक ऐसा म्यूजिक है जो ना दिखता है ना छूता है, बस महसूस होता है दिल के हर कोने में. ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू. जो भी होता है, जो भी हम फील करते हैं म्यूजिक के जरिए, धुनों के जरिए, मेलोडीज के जरिए, इसलिए तो हम कहते हैं कभी कभी खामोशी भी इन लफ्जों को अपनी जुबान से बयां.

कि मुस्कान आपकी जिंदगी का फेवरेट गाना बन जाए तो समझ जाए आपको प्यार हो गया है. Are you in love? Are you in love with these songs? तो बस इन गानों के जरिए अपने मूड को एकदम खूबसूरत, एकदम रोमांटिक बनाते चलिए, क्योंकि ये रात भी आपके लिए रोमांटिक हुई जा रही है.

जिंदगी है एक सफर सुहाना, नहीं वो तो किशोर कुमार ने गाया था, लेकिन जब साथ हो कोई अपना तो ये सफर भी सिर्फ सुहाना नहीं यादगार बन जाता है। इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स नीतू के साथ रात्रि के 12 बजे तक। थैंक यू सो मच हमारे म्यूजिकल हम सफर बनने के लिए। एंड बोको आज टू ऑल दोस एट वर्क, और अगर आप रास्ते पर होंगे, यू माइट बी ड्राइविंग बैक होम, देन प्लीज ड्राइव केयरफुली, एंजॉय कीजिएगा इन नगमों को।

वैसे दिल जो होता है ना, हम कहते हैं दिल तो पागल है, दिल बच्चा है। हर दिल के पास एक गाना, एक अपना गाना होता है, और जब वो गाना किसी खास से जुड़ जाए तो वो बन जाता है लव स्टोरी। आपकी प्रेम कहानी भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से शुरू हुई होगी, और आज भी वो कहानी जारी है। सो मुबारक हो आप सबकी जोड़ियां सलामत रहें।

में से कहते हैं कि मोहब्बत का कोई वक्त नहीं होता, ये तो बस एक एहसास है जो कभी भी कहीं भी किसी के लिए हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट, कभी कभी ये तुक्का मार जाता है लव एट फर्स्ट साइट और जिंदगी भर का प्यार बन जाता है, लेकिन कभी कभी प्यार धोखा भी दे जाता है, तकलीफ भी दे जाता है और दिल भी टूट जाता है। तो आप अपने प्यार को संजो कर रखें, आपके पास हैं, उनको समेट कर सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार कर

एक किताब है तो प्यार उसका सबसे खूबसूरत चैप्टर होता है। आपने भी अपने प्यार का चैप्टर खोला होगा, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा इतने सालों से, जिसे हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। अगर नींद आ रही है तो ये गाने आप सुनते चले, आपकी कहानी खुद ब खुद लिखती चली जाएगी।

कभी किसी के साथ खामोशी में बैठकर कभी सुकून मिले शायद इस वक्त, लेकिन खामोशी में भी कुछ न कुछ सुनाई देती है। क्या है वो? शायद आपके दिल की धड़कने, शायद किसी के अनकहे अल्फाज। तो समझ लीजिएगा कि वो ही आप

गाने तो मस्त चल रहे हैं लेकिन दिल से निकली हुई बातें और हल्की सी मुस्कान बस इतना ही काफी है एक खूबसूरत रिश्ते को जीने के लिए। रिश्ते तो सब बना लेते हैं लेकिन अटूट जो पवित्र रिश्ता होता है वो सबसे खास वो सबसे स्पेशल होता है। ना कि एक महीने दो महीने के रिश्ते लेकिन ये जो रिश्ता होता है जन्मों जन्मों तक का जो हम रिश्ता कहते हैं वो सबसे स्पेशल होता है। तो आप भी अपने स्पेशल रिश्ते को यादगार बनाते चलें लेट नाइट ग्रुप्स के साथ।

लता जी ने गाया अजीब दास्तां है ये कहां शुरू कहां खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं ये इश्क भी एक अजीब सा राग है जितना सुनो उतना ही गहरा होता है सागर से गहरा होता है प्यार और हर बार दिल को छू जाता है तो अगर आप म्यूजिक के सागर में डूबना चाहते हैं प्यार के सागर में डूबना चाहते हैं देन रेडियो मस्ती के हम सफर बन जाइए

That's true. कुछ रिश्ते अल्फाजों से नहीं बस एहसासों से बनते हैं, जैसे एक प्यार सा गीत जो सिर्फ दिल ही समझता है। दिल बच्चा है, पागल है, लेकिन दिल सब कुछ जानता है, क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वो हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाता है। तो कहीं डाउट हो अगर आपके दिमाग में, तो बस अपने दिल से पूछेगा क्या करें, क्या कहें, कैसे करें, वो सब कुछ आपको बता देगा।

आज की सुनहरी रात में अगर आपके पास कोई है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं तो उन्हें एक बार जरूर कह दीजिए I love you, je t'aime, mon amour, whatever you want to say. क्योंकि मोहब्बत छुपाने के लिए नहीं है, जीने के लिए होती है. तो आप ही अपने प्यार को पूरी तरह से जिए, शिद्दत से जिए, सम्मान से जिए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाती है. Take care, good night, sweet dreams, bye bye.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: मेरे गीतों को सुनने वालों, संगीत की दुनिया के दोस्तों, मैं अभिजीत तब तक जीत नहीं सकता जब तक आपके दिलों में ना बस जाऊं। बस इतना सा ख्वाब है। आप लोगों को शत शत प्रणाम और शुक्रिया। मैं शत शत प्रणाम करता हूं उन महान गायक और गायिकाओं को जिनकी आवाज की बदौलत हिंदुस्तान पूरे विश्व के संगीत में हमेशा शहंशाह बना रहेगा। मुझे गर्व है कि मैं भी उसी देश की एक आवाज हूं। हमारी दीदी लता जी, मैं उन चंद किस्मत वालों में से हूं जिन्हें सरस्वती के साक्षात दर्शन हुए हैं। आपके सुरों को सुन सुनकर, सीख सीख कर इस काबिल बन सका कि चंद नगमों में आपके साथ सुर मिला सका।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: आज संगीत देखा ज्यादा जाता है और सुना कम। बात कर रहा हूं सिर्फ संगीत की, जो सिर्फ सुना ही जाता है और जिसको सुन सुनकर मैंने बहुत सीखा है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सलिल चौधरी ने सरल मुकेश की आवाज को जो गंभीर रूप दिया, योगेश के कमाल गीतों से महसूस होता है।
2: कहीं दूर

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: आपने दुनिया को ना जानते हुए उसकी पहचान दुनिया वालों को कराई, उसकी ऊंचाई और गहराई को अपने नगमों में ढाला। जमी हो, मंजिल तीसरी हो या गगन चुंबी, मजरूह आप गीतों के सुल्तान हो और हम सब सुल्तानपुरी।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: RM2 Radio Musti.
1: इश्क छुपता नहीं

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे,
3: जब तक टाइगर मर।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: चकाचौंध बंबई, कुछ बनावटी कुछ सच्चाई, तुम्हारी गजलों के जरिए कुछ रोटी कुछ कमाई जो मैंने भी पाई। पाजी, मुझे संगीत की दुनिया में लाने वाले तुम ही हो, जो गीत तुम्हारे होंठों को छू लेता है वो अमर हो जाता है, वो

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: RM2 Radio Musti.
1: गोरे भैया

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते